FM 100.8 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1940 के बैशाख माह की 25वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 15 मई सन 2026। इस समय प्रातः के ठीक 5:58 और 40 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
1: इंडिया और यूए की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री

0: शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वैमानिकी विकास एजेंसी के विमान एकीकरण और उड़ान परीक्षण केंद्र की आधारशिला रखी जाएगी। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एनडीए समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। सरकार ने अग्रिम प्राधिकरण योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देता है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है, ताकि उनकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। दोबारा बिना शुल्क सोने के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। इससे पहले इस योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर कोई सीमा नहीं थी। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 111 लोगों की मौत और 200 लोगों के घायल होने की खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल जायजा लेने का निर्देश दिया है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। कल शाम धर्मशाला में मुंबई इंडियंस ने एक गेंद शेष रहते 205 रन बनाकर जीत हासिल की। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल कर लिया। प्रतियोगिता में अजीत, कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। विचार बिंदु में आइए आज सुनते हैं मधुरवाणी पर विचार।
2: मानव की सबसे बड़ी विशेषता है मधुर संभाषण। हमें वाणी मिली है, हम इसका निरंतर उपयोग तो करते हैं, किंतु इसके महत्व को नहीं समझते हैं, इसका यथार्थ मूल्यांकन नहीं करते। हमारे प्रबल पुण्यों का उदय है जिसे हमें वाणी और भाषा मिली है, शब्द संपदा मिली है, जिसके बल पर हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। नीतिकारों ने लिखा है, संसार के कड़वे वृक्ष में दो ही फल अमृत के समान है, वो है सुभाषित मधुर संभाषण और सुसंगति। जुबान प्राप्त करना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है उसे सार्थकता प्रदान करना। वाणी की मिठास ही वाणी की सार्थकता है। वाणी की मधुरता पूरे वातावरण में समरसता घोल देती है। इसीलिए कहा गया है, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजे चहु ओर, वशीकरण एक मंत्र है तजिते वचन कठोर। प्रेम के लिए वचनों की मधुरता अनिवार्य है। वचनों की मधुरता प्रेम का साम्राज्य स्थापित करती है, तो वाणी की कड़वाहट शांत वातावरण में भी कड़वाहट खोल देती है। महाभारत भी वचनों के कारण हुआ था। द्रौपदी के ये वचन कि अंधों के अंधे ही होते हैं, दुर्योधन के हृदय में चुभ गए, परिणाम महाभारत हुआ। जिह्वा में अमृत भी है और जहर भी है। वाणी में ऐसी सामर्थ है कि वो पानी में आग लगा थे। विद्वानों का मानना है कि जिह्वा में अमृत बसे, विष भी जिसके पास, एक बोले तो लाख ले, एक ते लाख विनाश। हमें अपनी वाणी पर सदैव अंकुश रखना चाहिए। संत कहते हैं, बोलो पर बोलने से पूर्व विचार कर लो। जो व्यक्ति बोलने से पूर्व विचार करता है, उसे फिर कभी पुनर्विचार नहीं करना पड़ता है। जो विचार करके करता है वो

0: वो शूर है और जो करके विचारता है वो घूर है। इसलिए कहते हैं वाणी का घाव वाण के घाव से भी गहरा होता है। वाण का घाव भर सकता है लेकिन वाणी का घाव कभी भी नहीं भर सकता। जीव की क्षमता को अनर्गल बातें कहने में नष्ट ना करो, उससे वो कहो जिससे तुम्हारा गौरव और सुनने वालों का भविष्य बने। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, कर्ण द्वार ते संचरे साले सकल शरीर। जितना बने विनम्र बनो, सरल व्यवहार रखो और अपनी जिह्वा में हमेशा लचीलापन बनाए रखो। आखिर हमारे मुख में कड़वाहट आती कहाँ से है, ये विचारणीय प्रश्न है। पांच कारणों से आदमी अप्रशस्त वचनों का प्रयोग करता है, क्रोध, लोभ, भय, मजाक और आदत। ये पांच कारण हैं जिनके कारण आदमी अपने मुख से वो शब्द निकाल देता है जिसे उसे कभी नहीं निकालना चाहिए। हम अपनी वाणी में मधुरता लाने का प्रयत्न करें, क्योंकि वाणी से ही व्यक्तित्व की पहचान होती है। जो व्यक्ति जितना अधिक मधुर संभाषी होगा वो व्यक्ति उतना ही अधिक आदरणीय और प्रतिष्ठित माना जाता है। फैले प्रेम परस्पर चक में, मोह दूर ही रहा करे, अप्रिय कटु कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे।
1: विचार बिंदु में ये थे आज के विचार, और आइए अब मिलकर आरंभ करते हैं आज की आराधना।

आज की आराधना के शुभारंभ में आपने हरिओम शरण के स्वर में ये भक्ति गीत सुना। आइए अब सुनते हैं शर्मा बंधुओं के स्वर में ये भक्ति वंदन। अंधकार में दीप जलाए, जीवन को उजियारा दे, माँ जगदम्बा नाम तुम्हारा हर डूबते को सहारा दे।

सुमन कल्याणपुर के स्वर में ये भक्ति गीत अभी आपने सुना। आइए अब सुनते हैं पीयूषा कैलाश और अनुज के स्वर में ये भक्ति रचना। हे मोहन, हे मदन मुरारी, हे बंसीधर, हे गिरधारी, छवि तेरी निराली है, मुरली की मधुरतान सुनाकर सुदबुद हरली सारी है।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत आराधना, आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। अब प्रस्तुत है आज की बात।

आज की बात सुन रहे सभी श्रोताओं को आपकी दोस्त मीनाक्षी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आज तारीख है 15 मई और आज का दिन इतिहास में क्यों है खास, आइए जानते हैं। दोस्तों मशहूर दार्शनिक विद्वान और समाज सेवक महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर का जन्म वर्ष 1817 में आज के दिन कलकत्ता में हुआ था। उन्होंने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। सती प्रथा, जाति प्रथा और महिलाओं की गुलामी के खिलाफ उन्होंने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। देवेंद्रनाथ टैगोर ने ही शांति निकेतन की स्थापना की, जिसे बाद में उनके पुत्र और प्रख्यात कवि और लेखक रविंद्रनाथ टैगोर ने एक विश्वविद्यालय में बदल दिया था। देवेंद्रनाथ टैगोर को बंगाल की आवाज के रूप में भी याद किया जाता है। दोस्तों आज ही के दिन वर्ष 1907 को पंजाब के लुधियाना में जन्म हुआ था भारत की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले महान क्रांतिकारी सुखदेव थापर का। क्रांतिकारी भगत सिंह और राजगुरु के साथ मिलकर वो इनकलाब की राह पर चले थे। कई क्रांतिकारी गतिविधियों का वो हिस्सा रहे।

लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर लाहौर षड्यंत्र को अंजाम दिया और मात्र 23 साल की उम्र में ही भगत सिंह और राजगुरु के साथ सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। देशभक्ति के शाश्वत प्रतीक महान क्रांतिकारी सुखदेव के बलिदानों का देश सदैव ऋणी रहेगा। वर्ष 1928 में आज ही के दिन मशहूर कार्टून करेक्टर मिकी माउस की पहली फिल्म प्लेन क्रेजी रिलीज हुई थी। आज ही के दिन वर्ष 1940 में दो भाइयों रिचर्ड और मॉरिस मैकडॉनल्ड्स ने कैलिफोर्निया के सैन बर्नार्डिनो में मैकडॉनल्ड्स के पहले रेस्टोरेंट की शुरुआत की थी। दोस्तों आज जन्मदिन है बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री माधुरी दीक्षित का। अपने शानदार अभिनय, दिलकश मुस्कान और अपनी नृत्य कला से लाखों दिलों पर राज करने वाली माधुरी दीक्षित ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1984 में आई फिल्म अबोध के साथ की थी, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली साल 1988 में आई फिल्म तेजाब से। इसके बाद उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया और कई प्रतिष्ठित पुरस्कार अपने नाम किए। साल 2008 में कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। उन्होंने 70 से ज़्यादा फिल्मों में अपने अभिनय और नृत्य के रंग बिखेरे। आज उनके जन्मदिन पर हम ढेरों शुभकामनाएं उन्हें प्रेषित करते हैं। दोस्तों 15 मई 1952 को गणेश वासुदेव मावलंकर स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के अध्यक्ष बने थे। वर्ष 2010 में आज ही के दिन ऑस्ट्रेलिया की जेसिका वॉटसन एक नाव पर अकेले बिना रुके पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाली सबसे युवा नाविक बनी थी। उस वक्त जेसिका की उम्र 17 साल से भी कम थी। आज ही के दिन निधन हुआ था भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल KM करियप्पा का। भारत में सिर्फ दो ही ऐसे सैन्य अधिकारी हुए हैं जिन्हें सेना के सर्वोच्च पद यानी फील्ड मार्शल की उपाधि से सम्मानित किया गया, और ये दो नाम हैं फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ और फील्ड मार्शल KM करियप्पा। और दोस्तों परिवार के महत्व, उनके सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आज विश्वभर में मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। दोस्तों आज की बात को यहीं पर देते हैं विराम। अगली मुलाकात तक के लिए अपनी दोस्त मीनाक्षी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे आज की बात। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है, आइए अब सुनते हैं देशगान।

अभी आप समोहस्वर में देशगान सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा।

विविधा कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को मीनाक्षी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, प्रातःकाल की इस सुनहरी बेला में जब सूरज की कोमल किरणें धरती को अपने आलोक से भर देती हैं, तब मन में एक मधुर भावना जागती है, अपनेपन की, स्नेह की और उस अटूट बंधन की जिसे हम परिवार कहते हैं। यही वो रिश्ता है जो हर खुशी को दोगुना कर देता है और हर गम को आधा। दोस्तों, आज हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, एक ऐसा दिन जो हमें हमारे जीवन की सबसे अनमोल पूंजी, हमारे परिवार के महत्व का एहसास कराता है। ये केवल एक दिन नहीं बल्कि रिश्तों की गर्माहट को महसूस करने का एक खूबसूरत अवसर है। इस दिन की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 1993 में की गई, जब महासभा ने एक प्रस्ताव पारित कर हर वर्ष 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। इसके बाद वर्ष 1994 को अंतर्राष्ट्रीय परिवार वर्ष घोषित किया गया और इसी के साथ पूरी दुनिया में इस दिवस को मनाने की औपचारिक शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य था परिवारों से जुड़ी समस्याओं, उनके महत्व और समाज में उनकी भूमिका के प्रति जागरूकता फैलाना। दोस्तों, परिवार हमारे जीवन की वो पहली पाठशाला है जहाँ हम जीवन जीने की कला सीखते हैं। माता पिता हमारे पहले गुरु होते हैं जो हमें संस्कार, अनुशासन और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में जहाँ हर कोई अपने काम में व्यस्त है, परिवार के लिए समय निकालना एक चुनौती बनता जा रहा है। ऐसे में आज का ये दिन हमें रुककर अपने अपनों के साथ समय बिताने की याद दिलाता है। परिवार

और हमें भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करता है। जब हम जीवन की कठिन राहों पर चलते चलते थक जाते हैं, तब परिवार ही वो छांव बनता है जहां हमें सुकून और सहारा मिलता है। ये दिन हमें ये भी सिखाता है कि संवाद ही रिश्तों की नींव है। एक दूसरे की भावनाओं को समझना, बातों को साझा करना, यही रिश्तों को गहरा और मजबूत बनाता है। दोस्तों, परिवार के बिना जीवन अधूरा है। खुशियों का असली आनंद तभी आता है जब उसे अपनों के साथ बांटा जाए। यही पल हमारी जिंदगी को खास बनाते हैं। बच्चों के लिए परिवार एक सुरक्षित आश्रय होता है जहां वे अपने सपने देखना और उन्हें पूरा करना सीखते हैं। वहीं बुजुर्ग परिवार की जड़ होते हैं जिनका अनुभव हमें जीवन की सही दिशा दिखाता है। उनका सम्मान करना और उनकी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। आज के दिन हमें अपने परिवार के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए, उनके प्रेम, त्याग और समर्थन के लिए। एक छोटा सा धन्यवाद रिश्तों में नई ऊर्जा भर सकता है। तो दोस्तों, आइए आज के इस महत्वपूर्ण दिवस पर संकल्प लें कि हम अपने परिवार को समय देंगे, उनके साथ अपने रिश्तों को और मजबूत बनाएंगे और प्रेम, सम्मान और विश्वास की इस डोर को हमेशा थामे रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की अनंत शुभकामनाओं के साथ अब अपनी दोस्त मीनाक्षी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा, आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। प्रातः की 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे, पहले संस्कृत में, तत्पश्चात हिंदी में।

0: राजनाथसिंहः अद्य आन्ध्रप्रदेशस्य श्रीसत्यसायीमण्डलस्य पुट्टपर्ति इत्यत्र अनेक वैमानिकरक्षापरियोजनानाम् आधारशिलास्थापनकार्यक्रमे भागं गृहीष्यति। रक्षामन्त्रालयेन उक्तं यत् विमानविकाससंस्थायाः विमानसमायोजनस्य उड्डयनपरीक्षणकेन्द्रस्य च शिलान्यासः भविष्यति। विमानस्य एकीकरणस्य परीक्षणस्य प्रमाणीकरणस्य च एषा परियोजना उन्नतमध्यमयुद्धविमानकार्यस्य विकासं त्वरयिष्यति। केन्द्रीयग्रामीणविकासमन्त्री शिवराजसिंहचौहानः अद्य महाराष्ट्रस्य सतारा इत्यत्र प्रधानमन्त्री ग्रामीण आवासयोजनायाः लाभार्थिसम्मेलने एवं महाराष्ट्र आवास अभियान राज्यस्तरीय पुरस्कारवितरणसमारोहे च भागं गृहीष्यति। उत्तरप्रदेशे विगत षट्त्रिंशत् होरासु झंझावात चक्रवात विद्युत्पातादिभिः सह अतिवृष्टिकारणात् न्यूनातिन्यूनम् एकादशोत्तर एकशतं जनाः मृताः, द्विशताधिकाः जनाः वृणिताः सन्ति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः जिलाधिकारीं तथा संबंधित अधिकारिणः शीघ्रतया घटनास्थलं गत्वा सर्वेक्षणं कर्तुं निर्देशं दत्तवान्। उधमपुरा मण्डलस्य शिवपार्वती तीर्थे ऐतिहासिकः त्रिदिवसीया शिवपार्वती मेला इति प्रसिद्धा वार्षिक मौंगरी मेला अद्य आरभ्यते। धार्मिकोत्साहस्य उत्सवस्य च भावनायाः मध्ये उधमपुर मण्डल प्रशासनेन मौंगरी इत्यत्र सर दब्बर क्षेत्रे भव्य ऐतिहासिक मेलायाः सज्जता कृता वर्तते। केन्द्रसर्वकारेण सुवर्णस्य आयातस्य कृते 100 किलोग्राम परिमितस्य सीमायाः निर्धारणं कृतमस्ति। अग्रिम प्राधिकरण योजनायाः अन्तर्गतम् आभूषण निर्यातकाः शून्य शुल्केन असंस्कृत वस्तूनां अथवा निवेश सामग्रीणां आयातं कर्तुं शक्नुवन्ति। आईपीएल इति विंशतिं प्रतिविंशतिः क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायां गतरात्रौ मुंबई इंडियंस दलेन पंजाब किंग्स दलं षट् स्तोभकैः पराजितम्। अद्य सायं सार्ध सप्तवादने लखनऊ सुपर जायंट्स दलं लखनऊ नगरे चेन्नई सुपर किंग्स दलं सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहतनाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा, सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
2: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में कई एरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। श्री राजनाथ सिंह अनकापल्ली जिले के टी सिरसापल्ली गांव में भारत डायनामिक्स लिमिटेड की नई अत्याधुनिक नौसेना प्रणाली निर्माण सुविधा की भी आधारशिला रखेंगे। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई।

0: कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों में तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई है, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम मंजूरी योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 2 दिन में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 111 लोगों की मौत और 200 लोगों के घायल होने की खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल जायजा लेने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल में भी हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। भारत की वुशू खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाऊ में आयोजित 11वें सांडा विश्व कप में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की थी फुंग गोंगा को हराया। प्रतिस्पर्धी वुशू को ताउलो और सांडा में दो प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। ताउलो जिम्नास्टिक और मार्शल आर्ट का मिश्रण है। इसमें प्रतियोगियों को उनके मूवमेंट के आधार पर अंक दिए जाते हैं। आईपीएल क्रिकेट में प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा और मुंबई इंडियंस ने कल पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.8 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। अब प्रस्तुत है रूपरेखा हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाली कार्यक्रमों की।

आज रात्रि 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। शाम 6:50 पर गढ़वाली में और शाम 7:30 पर कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले होंगे। अब से कुछ ही देर में प्रातः 7:10 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस से अगला प्रसंग। कुमाऊनी लोकगीत आप सुनेंगे प्रातः 7:30 पर लोकमंजरी कार्यक्रम में और शाम 5:05 पर शैलस्वर कार्यक्रम के अंतर्गत। आज प्रातः 7:50 पर आप सुनेंगे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा। शास्त्रीय संगीत में प्रातः 8:30 पर आज आप सुनेंगे रश्मि चौधरी का राग मियां की तोड़ी में गाया ख्याल। कुमाऊनी और गढ़वाली लोकगीत आप सुनेंगे सुबह 11:30 पर लोक सुर कार्यक्रम में और दोपहर 2 बजे उत्तराखंड के लोकगीत कार्यक्रम के अंतर्गत। दोपहर 12:30 पर घर संसार कार्यक्रम में बहनों से चर्चा का विषय होगा हमारी नींव हमारा परिवार। साथ ही बहनें सुनेंगी गीता जोशी पंत की वार्ता, विषय होगा सिमटते परिवार सिमटता अपनापन। दोपहर 1:30 पर सुनिएगा NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। दोपहर 2:30 पर किसान भाई सुनेंगे खेती की बातें। शाम 5:15 पर युववाणी कार्यक्रम में आज की बात का विषय होगा परिवार है आपकी नींव।

हमारे केंद्र से फिल्म संगीत आज आप सुनेंगे सुबह 9:05 पर फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम गीत निर्झर में, सुबह 10:35 पर सुरबहार, सुबह 11 बजे सैनिकों के लिए, दोपहर 12 बजे मेरी पसंद, दोपहर 2:45 पर एक ही फनकार, अपराह्न 3 बजे आप सुनेंगे सदाबहार फिल्मी गीत। हमारी सायंकालीन सभा में फिल्म संगीत आप सुनेंगे शाम 7:40 पर, रात्रि 9:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम के तहत, रात्रि 9:30 पर होगा फरमाइशी फिल्मी गीतों का हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम आपके अनुरोध पर, और फिल्म संगीत आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर। सुगम संगीत का आनंद आप लेंगे सुबह 10:05 पर सबरंग कार्यक्रम में, दोपहर 1:15 पर, रात्रि 8 बजे सबरस कार्यक्रम के तहत, और रात्रि 10 बजे पुनः सुगम संगीत प्रसारित होगा। ये थी रूपरेखा हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

उत्तरायण कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 5:45, जिसमें आज चर्चा होगी अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर। भक्ति संगीत में शाम 6:41 पर आज आनंद लीजिएगा हरिओम शरण और उदित नारायण के गाए भक्ति गीतों का। ग्राम जगत कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 7:00।

सीता जी की माता के मन में संशय पैदा हुआ कि देखने में सुकुमार बालक राम उस प्रचंड धनुष को कैसे तोड़ सकेंगे। इस पर राम जी के महत्व को जानने वाली एक चतुर सखी ने रानी को समझाया, हे रानी, तेजस्वी व्यक्ति देखने में छोटा हो सकता है, किंतु वो वस्तुतः छोटा नहीं होता। मतवाले गजराज को छोटा सा अंकुश अपने वश में कर लेता है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सभी देवता जिस मंत्र के वश में हैं, वो भी तो अत्यंत छोटा होता है। इसलिए देवी, संदेह त्याग दीजिए। सखी के वचन सुनकर रानी की उदासी मिट गई और विश्वास बढ़ गया। उधर उसी समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से विभिन्न देवताओं से विनती करने लगीं। अपने हृदय की बढ़ती व्यग्रता को पहचान कर सीता जी सकुचा गईं और सोचने लगीं कि यदि तन मन वचन से मेरे चित्त की श्री रघुनाथ जी के चरणों में अनुरक्ति है तो वे मुझे अवश्य अपनाएंगे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने निश्चय कर लिया कि या तो वे श्री राम को ही वरेंगी अथवा स्वयं का अस्तित्व ही समाप्त कर देंगी।

श्री रामचरितमानस से 94वां प्रसंग अभी आप सुन रहे थे। गायिका थी अनुराधा पौडवाल, संगीत निर्देशन था सतीश भाटिया का। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आशा भट्ट। पहले मुख्य समाचार। ईंधन की खपत कम करने के उद्देश्य से राज्य के मैदानी क्षेत्रों में जल्द 10 से 15 किलोमीटर लंबे साइकिल ट्रैक विकसित किए जाएंगे। उत्तराखंड उच्च न्यायालय परिसर में आज नो व्हीकल डे मनाया जाएगा। ग्राम्य विकास मंत्री भरत सिंह चौधरी ने टिहरी में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए महिला प्रशिक्षण, कृषि उत्पादों के वैल्यू एडिशन और पशुपालन को बढ़ावा देने के निर्देश दिए और प्रदेश में ऑपरेशन प्रहार के तहत सख्त कार्रवाई जारी, 1400 से अधिक अपराधी गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
1: हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं। भारत सरकार की ये कोशिश रही है कि घरेलू कुकिंग गैस की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए और इसके साथ ही डोमेस्टिक पीएनजी और सीएनजी ट्रांसपोर्ट की भी 100% अवेलेबिलिटी इंश्योर की जाए।
0: राज्य सरकार में प्रमुख सचिव आरके सुधांशु ने कहा है कि ईंधन की खपत कम करने के उद्देश्य से मैदानी क्षेत्रों में जल्द से जल्द 10 से 15 किलोमीटर लंबे साइकिल ट्रैक विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि लोग सुरक्षित रूप से साइकिल का उपयोग कर आवागमन कर सकें। उन्होंने बताया कि सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे मनाने के लिए अधिकारियों और जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही लोगों से आवागमन के लिए सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग अपनाने का अनुरोध किया गया है।
2: एक दिन हम लोगों ने अनुरोध किया है कि किस तरह से अधिकारी और इवन आम लोग, जैसे एक नो व्हीकल्स डे हम लोग कोशिश करेंगे, उसके लिए जिलाधिकारियों को भी हमने कहा है, जिसमें कि लोग मतलब साइकिल से या अन्य वैकल्पिक साधन से वो ऑफिस जा सके।

0: या बाकी और कहीं जाना है, मार्केट में जाना है। इसके अलावा कार पूलिंग, मान लिया कि जैसे एक ही जगह से ऑफिस आना है और वहाँ पे चार पांच लोग हैं, तो वहाँ मतलब ये व्यवस्था की जाए कि कार पूल करके वो आ सके। तीसरा एक और चीज है कि सार्वजनिक बसों का इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है, टाइमिंग अगर फिक्स करके।
1: सरकार की पहल पर आज उत्तराखंड उच्च न्यायालय परिसर में नो व्हीकल डे मनाया जाएगा। रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि वर्तमान में देश ईंधन संकट के दौर से गुजर रहा है, ऐसे में सभी नागरिकों के संयुक्त प्रयास आवश्यक हैं। मुख्य न्यायाधीश ने न्यायालय से जुड़े सभी पक्षों से इस अभियान में सहयोग करने की अपील की है। अभियान को सफल बनाने के लिए संबंधित लोगों से कार्यालय आने जाने के लिए पैदल या साइकिल का उपयोग करने का अनुरोध किया गया है। हरिद्वार में आगामी कुंभ मेला को सुव्यवस्थित, सुरक्षित और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से मेला प्रशासन तैयारियों में जुटा है। इसी क्रम में मेलाधिकारी सोनिका ने कल विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे सड़क और पुल निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यों की प्रगति का जायजा लेने के साथ ही सड़क निर्माण कार्यों की मौके पर गुणवत्ता और तकनीकी मानकों की जाँच भी कराई।
2: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
1: ग्राम्य विकास मंत्री भरत सिंह चौधरी ने टिहरी जिले में संबंधित योजनाओं और विकास कार्यों की सराहना करते हुए विभिन्न उत्पादन इकाइयों में प्रशिक्षित महिलाओं को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। श्री चौधरी ने कीवी की खेती को बड़े स्तर पर बढ़ावा देने पर जोर देते हुए मालू के पत्तों के उपयोग को प्रोत्साहित करने की बात कही। उन्होंने सुझाव दिया कि यात्रा मार्गों पर ताजे पत्तों की प्लेटों में भोजन परोसने की व्यवस्था विकसित की जाए। इसके अलावा प्लम के तेल के अधिक प्लांट स्थापित करने तथा इसके निर्यात की संभावनाओं को बढ़ाने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि लिंगड़ा क्षेत्र में पूरी तरह जैविक रूप में उपलब्ध है, जिसकी वैश्विक स्तर पर मांग है। साथ ही बुरांश के रस को बिना चीनी और पानी मिलाए तैयार कर उसकी बेहतर पैकेजिंग और वैल्यू एडिशन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई। पत्रकारों से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि जिले में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं में अधिकांश में 100% लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है।
3: सभी जो योजनाएं संचालित हो रही हैं उनकी समीक्षा की, लगभग सभी योजनाओं में बहुत ही अच्छा काम हो रहा है और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं और बेहतर इसको करें ताकि इसके जो परिणाम आए उससे जो लाभार्थी हैं, खासतौर पे जो अल्ट्रा पुअर हमारे निवासी हैं, उनको जो है इन योजनाओं का लाभ मिल सके।
1: पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने कहा है कि पुलिस राज्य के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा के लिए सतर्क, सक्रिय और प्रतिबद्ध है। ऑपरेशन प्रहार की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि अपराधियों की धरपकड़, सघन चेकिंग, व्यापक सत्यापन अभियान और संगठित अपराध पर कठोर कार्रवाई आगे भी अधिक तीव्रता, प्रभावशीलता और दृढ़ता के साथ निरंतर जारी रहेगी। पुलिस ने बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अब तक 4000 से अधिक असामाजिक तत्वों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। अभियान के तहत 18000 से अधिक बार, पब, क्लब, स्पा, होटल और ढाबों की जांच की गई, जिनमें नियमों के उल्लंघन पर 1200 से अधिक व्यक्तियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की गई है। चारधाम यात्रा में साइबर ठगी रोकने के लिए 200 से अधिक फर्जी सोशल मीडिया लिंक ब्लॉक किए गए हैं और 50 से अधिक संदिग्ध मोबाइल नंबर बंद कराए गए हैं। इसके साथ ही 147 लिंक ऑपरेटरों और 27 फर्जी मोबाइल फोन धारकों के खिलाफ अभियोग दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। चंपावत जिले के गोरलचौड़ मैदान में आयोजित 10 दिवसीय गोलजू महोत्सव 2026 में विभिन्न शैक्षिक प्रतियोगिताओं के साथ ही व्यापारिक मेले की धूम मची हुई है। 7 मई से 16 मई तक आयोजित इस महोत्सव में प्रदेश सहित देश के विभिन्न हिस्सों से 200 से अधिक व्यापारी अपने उत्पादों के साथ पहुंचे हैं। दूर दराज से आए लोग मेले में अपनी आवश्यकता की वस्तुओं की खरीदारी कर रहे हैं, जबकि झूले और चरखे बच्चों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। महोत्सव में कल से सांस्कृतिक संध्या के तहत 3 दिवसीय स्टार नाइट्स कार्यक्रम का आयोजन भी शुरू हो गया है, जिसमें प्रदेश के प्रख्यात कलाकार संगीत, लोक संस्कृति और रंगारंग प्रस्तुतियां दे रहे हैं। कार्यक्रम संयोजक और नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी भरत त्रिपाठी ने बताया कि महोत्सव के पहले चरण में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। इसके बाद 7 मई से शैक्षिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने अधिक से अधिक लोगों से महोत्सव में पहुंचने की अपील की है।
4: चंपावत नगर क्षेत्र में गुलजी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और इसमें प्रथम चरण में मंदिर में मांगलिक कार्यक्रमों और अनुष्ठानिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था और इसी कड़ी में दिनांक 7 से 16 तक 10 दिवसीय व्यापारिक मेले और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। दिनांक 14 से 16 तक हमारे जो स्थानीय बच्चे हैं, जो स्थानीय विद्यालयों में अध्ययनरत हैं, उनको उनकी जो प्रतिभाएं हैं उनके लिए एक मंच पालिका द्वारा यहाँ उपलब्ध कराया गया, जिसमें शाम के समय में उनकी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की गतिविधियां होंगी और उसके बाद रात्रि के समय में जो हमारे स्थानीय कलाकार हैं, जो उत्तराखंड के पॉपुलर आर्टिस्ट हैं, उनके द्वारा भी यहाँ पर अपने कार्यक्रमों की परफॉर्मेंस दी जाएगी।
1: और अब एक नज़र आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR से संबंधित खबर को सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इस खबर पर अमर उजाला की सुर्खी है, प्रदेश में SIR 8 जून से होगा शुरू। प्रदेश में नियुक्ति पत्र कार्यक्रम पर दैनिक जागरण लिखता है, CM ने 243 डॉक्टरों समेत 307 को दिए नियुक्ति पत्र। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता पर अमर उजाला की सुर्खी है, UCC के तहत प्रदेश में हलाला का पहला मामला दर्ज। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ईंधन की खपत कम करने के उद्देश्य से राज्य के मैदानी क्षेत्रों में जल्द 10 से 15 किलोमीटर लंबे साइकिल ट्रैक विकसित किए जाएंगे। उत्तराखंड उच्च न्यायालय परिसर में आज नो व्हीकल डे मनाया जाएगा। ग्राम्य विकास मंत्री भरत सिंह चौधरी ने टिहरी में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए महिला प्रशिक्षण, कृषि उत्पादों के वैल्यू एडिशन और पशुपालन को बढ़ावा देने के निर्देश दिए और प्रदेश में ऑपरेशन प्रहार के तहत सख्त कार्रवाई जारी, 1400 से अधिक अपराधी गिरफ्तार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का यंग समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वाह्न 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
5: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। अब प्रस्तुत है कुमाऊनी लोक गीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी। कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं माहेश्वरी बिष्ट के गाए कुमाऊनी लोक गीत।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: श्रोताओं, लोक मंजरी कार्यक्रम में आज आप माहेश्वरी बिष्ट के गाए लोकगीत सुन रहे हैं।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर।

0: सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: श्रोताओं, आइए अब कार्यक्रम के समापन में सुनते हैं माहेश्वरी बिष्ट और प्रकाश रावत का गाया ये लोकगीत।

माहेश्वरी बिष्ट और प्रकाश रावत के गाए इसी कुमाऊनी लोकगीत के साथ आज का लोकमंजरी कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। अब प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा।

0: महात्मा गांधी एक ओर अहिंसा के उपासक थे, अहिंसा को प्रचंड शस्त्र मानते थे, वहीं दूसरी ओर वे एक महान समाज सुधारक भी थे। समाज सुधारक और विचारक के रूप में उनका योगदान अनुपम है। उन्होंने व्यक्तिगत उत्थान, विशेषतः आत्मिक उत्थान पर बल दिया। जातिवाद, छुआछूत, पर्दा प्रथा, बहुविवाह, नशाखोरी और सांप्रदायिक भेदभाव जैसी अनेक सामाजिक बुराइयों के सुधार हेतु रचनात्मक संघर्ष किया। उनका सपना था अहिंसक समाज।
1: समाजवाद एक सुंदर शब्द है, और जहां तक मुझे मालूम है, समाजवाद में समाज के सब सदस्य बराबर होते हैं, न कोई नीचा न ऊंचा। किसी व्यक्ति के शरीर में सिर सबसे ऊपर होने के कारण ऊंचा नहीं होता, और न पैर जमीन को छूने के कारण नीचे होते हैं। जैसे व्यक्ति के शरीर के सब अंग बराबर होते हैं, वैसे ही समाज रूपी शरीर के सारे अंग भी समान होते हैं। यही समाजवाद है।

0: धर्मों का सम्मान करते थे।
1: जब तक मैं इस स्थिति को स्वीकार नहीं करता कि सभी धर्म समान हैं, और जब तक मेरे मन में दूसरे धर्मों के प्रति भी वैसा सम्मान का भाव नहीं जगता जैसा अपने धर्म के प्रति है, तब तक चारों ओर के इस घनघोर संघर्षमय वातावरण में मैं जीवित ही नहीं रह सकता।

अभी आप सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। प्रातः के 8 बजने को हैं। कुछ ही पलों में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत शुल्क मुक्त सोने के आयात की सीमा 100 किलोग्राम तय की। प्रवर्तन निदेशालय ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया। और वुशु में अपर्णा दहिया ने मकाऊ में सांडा विश्व कप में महिला वर्ग के 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
1: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। यूएई के सोवरेन वेल्थ फंड्स भारत के सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्टिवली निवेश कर रहे हैं। साथ ही भारत का शांति एक्ट न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल रहा है। क्रूड ऑयल से एलएनजी तक, परंपरागत ऊर्जा से स्वच्छ ऊर्जा तक, इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश

0: मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। उन्होंने कहा कि हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व पर बल दिया है।
1: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है।

0: तकनीकी के महत्व पर बल दिया है।
1: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में सहायता कर सकता है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में कई एरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर श्री सिंह उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान कार्यक्रम सुविधा की भी आधारशिला रखेंगे। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97.77 रुपए प्रति लीटर जबकि डीजल की कीमत 90.67 रुपए प्रति लीटर हो गई है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 106.68 रुपए और डीजल 93.14 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलेगा। कोलकाता में पेट्रोल 108.74 रुपए और डीजल 95.13 रुपए प्रति लीटर पर उपलब्ध होगा। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 103.77 रुपए और डीजल का मूल्य 95.35 रुपए प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। एक रिपोर्ट।
2: ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है ताकि उसकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। इसमें यह भी कहा गया है कि दोबारा बिना शुल्क के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप और धनशोधन मामले में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया है। कोलकाता के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में कल शांतनु से 10 घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। शांतनु सिन्हा को आज अदालत में पेश किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने कालीघाट पुलिस स्टेशन के पूर्व प्रभारी शांतनु को सोना पप्पू उर्फ विश्वजीत पोद्दार द्वारा चलाए जा रहे कथित आपराधिक गिरोह से जुड़े धनशोधन मामले में कई बार पूछताछ के लिए तलब किया था। सूत्रों के अनुसार ईडी को शांतनु बिस्वास से जुड़े कुछ संदिग्ध वित्तीय लेनदेन मिले हैं, जिनमें सोना पप्पू और उनके करीबी सहयोगी भी शामिल हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी, एडीएस

0: की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई है, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। सीबीआई ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह के विरुद्ध विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और एलआईसी द्वारा हजारों करोड़ रुपए के कथित धोखाधड़ी के 7 मामले दर्ज किए गए हैं। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केरलम में सरकार गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। सोमवार को नए यूडीएफ मंत्रालय का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस बीच नए मंत्रालय के सदस्यों को लेकर चर्चा जारी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: वीडी सतीशन सोमवार को केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यूडीएफ सूत्रों ने तिरुवनंतपुरम में बताया कि मुख्यमंत्री के साथ पूरी मंत्री परिषद भी शपथ लेगी। वहीं नए मंत्रियों और उनके विभागों को लेकर यूडीएफ के घटक दलों के बीच गहन चर्चा जारी है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला 4 मई को चुनाव परिणाम आने के बाद तिरुवनंतपुरम और नई दिल्ली में 10 दिन तक चली लगातार बैठकों और विचार विमर्श के बाद लिया गया। कांग्रेस और यूडीएफ के अन्य सहयोगी दल कल तक नई मंत्री परिषद को अंतिम रूप देने की कोशिश में जुटे हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एस पुल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: केरलम के शबरीमला मंदिर में कल शाम से मासिक पूजा एडवम शुरू हो गई है। मंदिर में दर्शन सुबह 5 बजे से किए जा सकते हैं। श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन बुकिंग सुविधा उपलब्ध है। उधमपुर जिले के शिव पार्वती मंदिर में आयोजित होने वाला ऐतिहासिक 3 दिवसीय वार्षिक मोंगरी मेला आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसे शिव पार्वती मेले के नाम से भी जाना जाता है।
2: मेले में मोंगरी, पंचैरी, उधमपुर और जम्मू कश्मीर के अन्य क्षेत्रों तथा बाहर से भी भारी संख्या में लोग सरदब्बड़ आते हैं। वे यहां कुदरती गुफाओं में विराजमान भगवान शिव, देवी पार्वती और अन्य देवी देवताओं को नमन करते हैं। इन गुफाओं में प्राकृतिक रूप से बना 9.5 फीट का शिवलिंग है। युवा सेवा और खेल विभाग के सहयोग से कबड्डी, रस्साकशी, पत्थर उठाना और अन्य मनोरंजक गतिविधियों का भी आयोजन किया जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से मैं एन गुलशन रन।
0: महाराष्ट्र के सतारा में आज प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों और महाआवास अभियान के राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान लाभार्थियों के लिए निर्मित 5 लाख घरों का आवंटन किया जाएगा। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह के हिस्से के रूप में आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित आकाशवाणी केंद्र द्वारा एक वॉकथन का आयोजन किया गया। ये आयोजन आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्षों के सफर को यादगार बनाने के लिए किया जा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना 8 जून 1936 में हुई थी। केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सिक्किम के 3 दिन के दौरे पर कल रात नामची जिला पहुंचे। आज वे प्रस्तावित नामची पर्यटन सर्किट पीएम डिवाइन के तहत भालिंडुगा में स्काई वॉक परियोजना और गंगटोक के आर्किडियम जैसी कई पर्यटन स्थलों और विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने केरलम में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। राज्य के तटवर्ती इलाकों में आज 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। खेलों में भारत की वुशू खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाऊ में आयोजित 11वें सांडा विश्व कप में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की थी फुआंग गांगू को हराया। प्रतिस्पर्धी वुशु को ताउलू और सारना में 2 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है वैष्णवी।
3: फरत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सवाल उठाए जाने का समाचार आज सभी

0: समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, समिति में मंत्री क्यों, तटस्थ हो तीसरा सदस्य। जनसत्ता के शब्द हैं ये, बहुमत की तानाशाही, चयन समिति में निष्पक्ष व्यक्ति क्यों नहीं। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित किया। अब दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब में भी SIR, दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है। दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के लिए कई जरूरी कदम उठाए, सरकारी दफ्तरों का समय बदला, 2 दिन घर से काम, हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों की खबर है। नव भारत टाइम्स ने CUET UG में सुधार लाने पर लेख प्रकाशित किया है। अपने संपादकीय पन्ने पर पत्र लिखता है, एग्जाम पैटर्न में लगातार बदलाव और दूर सेंटर होने की वजह से परेशानी में स्टूडेंट्स, NTA का बोझ हट बांटा जाए। वहीं राजस्थान पत्रिका ने आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर एक शोध प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, समय बदला, दूरियां बढ़ी, लेकिन परिवार अब भी सबसे मजबूत सहारा। 1993 में संयुक्त राष्ट्र ने की थी इस दिवस की शुरुआत।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत शुल्क मुक्त सोने के आयात की सीमा 100 किलोग्राम तय की। प्रवर्तन निदेशालय ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप में कोलकाता पुलिस उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया। और वुशु में अपर्णा दहिया ने मकाऊ में सांडा विश्व कप में महिला वर्ग के 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to embark on a 6-day visit to UAE, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy today. Prime Minister says BRICS under India's chairmanship will work together to build a more inclusive world order. Oil marketing companies hike petrol and diesel prices by 3 rupees per litre. Government caps duty-free gold imports at 100 kg under advance authorization scheme. ED arrests Kolkata Police DCP Shantanu Sinha Biswas for running an extortion syndicate. And in Wushu, Aparna Dahiya clinches gold medal in women's 52 kg category in Sandor World Cup in Macau. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will embark on a 6-day visit to UAE, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy today. On the first leg of his 5-nation visit, Mr. Modi will reach UAE today, where he will meet President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The two leaders will exchange views on bilateral issues, in particular energy cooperation, as well as regional and international issues of mutual interest. They will also discuss ways to advance the bilateral comprehensive strategic partnership, underpinned by strong political, cultural, economic and people-to-people links. Energy security is expected to remain a central theme of the engagement. Briefing media prior to the visit, Additional Secretary West in the Ministry of External Affairs, Asim Mahajan, said, energy remains a key pillar of the relationship. He noted that the UAE was India's 4th largest source of crude oil last year, meeting around 11% of India's requirement. According to him, India is now the largest buyer of LNG from the UAE. The UAE also supplies nearly 40% of India's liquefied petroleum gas imports and remains a significant destination for Indian petroleum exports. Our correspondent has filed this report.
3: India and the UAE have moved far beyond the traditional crude oil trade that once defined their energy relationship. The UAE remains a key oil supplier to India, but the partnership has now expanded into natural gas, renewable energy and civil nuclear cooperation. Earlier this year, Hindustan Petroleum signed a 10-year deal with Abu Dhabi National Oil Company for 500,000 tons of LNG annually beginning 2028, giving India greater price stability by reducing its reliance on spot markets. Renewable energy and civil nuclear cooperation are also gaining ground. UAE saw sovereign wealth funds are actively investing in India's solar infrastructure, while India's Shandi Act, which opens the nuclear sector to private players, has created fresh scope for collaboration in reactors, including small modular reactors. Both sides are pushing to settle energy transactions in rupees and dirhams, reducing dollar dependencies in bilateral

श्रोताओ, रश्मि चौधरी का राग मियाँ की तोड़ी में गाया ख्याल अभी आप सुन रहे थे। इसी के साथ आज का शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। कुछ ही पलों में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा, सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक मजबूत होने की उम्मीद है।
1: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। यूएई के सोवरेन वेल्थ फंड्स भारत के सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्टिवली निवेश कर रहे हैं, साथ ही भारत का शांति एक्ट न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल रहा है। क्रूड ऑयल से एलएनजी तक, परंपरागत ऊर्जा से स्वच्छ ऊर्जा तक, इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97.77 रुपए प्रति लीटर, जबकि डीजल की कीमत 90.67 रुपए प्रति लीटर हो गई है। मुंबई में अब पेट्रोल 106.68 रुपए और डीजल 93.14 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलेगा। कोलकाता में पेट्रोल 108.74 रुपए और डीजल 95.13 रुपए प्रति लीटर पर उपलब्ध होगा। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 103.77 रुपए और डीजल का मूल्य 95.35 रुपए प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। एक रिपोर्ट।
2: ये योजना आभूषण निर्यातकों को 0 शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति

0: अनुमति देती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है ताकि उसकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। इसमें यह भी कहा गया है कि दोबारा बिना शुल्क सोने के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप और धनशोधन मामले में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया है। उन्हें आज अदालत में पेश किया जाएगा। खबरों के अनुसार ईडी को शांतनु बिस्वास से जुड़े कुछ संदिग्ध वित्तीय लेनदेन भी मिले हैं। भारत की वुशू खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाऊ में आयोजित 11वें सांडा विश्व कप में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की थी फुआंग गांग

0: भारत की वुशु खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाऊ में आयोजित 11वें सांडा विश्व कप में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की थी फुआंग गांगू को हराया। और आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला होगा चेन्नई सुपर किंग्स से और ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। उधमपुर जिले के शिव पार्वती मंदिर में आयोजित होने वाला ऐतिहासिक 3 दिवसीय वार्षिक मोंगरी मेला आज से शुरू हो रहा है। इसे शिव पार्वती मेले के नाम से भी जाना जाता है। उधर केरलम के शबरीमला मंदिर में कल शाम से मासिक पूजा एडमम शुरू हो गई है। मंदिर में दर्शन सुबह 5 बजे से किए जा सकते हैं। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.8 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। सुबह के ठीक 9:05 हुए हैं। लीजिए अब पेश है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत निर्झर।

गीत निर्झर कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं का स्वागत अभिनंदन। आप सभी कीजिए स्वीकार अपनी दोस्त मीनाक्षी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कुछ मुस्कानें वक्त के साथ फीकी पड़ जाती हैं, लेकिन एक मुस्कान ऐसी है जो हर दौर में दिलों को रोशन करती रही है, और वो मुस्कान है अदाकारा माधुरी दीक्षित की। दोस्तों, आज है हर दिल अजीज़ खूबसूरत अभिनेत्री माधुरी दीक्षित का जन्मदिन। 15 मई को मुंबई में जन्मी माधुरी दीक्षित ने अपने सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत की। 1984 में फिल्म अबोध से उनकी शुरुआत भले ही साधारण रही, लेकिन फिल्म तेजाब ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। माधुरी दीक्षित का नाम उन चुनिंदा कलाकारों में है जिनकी हर फिल्म एक याद बन गई। उन्होंने सिर्फ फिल्मों में अभिनय नहीं किया, बल्कि हर किरदार को जिया, हर एहसास को महसूस कराया है। आज उनके जन्मदिन पर हम उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं और यही दुआ करते हैं कि आपकी मुस्कान यूं ही लाखों दिलों को रोशन करती रहे और आपकी कला यूं ही हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा बने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला नगमा आपने सुना अलका याग्निक की आवाज़ में साजन फिल्म से। नगमा निगार थे समीर और इस नगमे को सुनना चाहा था गांव कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया और इब्राहिम ने। चीतलवाड़ी अकोला से अमोल इंगले, अर्चना इंगले, सर्वेश, अधीरा, राजवी और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। पुटानी चौक नरहर स्टेट से ललन मिश्रा, नूतन मिश्रा, अमन पाराशर, बेबी आराध्या और मीरा सिन्हा ने। मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब से विनोदपुरी, बीपी रंजू, अशोकपुरी, सुशील, बीकेपुरी, कैलाशपुरी, नीलमपुरी, रमापुरी, पालीपुरी, बीकेपुरी और इनके सभी साथियों ने। गुमला झारखंड से हमारे श्रोता थे एसएम जावेद, शगुफ्ता, अंजुम और नजमुल हुदा। इसी गीत को सुनना चाहा था गोकुल चौक गंगजला सहरसा बिहार से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन, राजीव रंजन, संजय कुमार, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम कुमारी, साक्षी अच्छेलाल राय, बुल्कीवाली और फलना झा ने। मुंदीचक भागलपुर से दिलीप कुमार सोनी और कमल किशोर साह ने। इसी गीत को सुनना चाहा था आदर्श नगर मालौत।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: Presenting the all-new Maruti Suzuki Victoris, the proud winner of Indian Car of the Year and a Bharat NCAP 5-star rated SUV. Experience first in segment features like underbody CNG technology.
2: Available in petrol, CNG and strong hybrid options. Built for every journey. And this month, enjoy exchange benefits up to 50,000 rupees. Maruti Suzuki Victoris. Drive the future. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom today. PNC apply.
3: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है एक नज़र फिल्म से। आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की, गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारीलाल। इस गीत को सुनना चाहा है हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैज़ल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल और नफीसा प्रवीण ने। इसी गीत की फरमाइश की है सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, राजकुमार बुड़ाना। सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, रितु और मुकेश जगताप ने। इसी गीत को सुनना चाहा है बोड़सरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू, बीमा, वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु ने। मारहरा दरवाज़ा एटा से हैं नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम, यशव और रसीद वारसी। चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की, विक्की, नानू, रविंद्र और रौनक सेन ने। इसी गीत को सुनना चाहा है पटेल नगर मालौत से डॉक्टर रमेश कुमार जजोरिया, गीता रानी जजोरिया, गगनदीप जजोरिया, आरजू जजोरिया और गुड्डू ने। इसी गीत के लिए हमारे साथ जुड़े हैं खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा, नानकचंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का और भाविक सिक्का। बहादुरा नागपुर से हैं वैशाली शैलेश गवाणकर, एकांश सुमित गवाणकर, कुमारी ध्वनि गवाणकर परी। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर, राही, सरिता गवाणकर, प्रणीता, सिद्धांत गवाणकर और टुक टुक गवाणकर। हांडीखेड़ा सिरसा हरियाणा से हमारे श्रोता हैं राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा। और इसी गीत को सुनना चाहा है अड़ार नांदघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी, भूपेश और दीपेश वर्मा ने। तो लीजिए पेश है आप सभी की फरमाइश पर एक नज़र फिल्म का ये गीत।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
1: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
4: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just Rs. 9.72 lakhs.
3: Yes, Rs. 9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just Rs. 899 per month.
4: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
3: Hurry, limited stock available.

0: Available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
1: Nexa.
2: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आइए अब सुनते हैं नागिन फिल्म से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की, गीत है वर्मा मलिक का और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत की फरमाइश की है मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, इशप्रीत शर्मा, हरिपाल कौर, माया कुमार और रामजी ने। मेहर रोड वेस्ट बंगाल से हैं अभिजीत प्रसाद मेहरा, मिथुन सांगा और राधिका मेहरा। इसी गीत के लिए फरमाइशी खत हमें भेजा है ग्राम लोहारी खंडवा से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे और गायत्री धनजे ने। खुर्दी रोड मानपुर से हैं विजय वेद, रानी वेद, महिमा वेद और नीतू वेद। इसी गीत को सुनना चाहा है कापस हेड़ा दिल्ली से फिरोज खान, अहमद मोगा, इकबाल मोगा। जालंधर से संदीप जाटव और सुरेश जाटव। सेक्टर 8 कुरुक्षेत्र से दीपक सैनी, प्रमिला और अनुश्री सैनी। महादेव पारा से हैं मीरा, सिमरन और योगेश कुमार राजवाड़ी। राजकोट से हमारे श्रोता हैं प्रभा रानी, डॉली, पूजा, राधिका, अजीता पासवान। रघुवीर नगर दिल्ली से हैं जफर मुअज्जम शेख और फिरदौस शेख। तो लीजिए पेश है आपकी पसंद आपकी नज़र।

0: डीजल क्यों चूज कर रहे हैं जब स्मार्टर ऑप्शन है यही। इंट्रोड्यूसिंग नई मारुति सुजुकी अरीना की विक्टोरियस SCNG सेगमेंट फर्स्ट अंडर बॉडी CNG टैंक के साथ 27.02 किलोमीटर पर किलोग्राम तक का माइलेज, मतलब ज्यादा सेविंग्स कम खर्चा। और अब विक्टोरियस खरीदने पर बाइक एक्सचेंज बोनस अप टू 50,000, तो देर किस बात की। आज ही अपने नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना डीलरशिप विजिट कीजिए। मारुति सुजुकी SCNG, स्मार्टर फ्यूल स्मार्टर यू। टीएस अप्लाई।
1: दिल तो पागल है, आइए अब सुनते हैं इस फिल्म का गीत। आवाजें हैं लता मंगेशकर और उदित नारायण की, शब्द रचना है आनंद बख्शी की और धुन बनाई है उत्तम सिंह ने। इस गीत को सुनना चाहा है डोंगर गांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये ने। जलगांव जंक्शन से हमारे श्रोता हैं दिनेश काले, वंदना काले, डॉक्टर सहानुभूति चक्रधर, आदेश कुमार काले और प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन। इसी गीत को सुनना चाहा है किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास और आशा देवी ने। नई दिल्ली से हमारे श्रोता हैं कमलेश, मुकुल, सचिन और दीपांशु। गांव खारियां ठाणी सिरसा हरियाणा से सतवीर सिंह बिजारनिया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक, योगेश, पूजा आरजू और नव्या बिजारनिया। दतरेंगी से हैं भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। इसी गीत को सुनना चाहा है दुर्गा चौक जूना पानी सनावद मध्य प्रदेश से कालू सिंह बडोले, सीताराम हीरालाल बडोले, साहिल सुमन बडोले, विशाल हरिओम और भावना बडोले ने। इसी गीत की फरमाइश की है फूले नगर बीड महाराष्ट्र से बाला प्रसाद जी करवा, गीतांजलि करवा, आकाश करवा और आकांक्षा करवा ने। ग्राम लसूडिया पाता तहसील नरसिंहगढ़ राजगढ़ मध्य प्रदेश से हैं गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका और रमेश चंद्र डांगी।

0: Most TVs keep you tied to the city, but you deserve the freedom to explore. Introducing the Maruti Suzuki e-Vitara. With its massive 61 kilowatt hour battery and a range of 543 kilometer, the horizon is finally yours. Only for rupees 10.99 lakh, with a battery EMI of just rupees 3.99 per kilometer, backed by India's largest charging network. India goes electric.
1: दोस्तों, अपनी पसंद की फिल्मी नगमे इस समय आप गीत नजर प्रोग्राम के तहत आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से सुन रहे हैं। कार्यक्रम की अगली पेशकश गीत फिल्म से। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की, और इस गीत के इंतज़ार में हैं MLB रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, किरण खुराना, लव्या और आरव खुराना। लगान पंडरिया से हैं उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल और भारती बघेल। कापासेड़ा दिल्ली से हैं फिरोज़ खान और इनके सभी साथी। ऊपरकोट मोहल्ला चौखू नटी बुलंदशहर से हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निखत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी।

अब्बासी, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी और इनके परिवार के सभी सदस्य, इस गीत को सुनना चाहा है कल्याण मुंबई से किशोर हिरवाले, सुजाता हिबराले और प्रतीक हिबराले ने। मुल्लापुर दाखा से हैं राजेश जैन, बिट्टू जैन, संजीव जैन और शुभचंद्र। बिलाई गढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल, बाबू, प्रियांश, कुमारी भव्या देवांगन। बागपत यूपी से हैं संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया। कृष्ण की नगरी मथुरा से हमारे श्रोता हैं सबा अंसारी, शकील अंसारी, बुशरा अंसारी, हिना अंसारी, गुलिस्ता रानी, नंदिनी और अंजलि। इसी गीत को सुनना चाहा है ग्राम पजौनिया जालौन यूपी से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श, सार्थक, अलौकिक चंसौलिया ने। सादुल शहर राजस्थान से हैं राम कुमार रिवाड़ और चंद्रकला रिवाड़। गांधीबाग अकोला से हैं रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर और धनंजय कटनकर। सरोज चौक अमरावती से कमरुल्ला ठेकेदार और नसीम बेगम।

0: inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
1: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value, with its bold design and spacious comfort. It's built to impress every single day.
0: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.70 lakh.
1: Yes, Rs. 6.70 lakh. Valid till 31st May. Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
0: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
2: Nexa.
3: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है संगीत फिल्म से. आवाज़ें हैं अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडकर की. गीत है संतोष आनंद का और संगीत दिया है आनंद मिलिंद ने. इस गीत को सुनना चाहा है जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पर्ल और विलिस डिकैस्ट्रो ने. जवाहर नगर उदयपुर से हमारे श्रोता हैं बाबू भाई और भारती देवी. दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से इसी गीत को सुनना चाहा है बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी शॉ, अजय कुमार गुप्ता, रिम्मी, तनुश्री गुप्ता. पिहरा बाज़ार झुमरी तलैया से हमारे श्रोता हैं अभय कुमार सनातनी, शिवानी कुमारी, प्रियंका कुमारी साहू, रिया, जिया, टूसी, आयुषी, अनिरुद्ध बाबू, मुन्नी देवी शॉ, जयप्रकाश साव, बसंत लाल साव, हीरा मोती पन्ना लाल साव. इस गीत की फरमाइश की है ग्राम धरदेई सरगांव छत्तीसगढ़ से चंदूलाल पटवा, श्रीमती सुनीता पटवा, हर्ष कुमार पटवा, विनीत कुमार पटवा और कुमारी कृष्टि पटवा ने. शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा से हमारे श्रोता हैं आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी.

कार्यक्रम का अगला गीत आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में सत्ते पे सत्ता फिल्म से। इस गीत को सुनना चाहा है छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल और यशस्वी वर्मा ने। आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से हैं तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा और चैतन्य मस्कीन। यहीं से हैं मेघा मस्कीन। चंडीगढ़ से हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना और केशु खुराना। पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से हमारे श्रोता हैं अनंता भगत, अरुणा भगत, सुलोचना भगत और चेतन भगत।

श्रोताओं, आइए आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं मोहम्मद रफ़ी की गाई जंगली फिल्म के नगमे के साथ। नगमा निगार हैं हसरत जयपुरी और इस नगमे को सुनना चाहा है भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, हरमिंदर चावला, शिव कुमार शर्मा, लोकेश जोशी, बेबी वैदेही जोशी, बेबी हंसिका जोशी, कुमारी अंकिता जोशी। अनूपपुर मध्य प्रदेश से श्रीमती जयवंती केवट जी ने। अल्मोड़ा से इसी गीत को सुनना चाहा है प्रीति तिवारी और प्रशस्ति तिवारी ने। जिला नांदेड़ इताला महाराष्ट्र से हैं शंकरलाल जायसवाल, गणेश लाल, शुभम प्रसाद, अर्णव कुमार जायसवाल और कुमारी दुर्गेश्वरी जायसवाल। और इसी गीत को सुनना चाहा है सरगुजा मैन पार्ट से रूबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आदिबा थापा, रेशमा थापा और आसमा थापा ने। तो लीजिए पेश है आप सभी की फरमाइश पर आज के प्रोग्राम की ये आखिरी पेशकश।

गीत निर्झर। अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। कुछ ही पलों में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: समाचार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयन से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
1: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन LNG की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। उन्होंने कहा कि हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व पर बल दिया है। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97.77 रुपए प्रति लीटर, जबकि डीजल की कीमत 90.67 रुपए प्रति लीटर हो गई है। मुंबई में अब पेट्रोल 106.68 रुपए और डीजल 93.14 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलेगा। वहीं कोलकाता में पेट्रोल 108.74 रुपए और डीजल 95.13 रुपए प्रति लीटर पर उपलब्ध होगा। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 103.77 रुपए और डीजल का मूल्य 95.35 रुपए प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकर योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के अंतर्गत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। एक रिपोर्ट।
2: ये योजना आभूषण निर्यातकों को 0 शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है, ताकि उसकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। इसमें यह भी कहा गया है कि दोबारा बिना शुल्क सोने के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: मेडिकल नीट UG परीक्षा की नई तारीख की घोषणा कर दी गई है। अब ये परीक्षा 21 जून को आयोजित होगी। सरकार की मंजूरी के बाद राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इसकी घोषणा की थी। इससे पहले कल परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा के लिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। प्रवर्तन निदेशालय ED ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप और धनशोधन मामले में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया है। उन्हें आज अदालत में पेश किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार ED को शांतनु बिस्वास से जुड़े कुछ संदिग्ध वित्तीय लेनदेन मिले हैं। भारत की वुशू खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाऊ में आयोजित 11वें सांडा विश्व कप में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की थी फुआंग नांगानुगु को हराया। और IPL क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। लखनऊ में ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। प्रतियोगिता में कल मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से मात दी। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: FM 100.8 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती ऐप, न्यूज़ ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। लीजिए।

0: है और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। लीजिए अब पेश है कार्यक्रम सबरंग। कार्यक्रम की पहली पेशकश शौकत अली की आवाज में।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
2: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value. With its bold design and spacious comfort, it's built to impress every single day.
1: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.70 lakh.
2: Yes, Rs. 6.70 lakh. Valid till 31st May. Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
1: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
3: Nexa. श्रोताओं, सबरंग कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं पंकज उधास की आवाज में ये गीत।

0: with a battery EMI of just Rs 3.99 per kilometer. Backed by India's largest charging network, India Goes Electric.
1: Nexa.
2: श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं सोमेश कुमार की आवाज में मिर्जा गालिब की रचना।

0: Presenting the all-new Maruti Suzuki Victoris, the proud winner of Indian Car of the Year and a Bharat NCAP 5-star rated SUV. Experience first-in-segment features like underbody CNG technology.
1: Available in petrol, CNG and strong hybrid options. Built for every journey. And this month, enjoy exchange benefits up to 50,000 rupees. Maruti Suzuki Victoris. Drive the future. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom today. PNC apply.
2: डीजल क्यों चूज कर रहे हैं जब स्मार्टर ऑप्शन है यही इंट्रोड्यूसिंग नई मारुति सुजुकी अरीना की विक्टोरियस एससीएनजी सेगमेंट फर्स्ट अंडर बॉडी सीएनजी टैंक के साथ 27.02 किलोमीटर पर किलोग्राम तक का माइलेज मतलब ज्यादा सेविंग्स कम खर्चा और अब विक्टोरियस खरीदने पर बाय एक्सचेंज बोनस अप टू 50,000 तो देर किस बात की आज ही अपने नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना डीलरशिप विजिट कीजिए मारुति सुजुकी एससीएनजी स्मार्टर फ्यूल स्मार्टर यू टीएनसी अप्लाई
3: श्रोताओं आइए अब कार्यक्रम के समापन में सुनते हैं गुलाम अली की गाई ये गजल।

गुलाम अली की गाई इसी गज़ल के साथ आज का सबरंग कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले होंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप आशा भट्ट से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनका लाभ उठाकर लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं। ऐसी योजना में शामिल मुख्यमंत्री हुनर योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थियों को समाज कल्याण मंत्री खजान दास ने सम्मानित करते हुए प्रमाण पत्र वितरित किए। राजधानी देहरादून के डोईवाला में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए समाज कल्याण मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार अल्पसंख्यक समाज के कल्याण के लिए लगातार महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित कर रही है। इन योजनाओं का लाभ उठाकर युवा रोजगार स्थापित कर आत्मनिर्भर बन रहे हैं।
1: काफ़ी लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया और उनको आज सर्टिफिकेट जारी किए गए और मुख्यमंत्री हुनर योजना के तहत 25-26 में 18 कैंप लगाए गए और अच्छी योजना के तहत और इतना है कि आने वाले समय के लिए बहुत अच्छा अल्पसंख्यक विभाग कर रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी की सीधी नज़र है इस पर कि किस तरह से ये कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से सफल हो और ये कार्यक्रम सफल भी हो रहा है। मैं शुभकामनाएं बधाई देना चाहूँगा।
0: पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने कहा है कि पुलिस राज्य के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा के लिए सतर्क, सक्रिय और प्रतिबद्ध है। ऑपरेशन प्रहार की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि अपराधियों की धरपकड़, सघन चेकिंग, व्यापक सत्यापन अभियान और संगठित अपराध पर कठोर कार्रवाई आगे भी अधिक तीव्रता, प्रभावशीलता और दृढ़ता के साथ निरंतर जारी रहेगी। पुलिस ने बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अब तक 4,000 से अधिक असामाजिक तत्वों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। अभियान में 18,000 से अधिक बार, पब, क्लब, स्पा, होटल और ढाबों की जांच की गई, जिनमें नियमों के उल्लंघन पर 1,200 से अधिक व्यक्तियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की गई है। प्रधानमंत्री की मितव्ययिता, संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग और डिजिटल माध्यमों को बढ़ावा देने की अपील का पालन करते हुए कुमाऊं विश्वविद्यालय ने आगामी आदेशों तक अधिकांश बैठकों को ऑनलाइन माध्यम से आयोजित करने का निर्णय लिया है। वहीं जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण अभियान के तहत मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार पांडे स्वयं पैदल चलकर कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों एवं कर्मचारियों से ईंधन बचत अभियान को जन सहभागिता के रूप में अपनाने का आह्वान किया। देहरादून जिले के विकासखंड विकासनगर के ग्राम सोरना डोभरी की रहने वाली महिला उद्यमी कल्पना बिष्ट आज ग्रामीण महिला सशक्तिकरण की नई पहचान बनकर उभरी हैं। राज्य सरकार की ग्रामोत्थान परियोजना और स्वयं सहायता समूहों के सहयोग से उन्होंने स्वाभिमान महिला बेकरी यूनिट स्थापित कर न केवल अपना व्यवसाय खड़ा किया बल्कि स्थानीय महिलाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता का नया अवसर भी प्रदान किया। वर्ष 2024-25 में स्थापित बेकरी में मंडवे के बिस्कुट, गुड़ मक्खन बिस्कुट, हनी ओट्स बिस्कुट, मिल्क रस और गोलगप्पे जैसे उत्पाद तैयार किए जाते हैं। इन उत्पादों की खासियत स्थानीय स्वाद, पौष्टिकता और पारंपरिक विधि है। पौड़ी गढ़वाल स्थित गोविंद वल्लभ पंत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान घुड़दौड़ी के छात्र छात्राओं ने राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि हासिल की है। छात्रों ने जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद द्वारा घोषित ई युवा फेलोशिप की तीसरी राष्ट्रीय चयन प्रक्रिया में स्थान हासिल किया। संस्थान के निदेशक डॉ. वीके बंगा ने बताया कि छात्रों के इंडोर वायु शुद्धिकरण के लिए पिरुल आधारित बायोचार एयर फिल्टर का राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ है। चयनित छात्र को 2500 प्रतिमा फेलोशिप और परियोजना के लिए 2.5 लाख वार्षिक अनुदान प्रदान किया जाएगा, जिससे छात्र अपने नवाचार को उद्यमिता एवं उत्पाद विकास की दिशा में आगे बढ़ा सकेंगे। आवारा कुत्तों से जुड़ी शिकायतों के निस्तारण पर ह्यूमन वर्ल्ड फॉर एनिमल्स इंडिया के सहयोग से नगर निगम हरिद्वार में शिकायत प्रबंधन विषय पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आवारा कुत्तों से संबंधित शिकायतों के प्रकरण, कुत्ते के काटने अथवा रेबीज की शिकायत प्राप्त होने पर निगम द्वारा किए जाने वाले आवश्यक कार्यों पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही समुदाय में आवारा कुत्तों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और मानवीय व्यवहार अपनाने के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 1:05 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। लीजिए अब पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरबहार।

सुरबहार कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को आपकी दोस्त मीनाक्षी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम में एक ही कलाकार के तहत हमारे आज के कलाकार हैं बॉलीवुड के बेहद सफल फिल्म निर्देशक प्रकाश झा, जिन्हें सामाजिक और राजनीतिक बदलाव पर आधारित फिल्में बनाने के लिए जाना जाता है। आइए कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं उनकी फिल्म राजनीति से ये गीत।

दोस्तों, जाने माने निर्माता निर्देशक प्रकाश झा का जन्म 27 फरवरी 1952 में चंपारण बिहार में हुआ था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो मुंबई आ गए। दोस्तों, उनका सपना एक चित्रकार बनने का था और अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने जे जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिला लिया। यहाँ पर वो अपने चित्रकार बनने की राह पर आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उन्होंने मुंबई में साल 1973 में धर्मा फिल्म की शूटिंग देखी। उन्हें फिल्म की वो शूटिंग इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने चित्रकार बनने का सपना छोड़कर निर्देशक बनने का सपना आंखों में बसा लिया और निर्देशन की बारीकियाँ सीखने के लिए फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में दाखिला ले लिया। दोस्तों, फिल्मकार प्रकाश झा के बारे में आगे भी आपसे बातें होंगी, क्यों ना पहले सुन लिया जाए उनकी फिल्म आरक्षण से ये गीत।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: सुरबहार कार्यक्रम में एक ही कलाकार के तहत हमारे आज के कलाकार हैं फिल्मकार प्रकाश झा। दोस्तों, प्रकाश झा ने वर्ष 1984 में बतौर निर्देशक पहली फिल्म बनाई हिप हिप हुर्री। ये फिल्म बंधुआ मजदूर पर आधारित थी। अपनी पहली ही फिल्म के लिए प्रकाश झा को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके बाद उन्होंने कई सामाजिक सरोकार की फिल्में बनाई और सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर बदलाव की बातें अपनी फिल्मों के जरिए दर्शकों तक पहुंचाई।

दोस्तों, बॉलीवुड में प्रकाश झा की पहचान एक बेहतरीन और टैलेंटेड डायरेक्टर प्रोड्यूसर के तौर पर है। वो हमेशा अपनी फिल्मों में अलग अलग प्रयोग करते हैं और उनकी फिल्मों में हमेशा कुछ नया देखने को मिलता है। उनकी फिल्मों की अगर बात करें तो उन्होंने बंदिश, मृत्युदंड, दिल क्या करे, गंगाजल, अपहरण, राजनीति, आरक्षण, सत्याग्रह, जय गंगाजल और मंटो की साइकिल जैसी कई बेहतरीन फिल्मों का निर्माण और निर्देशन किया। आइए अब चलते चलते सुनते हैं उनकी फिल्म मृत्युदंड से ये गीत।

मृत्युदंड फिल्म के इसी नगमे के साथ आज का सुरबहार कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। कार्यक्रम में एक ही कलाकार के तहत हमारे आज के कलाकार थी फिल्मकार प्रकाश झा।

0: सैनिक भाइयों कार्यक्रम का पहला गीत आपने सुना नया दौर फिल्म से। आवाजें थी मोहम्मद रफी, बलबीर और साथियों की। गीतकार थे साहिर लुधियानवी।
1: Built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
2: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value. With its bold design and spacious comfort, it's built to impress every single day.
1: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.70 lakh.
2: Yes, Rs. 6.70 lakh. Valid till 31st May. Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
1: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
3: Nexa.
0: आइए अब सुनते हैं बुलेट राजा फिल्म का गीत वाजिद और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में। शब्द रचना है कौसर मुनीर की और धुन बनाई है साजिद और वाजिद ने।

0: Most TVs keep you tied to the city, but you deserve the freedom to explore. Introducing the Maruti Suzuki e-Vitara. With its massive 61 kilowatt hour battery and a range of 543 kilometer, the horizon is finally yours. Own it for rupees 10.99 lakh with a battery EMI of just rupees 3.99 per kilometer. Backed by India's largest charging network, India Goes Electric.
1: सैनिक भाइयों, कार्यक्रम का अगला गीत आइए अब सुनते हैं टू स्टेट्स फिल्म से। आवाज़ें हैं अरिजीत सिंह और चिन्मयी श्रीपदा की, गीत है अभिजीत भट्टाचार्य का और संगीत दिया है शंकर एहसान और लॉय ने।

हैप्पी न्यू ईयर फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज़ें थीं श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह की। कार्यक्रम का अगला गीत आइए अब सुनते हैं मोहित चौहान की आवाज़ में हीरोपंती फिल्म से। कौसर मुनीर के लिखे गीत को संगीत से संवारा है साजिद और वाजिद ने।

सैनिक भाइयों, आइए अब कार्यक्रम के समापन में सुनते हैं शान, श्रेया घोषाल और शबाब साबरी की आवाज़ों में जय हो फिल्म का नगमा। नगमा निगार हैं समीर।

जय हो फिल्म के इस नगमे के साथ आज का सैनिकों के लिए फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। सैनिक भाइयों आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

अभी सैनिक भाई सुन रहे थे फिल्म संगीत। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। अब प्रस्तुत है कुमावनी और गढ़वाली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकसुर। कार्यक्रम के आरंभ में लीजिए सुनिए संगीता ढौंडियाल की आवाज़ में ये गढ़वाली लोकगीत।

कुमाऊनी और गढ़वाली लोकगीतों का कार्यक्रम लोक सुर इस समय आप आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से सुन रहे हैं और इसी कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए कुमाऊनी लोकगीत। कलाकार हैं दीवान सिंह कनवाल।

पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, पगला फल लागे अति दूर। बानर की घोई, मासू खाचे छिल छाली, हड खाचे घोई,

अभी श्रोता सुन रहे थे कुमाऊनी और गढ़वाली लोकगीतों का कार्यक्रम लोक सुर। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। मध्याह्न के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम मेरी पसंद।

मेरी पसंद के सभी श्रोताओं को अंजू पांगते का स्नेहिल नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आप सभी श्रोताओं का मेरी पसंद में। श्रोताओं, हिंदी सिनेमा जगत में जब भी प्यारी सी मोहिली मुस्कान, शानदार नृत्य कौशल से भरपूर, बेहद खूबसूरत, अपने चेहरे के उतने ही प्रभावपूर्ण भाव भंगिमाओं और बेहद शालीन, सौम्य, सशक्त, दमदार किरदार से सराबोर अभिनेत्री का जिक्र होता है तो भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती लिए एक मशहूर अभिनेत्री का चेहरा आंखों के सामने आ जाता है और वो अभिनेत्री है सुप्रसिद्ध माधुरी दीक्षित। आज माधुरी दीक्षित का जन्मदिन है तो उन्हें हम ढेर सारी शुभकामनाएं अपने कार्यक्रम की ओर से दे रहे हैं और आज उन्हीं की अभिनीत फिल्मों के खूबसूरत नगमों से सजा मेरी पसंद का गुलदस्ता श्रोताओं के लिए पेश कर रहे हैं।

तो श्रोताओं, 15 मई 1967 को मुंबई में जन्म हुआ माधुरी दीक्षित का। उनके पिता का नाम शंकर दीक्षित और माता स्नेहलता दीक्षित की लाडली बेटी माधुरी सब भाई बहनों में सबसे छोटी रहीं। बचपन से ही पढ़ाई के साथ साथ कल्चरल एक्टिविटीज़ में वो हमेशा आगे ही आगे रहा करती थीं। और दिलचस्प बात ये है कि वो हमेशा से एक्ट्रेस बनना नहीं चाहती थी, बल्कि अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद वो कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया और माइक्रोबायोलॉजिस्ट वो बनना चाहती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। माधुरी दीक्षित को जब वो बहुत छोटी थी, बचपन से ही नृत्य का बेहद शौक था। जब वो मात्र 3 साल की थीं, तभी से उन्होंने कथक सीखना शुरू कर दिया और कई सालों तक उन्होंने क्लासिकल डांस की विधिवत शिक्षा प्राप्त की और छोटी उम्र में ही अपने टैलेंट से लोगों का ध्यान अपनी ओर वो खींचने लगी थीं। ये कहा जाता है कि जब वो मात्र 9 साल की थीं, तभी उन्हें कथक के लिए स्कॉलरशिप मिलना शुरू हो गया था और नृत्य के प्रति उनका इस कदर जुनून था कि वो स्कूल और अपने कॉलेज की जब वो पढ़ाई कर रही थी, तब वो साथ ही साथ अक्सर अपनी परफॉर्मेंसेस दिया करती थीं।

माधुरी दीक्षित के फिल्मी करियर की बात करें तो साल 1984 में राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्म अबोध में उन्हें बॉलीवुड में डेब्यू करने का मौका मिला। इस फिल्म में उन्हें यूं तो कोई ख़ास सफलता नहीं मिली, लेकिन इस फिल्म के ज़रिए उन्हें एक पहचान मिली और इसके बाद आवारा बाप, स्वाति, हिफाजत, उत्तर दक्षिण जैसी फिल्मों में वो नज़र आईं। लेकिन उनकी ज़िंदगी का जो अहम मोड़ आया वो था साल 1988 और इस साल उनकी फिल्म आई तेजाब। माधुरी दीक्षित के करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट ये फिल्म साबित हुई और इस फिल्म के गाने 1, 2, 3 में मोहिनी बनकर जो उन्होंने नृत्य किया, उस नृत्य ने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया और यहीं से माधुरी दीक्षित की कामयाबी का सिलसिला चल पड़ा और वो 90 के दशक की सबसे बड़ी फीमेल फिल्म स्टार बन गई। 7 मिनट 2 सेकंड का ये गाना 1, 2, 3 माधुरी दीक्षित के करियर का बेहद ख़ास गाना रहा और ये फिल्म भी, और ये फिल्म के रिलीज़ होते ही हर किसी की जुबान पे ये गाना तब भी सुनाई देता था और आज भी लोग इसे गुनगुनाना नहीं भूलते। और इस गाने में माधुरी दीक्षित के डांस मूव्स और एक्सप्रेशंस ने 4 चांद लगा दिए, दर्शक देखते ही रह गए और वो भी कुछ यूं इस गाने के साथ झूमकर गाने लगे।

साल 1990 में आमिर खान के साथ माधुरी दीक्षित की बेहद चर्चित फिल्म आई दिल, और इस फिल्म में उसके अभिनय को दर्शकों ने खूब सराहा।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: तो श्रोताओं, तेजा फिल्म में माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर लीड रोल में नजर आए थे और इन दोनों की जोड़ी को ऑडियंस ने खूब पसंद भी किया और इन दोनों की जोड़ी से सजी कई फिल्में जो बेहद चर्चित रहीं वो फिल्म इंडस्ट्री में आई और साल 1992 में रिलीज़ हुई फिल्म बेटा। ये फिल्म जहां बेहद सुपरहिट रही, वहीं इस फिल्म के गाने भी अपने आप में बेहद चर्चित रहे और इस फिल्म का जो सुपरहिट गाना था धक धक करने लगा, इस गाने के बाद पूरे देश में धक धक गर्ल के नाम से मशहूर हुई माधुरी दीक्षित।

श्रोतों, जहां अनिल कपूर के साथ इनकी जोड़ी को खूब प्यार मिला, वहीं संजय दत्त के साथ भी माधुरी दीक्षित की जोड़ी दर्शकों द्वारा खूब सराही गई। थानेदार, खलनायक, साजन जैसी कई फिल्मों में वो साथ नजर आए।

तो श्रोताओं, 90 के दशक की बात करें तो ये पूरा दशक एक तरह से माधुरी दीक्षित के नाम रहा। दिल, साजन, बेटा, खलनायक, हम आपके हैं कौन, दिल तो पागल है, खलनायक जैसी कई फिल्में हैं। इन फिल्मों के बेहतरीन किरदार निभाकर वो इंडस्ट्री की नंबर वन अभिनेत्री बन गई। खासकर हम आपके हैं कौन ने भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। उस दौर में माधुरी दीक्षित की फीस बड़े बड़े ने अभिनेताओं से भी ज़्यादा बताई जाती थी। और हम आपके हैं कौन फिल्म में अभिनेता सलमान खान के साथ इनकी जोड़ी को दर्शकों ने बेहद पसंद किया।

0: तो श्रोता, माधुरी दीक्षित ने अपने फिल्मी करियर में बेहद चर्चित फिल्मों में काम किया और अपने अभिनय से हर दर्शक के दिल में खास जगह बनाई। और यूं तो उनकी कई यादगार भूमिकाएं हैं जो हम याद करें तो बहुत कुछ है, एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन देवदास फिल्म को भला हम कैसे भूल सकते हैं। इस फिल्म में उनके चंद्रमुखी के किरदार को कभी नहीं भुलाया जा सकता और इस फिल्म में उनके नृत्य का जो कौशल देखने को मिला वो अपने आप में अद्भुत, यादगार, हमेशा हर दर्शक के लिए रहा है।
1: धाई शाम रोक लई, रोक लई, रोक लई, धाई शाम रोक लई और चक मुख चूम लई, मुख चूम लई, मुख चूम लई, स

श्रोताओं, साल 1999 में माधुरी दीक्षित ने डॉक्टर श्रीराम माधव नेनी से विवाह किया और इसके बाद वो अमेरिका चली गई कुछ सालों के लिए और वहीं उन्होंने पूरा समय अपने परिवार को दिया और उनके दो बेटे भी हुए।

माधुरी दीक्षित को कई सम्मानों से नवाजा गया। दिल बेटा हम आपके हैं कौन, दिल तो पागल है, इन सभी फिल्मों के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। देवदास के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री स्टार स्क्रीन अवार्ड के हम आपके हैं कौन, राजा मृत्युदंड जैसी फिल्मों के लिए उन्हें पुरस्कार मिला और साल 2008 में उन्हें भारत सरकार के सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री से भी अलंकृत किया गया। आज भी माधुरी दीक्षित बेहद एक्टिव रहती हैं। वो न केवल फिल्मों में अपनी दमदार भूमिकाएं निभा रही हैं बल्कि छोटे पर्दे पर रियलिटी शोज़ के जरिए बतौर जज की भूमिका में वो नज़र आती हैं और अपनी प्रोडक्शन कंपनी और डिजिटल वर्ल्ड के जरिए वो आज भी अपने प्रशंसकों से जुड़ी रहती है। वाकई उनकी ज़िंदगी का हर सफ़र हर कलाकार के लिए प्रेरणा से भरा है। आज एक बार पुनः उनके जन्मदिन पर माधुरी दीक्षित जी को ढेर सारी शुभकामनाएं। वो मस्त रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा यूं ही सक्रिय रहें। आज मेरी पसंद का सफ़र यहीं तक अंजू पांगती के साथ, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: अभी श्रोता सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम मेरी पसंद। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अब बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम घर संसार।

स्वागत है मैंने आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम घर संसार के आज के अंक में। सभी श्रोता सखियों को आपकी सखी किरण बिष्ट का प्यार भरा नमस्कार। चलिए मैंने करते हैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत। तो मैंने आज के कार्यक्रम में हम सबसे पहले आपसे बात करेंगे थोड़ी सी अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के बारे में, और साथ ही हमारी चर्चा का विषय होगा हमारी नींव हमारा परिवार। साथ ही मैंने आपको आज के कार्यक्रम में हम सुनाएंगे वार्ता, विषय होगा सिमटते परिवार सिमटता अपनापन। और बहनों आज शुक्रवार है तो आज फैशन फ्राइडे के अंतर्गत हमारा आज का विषय है गर्मी के मौसम में करें आरामदायक कपड़े का चुनाव। तो बहनों ज़्यादा देर न करते हुए शुरुआत करते हैं अपने पहले विषय की। बहनों आज का दिन 15 मई अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। यह दिवस विश्व भर में परिवार के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके विकास में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भूमिका को शामिल करने के लिए मनाया जाता है। अगर किसी भी व्यक्ति के लिए उसका परिवार ही उसकी नींव होता है जिससे वह अपने जीवन की इमारत खड़ी करता है। तो हमारे लिए परिवार बहुत महत्व रखता है, इसलिए यह दिन परिवार के महत्व को दर्शाने के लिए, बताने के लिए और जीवन में उसका क्या महत्व है परिवार का, यह बताने के लिए मनाया जाता है। तो मैंने अब बढ़ते हैं हमारे अगले विषय की तरफ, हमारी नींव हमारा परिवार। मैंने परिवार न केवल साथ रहने वाले लोगों का समूह है बल्कि हमारे जीवन का मजबूत आधार भी है जिस पर हमारे व्यक्तित्व और भविष्य का निर्माण होता है। परिवार हमें बिना शर्त प्यार, सुरक्षा और भावनात्मक सहारा प्रदान करता है जो हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। परिवार ही वह जगह होती है जहाँ एक बच्चा संस्कार और मूल्य के का पाठ सीखता है, क्योंकि परिवार ही हमें संस्कार और मूल्य सबसे पहले सिखाता है और वही उम्र भर हमारे चरित्र की नींव भी बनता है। मैंने परिवार के सदस्य विशेषकर माता पिता हमें न केवल सुख सुविधा देते हैं बल्कि हमारे सपनों को पूरा करने के लिए एक मजबूत आधार हमें प्रदान करते हैं जिस पर आगे चलकर हम समाज में एक बेहतर इंसान के रूप में समाज के निर्माण में अपना योगदान देते हैं। और बहनों जीवन में जब कभी हम लड़खड़ाते हैं या कठिनाइयों का सामना करते हैं तो वो परिवार ही होता है जो हमें सहारा देता है, जो हमें थामे रखता है और हमारी ढाल बनता है, हमें सही राह दिखाता है, मुश्किल समय में हमारे साथ होता है। मैंने हम अपने परिवार से जो भी सीखते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। परिवार हमारे जीवन की वो नींव है जो हमें प्यार, सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करती है। यह केवल रक्त संबंध से ही नहीं जुड़ा होता बल्कि भावनाओं का भी एक ऐसा केंद्र है जहां हम अपनी पहचान और ताकत पाते हैं। परिवार हमारी खुशियों की वो चाबी है जिससे जीवन रूपी ताला खुलता है, खुशियों का पिटारा खुलता है। इसलिए परिवार का मोल जिसने जान लिया उसने सही मायने में जीवन जी लिया। तो बहनों ये थी कुछ बातें हमारे लिए हमारा परिवार विषय पर। आइए कार्यक्रम में सुनते हैं अब ये सुरीला गीत।

0: inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
1: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value. With its bold design and spacious comfort, it's built to impress every single day.
0: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.70 lakh.
1: Yes, Rs. 6.70 lakh. Valid till 31st May. Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
0: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
2: Next. आइए बहन, हम कार्यक्रम आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं वार्ता। वार्ता का विषय है सिमटते परिवार, सिमटता अपना पर। वार्ताकार हैं गीता जोशी पंत।
3: सिमटते परिवार, सिमटता अपनापन। बहुत सारा स्नेह और यादें, कई सुनहरी रिश्ते, मन भावन सभी, खुशियों की सरगम दुपहरी, सपने अपनों के होने से होते सच साकार हैं, जहां रहते अपने अपनों संग कहते उसे परिवार हैं। हमारा व्यक्तित्व और हमारा अस्तित्व जिसके बिना अधूरा और असंभव है, और जहां हम अपने सुख दुख को सहजता से साझा कर पाते हैं, वो है हमारा परिवार। परिवार समाज की सबसे छोटी, मूलभूत और सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, जिसमें पति पत्नी, सास ससुर, ननद देवर और परिवार के कई अन्य सदस्यों को शामिल किया जा सकता है। ऐसा परिवार एक बड़ा परिवार या संयुक्त परिवार के रूप में जाना जाता है। परिवार प्रेम, सुरक्षा, पालन पोषण और नैतिक शिक्षा का स्रोत है, जो हमें कठिन समय में सहारा और साहस प्रदान

करता है। परिवार को समाज की आधारशिला कहना गलत नहीं होगा। ये हमारे व्यक्तित्व और दुनिया में हमारे व्यवहार को आकार देने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परिवार हमें अपनापन और पहचान दिलाता है। परिवार ही सबका सबसे भरोसेमंद सहारा होता है। चाहे उपलब्धियों की खुशियां हो या कठिन समय का सामना करना हो, हर परिस्थिति में परिवार का सहयोग अति आवश्यक है। हम अपने परिवार के सदस्यों पर सबसे ज्यादा भरोसा कर सकते हैं और बिना किसी दबाव या शर्त के हमारे परिवार के सदस्य हमारी बात, हमारी भावनाओं को सुनते और समझते हैं। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं। परिवार सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करता है। परिवार स्वयं में एक आनंद, उल्लास, संतोष, समाधान, सहयोग, सानिध्य और अपनत्व जैसी अनेक सुखद संवेदनाओं और भावनाओं का एक अनूठा गुलदस्ता है। कल्पतरु के समान इसकी छत्र छाया में इसके सभी सदस्यों की विविध विशेषताओं से हर जन को लाभान्वित होने का सुअवसर मिलता है। वो परिवार जिनके बिना हम अपने सभ्य जीवन की कल्पना तक नहीं कर सकते, अब आधुनिकता के दौर में धीरे धीरे सिमटते जा रहे हैं और अपनी ये प्रभावशाली पहचान खोते जा रहे हैं। एक समय था जब दादा दादी, माता पिता, बच्चे, चाचा चाची, बुआ, भतीजे, भतीजियां सब एक साथ एक छत्र के नीचे मिलजुल कर रहते थे, लेकिन बदलते समय के साथ परिवार का ये संयुक्त रूप अब सिर्फ एक कल्पना बनकर रह गया है। संयुक्त परिवार अब एकल परिवार में बदल गए हैं। आज परिवार का मतलब है केवल माता पिता और उनके बच्चे। समय के अनुसार हमारी प्राथमिकताएं भी बदल गई हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी और अपने भविष्य निर्माण की होड़ में हमने अपने अपनों से दूरियां बना ली हैं। पढ़ाई और नौकरी के लिए बच्चे घर छोड़कर शहरों में जाते हैं और फिर वहीं के होकर रह जाते हैं। इस तरह हम अपने परिवार से, अपने अपनों से बिछड़ते जा रहे हैं और उन्हें खोते जा रहे हैं। हमें अब अपने रिश्तों की परवाह तक नहीं रही। वे रिश्ते जो हमारे लिए बहुत कीमती हैं, हमारी बदलती सोच और सिमटते दायरे में हमारे बड़े बुजुर्ग कहीं पीछे छूट गए हैं। वो दादा दादी के संस्कारों और अनुभवों की पाठशाला हुआ कर जो दादा दादी संस्कारों और अनुभवों की पाठशाला हुआ करते थे, वे आज अकेलेपन की पहचान बन गए हैं। हमारे छोटे या एकल परिवार, या फिर यूं कहें कि हमारे सिमटते परिवार हमारे बुजुर्गों को ही नहीं बल्कि हमें भी एक ऐसे अकेलेपन की ओर धकेल रहे हैं जहां सुविधाएं तो बहुत हैं पर सुविधाओं का आनंद लेने के लिए साथ खड़ा अपना कोई नहीं है। आज हमारे पास भौतिक सुख सुविधाएं तो बहुत हैं, हमने प्रगति तो खूब कर ली है, पर हम आत्मनिर्भर भी हैं, लेकिन इस आत्मनिर्भरता ने हमें इतना अहंकारी बना दिया है कि हम अपने घर परिवार में छोटी छोटी बातों पर समझौता करने के बजाय रिश्तों को छोड़ना बेहतर समझते हैं। हर कोई बस अपने तक ही सीमित रहने लगा है और अपनेपन के एहसास को खोने लगा है। अपनापन वो अदृश्य धागा है जो दो व्यक्तियों को बिना किसी स्वार्थ के जोड़ता है। अपनापन कोई वस्तु नहीं जिसे खरीदा जा सके, ये एक ऐसा बीज है जिसे स्नेह के जल से सींचना पड़ता है। अपने थे अपनों का ढेर सारा प्यार था, भरा पूरा सबका एक प्यारा परिवार था। समय ऐसा बदला कि बदल गया परिवार, जिसमें अब मुश्किल से रहते हैं अपने चार। अपने कम, अपनापन कम, अब कम है रिश्ते नाते, मिलने भी एक दूजे से अपने कम ही आते जाते। जब परिवार सिमटता है तो केवल सदस्यों की संख्या कम नहीं होती बल्कि इंसान का धैर्य, सहनशीलता, सामंजस्य, त्याग की भावना और अपनापन भी कम होने लगता है। संयुक्त

0: परिवारों में हम मिलजुल कर रहना, मिल बांट कर खाना, दूसरों की गलतियों को माफ करना और मुश्किल समय में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना सीखते थे। एकल परिवारों में ऐसी सीख भला कहाँ मिल पाएगी। साथ ही बच्चों के पास वो भावात्मक सुरक्षा कवच भी नहीं जो कभी उन्हें बड़े या संयुक्त परिवार में मिलता था। आज जहाँ तकनीकी ज्ञान ने मीलों की दूरियों को तो मिटा दिया है, वहीं इंसानों के दिलों के बीच की दूरियां बढ़ती जा रही हैं। विडम्बना ये है कि आज हम हजारों मील दूर बैठे व्यक्ति से वीडियो कॉल पर तो जुड़ सकते हैं, लेकिन बगल के कमरे में बैठे माता पिता के मन की उदासी को पढ़ने का हमारे पास समय ही नहीं है। हम त्योहारों और उत्सवों की बधाई देने की औपचारिकता तो निभा लेते हैं, लेकिन अपने परिवार से मिलने का समय हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि भौतिक सुख सुविधाएं कितनी भी बढ़ जाएं, वे अपनों की जगह नहीं ले सकती। हमें तकनीक का गुलाम बनने के बजाय उसे एक साधन की तरह इस्तेमाल करना होगा। महीने में कम से कम एक बार अपने रिश्तेदारों से मिलना, बच्चों को दादा दादी के पास रहने का मौका देना और खाना खाते समय या खाली समय में मोबाइल को दूर रखकर केवल अपनों के साथ आमने सामने आपस में मिलकर खूब बातें करना और एक दूसरे को समय देना, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेकर हम अपनेपन के भाव को जगा सकते हैं और दूरियों को मिटा सकते हैं। आज छोटे परिवारों में रहने वाले बच्चे दादा दादी से मिलने वाले स्नेह और उनसे किस्से कहानियां सुनने के आनंद को जानते ही नहीं। ताऊ ताई, चाचा चाची और बुआ के साथ रिश्तों को निभाना नहीं जानते, क्योंकि उन्हें इन सब रिश्तों को समझने का अवसर ही नहीं मिल पाता। परिवार से विरासत में मिलने वाले संस्कार, रीति रिवाजों के ज्ञान, तीज त्योहारों के महत्व और परंपराओं की शिक्षा इन सबसे वंचित है आज की पीढ़ी। संयुक्त परिवारों में इन सब के बारे में बच्चे स्वतः ही सीख लेते थे, किंतु आज सीखने के सुअवसर, सिखाने का समय और अपनों का साथ मिल पाना एक चुनौती बनता जा रहा है। संयुक्त परिवार से सीमित या एकल परिवार का ये कठिन सफर सब कुछ पीछे छोड़ चुका है, जिसे अब दोबारा पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन संभावनाएं अभी भी तलाशी जा सकती हैं, प्रयास हमेशा किए जा सकते हैं। माना कि निजता, मनपसंद जीवन शैली, आधुनिक सुख सुविधाओं और नित नई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नए अवसरों की तलाश भी करनी ही पड़ती है, और खोजने से प्रबल इच्छा शक्ति से सब कुछ मिल भी जाता है, नामुमकिन तो कुछ भी नहीं। इसी तरह अपने परिवार को अहमियत देना भी तो हमारे ही हाथ में है। हम ऐसे अवसरों की तलाश कर सकते हैं जब हम अपने पूरे परिवार के साथ समय बिता सकें, एक ऐसा समय जिसका एक एक पल केवल हमारे परिवार के लिए हो, उनसे कुछ कहने और सुनने के लिए हो, हमारे अपनों के लिए हो, हमारे रिश्तों के लिए हो, हम हो, हमारे अपने हो, लेकिन उस समय हाथों में मोबाइल नहीं बल्कि अपनों का साथ हो, ताकि हम अपनेपन के अटूट बंधन में हमेशा बंधे रह सकें। ऐसा तभी संभव है जब हम हर रिश्ते की अहमियत को समझें, अपने परिवार की अहमियत को समझें और अपने परिवार को बिखरने से बचाएं। रिश्तों की मजबूत डोर हो और सजीली हर नई भोर हो, अपने अपनों से मिलें, खुशियों की कलियां खिलें, हम सबका अथक प्रयास हो, पूरी सबकी सब आस हो, अपनापन जिसका आधार हो, ऐसा प्यारा एक परिवार हो। धन्यवाद।
1: सिमटते परिवार, सिमटता अपनापन। बहनों, इस विषय पर अभी अपने वार्ता सुनी, वार्ताकार थी गीता।

0: जोशी पंत। आइए बहन अब कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा विराम।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: इंस्पिरेशन बिल्ट इनटू एवरी अराइवल, दिस मे ड्राइव होम योर फेवरेट नेक्सा कार एंड अनलॉक न्यू पॉसिबिलिटीज।
5: मीट द मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, वेयर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मीट्स प्रीमियम कंफर्ट एंड सेफ्टी, नाउ एट एन इफेक्टिव प्राइस स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट ₹9.72 लाख।
4: यस, ₹9.72 लाख। ऑफर वैलिड टिल 31st May। ओन दिस स्टाइल आइकन एट एन EMI ऑफ जस्ट ₹8.99 पर मंथ।
5: एक्सपीरियंस लग्जरी विद अ पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, 360 डिग्री व्यू कैमरा, हेड्स अप डिस्प्ले and 6 airbags as standard.
4: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
2: Nexa.
6: Most TVs keep you tied to the city, but you deserve the freedom to explore. Introducing the Maruti Suzuki e-Vitara. With its massive 61 kilowatt hour battery and a range of 543 kilometer, the horizon is finally yours. Own it for ₹10.99 lakh. With a battery EMI of just ₹3.99 per kilometer, backed by India's largest charging network, India Goes Electric.
2: Nexa.
0: बहनों गर्मी से क्या मैदान क्या पहाड़ सभी तप रहे हैं, और ऐसी तीव्र गर्मी में जैसे कुछ ठंडा खाने का मन करता है, ठीक वैसे ही मन करता है कि पहनावा भी ऐसा हो जिससे गर्मी से राहत मिले और पसीने का एहसास न हो। तो बहनों आज के फैशन फ्राइडे अंक में हम बात करेंगे गर्मी के मौसम में कपड़ों के चयन के बारे में। बहनों गर्मी के मौसम में आराम और ठंडक पाने के लिए हल्के और हवादार और साथ ही प्राकृतिक मटेरियल से बने कपड़े सबसे अच्छे होते हैं, फिर चाहे कपास से बने सूती कपड़े हो या फिर जूट से बने हुए, क्योंकि गर्मियों के लिए सही हवादार कपड़े न केवल ठंडक पहुँचाते हैं बल्कि हवा के प्रवाह को भी सुगम बनाते हैं। मैंने गर्मियों के लिए कपड़े के चयन के लिए कपड़ों के बेस मटेरियल के अलावा कपड़ों की स्टिचिंग व स्टाइलिंग भी हमें गर्मियों के लिए ड्रेस बनाते समय ध्यान रखनी चाहिए। मैंने गर्मियों के मौसम में शरीर से चिपके कपड़े बहुत ही परेशान करते हैं, तो इस मौसम में ढीले ढाले हवादार कपड़े बनाने चाहिए ताकि हवा का प्रवाह ठीक हो। इसके लिए ढीले कुर्ते पजामे, प्लाजो या फिर मैक्सी ड्रेस भी हम ट्राई कर सकते हैं जो कि आराम के साथ ही स्टाइलिश भी होगी। साथ ही मैंने गर्मी के मौसम में आंखों को अच्छे लगने वाले हल्के रंगों के कपड़ों का चयन करना ठीक रहेगा, क्योंकि गहरे चटक रंग गर्मी सोखते हैं और हल्के रंग ठंडक का एहसास कराते हैं। इसलिए गर्मियों के मौसम में कपड़ों के चयन में रंगों का भी ध्यान रखना चाहिए। मैंने गर्मी के मौसम में हमें सिंथेटिक कपड़ों से बचना चाहिए क्योंकि ये पसीनों को रोकते हैं और शरीर में गर्मी बढ़ाते हैं। साथ ही ढीले कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि तंग कपड़े त्वचा में से रगड़कर संक्रमण पैदा कर सकते हैं। इसलिए गर्मी के मौसम में कपड़ों का चयन करते समय इन बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो चिलचिलाती गर्मी में भी आप अपने शरीर को ठंडक और आराम पहुंचा सकेंगे।

मैं उस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी दीपिका पंत। मैंने आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है इस विषय पर आप अपने विचार हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9411001122 पर भेज सकते हैं। आपके सुझाव आपके विचारों को प्रत्येक माह घर संसार कार्यक्रम के अंतिम अंक में शामिल किया जाएगा। और बिनोसी के साथ आज के घर संसार कार्यक्रम से अपने सखी ज्ञान बिष्ट को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम घर संसार। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के एक बजने को है, कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में संयुक्त अरब अमीरात यूएई पहुंच गए हैं। वहां पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री ने आज संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। बैठक में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर विशेष ध्यान दिया गया। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति में आई बाधाओं के मद्देनजर ये चर्चाएं हो रही हैं और दोनों पक्षों द्वारा तेल भंडार तथा गैस आपूर्ति व्यवस्था पर चर्चा किए जाने की उम्मीद है। यात्रा से पहले

0: संयुक्त अरब अमीरात सरकार में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री रिम बिन इब्राहिम अल हाशमी ने प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त अरब अमीरात में एक सम्मानित व्यक्ति बताया। प्रधानमंत्री मोदी अगले चरण में नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली भी जाएंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। उन्होंने आपसी हित के द्विपक्षीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। डॉ जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराग़ची की भागीदारी की सराहना भी की। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी गैस की कीमतों में 2 रुपये की वृद्धि की है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है।
1: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारी विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाएं। 2 से शुरू होगा 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। एडमिट कार्ड, इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
0: श्री प्रधान ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भविष्य में किसी भी तरह की अनियमितताओं को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने संबंधी उपाय किए जाएंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत सुधारित और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉ जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार की तत्काल जरूरत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में रथेंद्र बसु निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। श्री बसु कूचबिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस रॉय की देखरेख में आज सुबह चुनाव संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने औपचारिक रूप से श्री बसु के नाम का प्रस्ताव रखा। सदन ने ध्वनिमत से उनके नाम की पुष्टि की। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य चुनाव प्रक्रिया के दौरान उपस्थित नहीं थे, लेकिन बाद में सत्र में शामिल हुए। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 250 अंक बढ़कर 75,649 पर, जबकि निफ्टी 81 अंक की वृद्धि के साथ 23,770 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। कल मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: 7:05 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत शुल्क मुक्त सोने के आयात की सीमा 100 किलोग्राम तय की। प्रदेश में मकानों के सूचीकरण और आवास जनगणना का कार्य तेजी से जारी। अभी तक 70% कार्य पूरा। 19 लाख घरों तक पहुंची टीम। पेट्रोल डीजल की बचत और ऊर्जा संरक्षण को लेकर राज्य के सरकारी विभाग सक्रिय। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने भी शुरू की तेल बचाओ मुहिम, साझा वाहन और ऊर्जा संरक्षण पर जोर। और चमोली जिले में रुद्रनाथ यात्रा का शुभारंभ। शीतकालीन गद्दी स्थल गोपीनाथ मंदिर में चल विग्रह उत्सव डोली को श्रद्धालु

0: के दर्शनार्थ रखा गया। 18 मई को खुलेंगे रुद्रनाथ मंदिर के कपाट। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं जयवीर सिंह और अब समाचार विस्तार से। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद केंद्र सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा तय नहीं थी। एक रिपोर्ट।
1: ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा है कि इस योजना के

0: ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है ताकि उसकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। इसमें यह भी कहा गया है कि दोबारा बिना शुल्क सोने के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा।
1: प्रदेश में मकानों के सूचीकरण और आवास जनगणना का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। अभी तक यह कार्य 70% तक पूरा हो गया है। इस कार्य के लिए 24 मई तक समय सीमा निर्धारित की गई है। जनगणना कार्य में लगी टीमों ने अभी तक 19 लाख घरों में डेटा संग्रहित किया है। इस लिहाज से 46 लाख की आबादी को कवर किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: भारत के महारजिस्ट्रार व जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने देहरादून में प्रमुख सचिव आर के सुधांशु के साथ प्रदेश में जनगणना कार्य की समीक्षा की। उन्होंने वर्चुअल बैठक कर जिलाधिकारियों और नगर आयुक्तों से फीडबैक लिया। श्री नारायण ने कहा कि जनगणना के कार्य में आंकड़ों की गुणवत्ता की सबसे ज्यादा अहमियत है क्योंकि इसी पर परिसीमन से लेकर जन कल्याणकारी योजनाओं का आधार टिका हुआ है। उन्होंने सभी से आंकड़ों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए डेटा की जांच पर विशेष ध्यान दिए जाने की अपील की। साथ ही उम्मीद जताई कि उत्तराखंड में जनगणना कार्य में शेष बचे एक तिहाई कार्य को भी समयबद्ध ढंग से पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले चरण में किया गया अच्छा काम ही दूसरे चरण की सफलता का मजबूत आधार साबित होगा। बैठक में प्रमुख सचिव आर के सुधांशु ने कहा कि जनगणना का कार्य राष्ट्रीय अभियान है जिसका देश की प्रगति और विकास से गहरा नाता है। उन्होंने कहा कि इस कार्य को प्राथमिकता देते हुए पूरा करना है। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से आशा भट्ट।
1: पिथौरागढ़ जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में नैनीताल बैंक की ओर से कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी गतिविधियों के तहत स्वास्थ्य विभाग को एक आधुनिक एम्बुलेंस प्रदान की गई है। इस अवसर पर राजकीय नर्सिंग संस्थान पिथौरागढ़ में आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी आशीष कुमार भटकाई ने कहा कि जिले के दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों तक समय पर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने इस जनहितकारी पहल के लिए बैंक का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि निजी स्थानों द्वारा जनहित में किए जा रहे कार्य प्रेरणादायी और सराहनीय हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि सरकारी संस्थाओं और निजी संगठनों के सहयोग से स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। विशेष रूप से सीमांत और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को इस प्रकार की सुविधाओं का सीधा लाभ मिलेगा।
3: एक बहुत अच्छी पहल नैनीताल बैंक के द्वारा यहाँ पर की गई है। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और मैं चाहूंगा कि आने वाले समय में भी इस तरह की गतिविधियां आप पूरे संपूर्ण जनपद में अन्य जगह भी, क्योंकि एम्बुलेंस की आवश्यकता निरंतर बनी रहती है। और मैं सीएमओ साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका सदुपयोग करना भी सुनिश्चित करें, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि एम्बुलेंस तो आ जाती है लेकिन फिर उसका रिकरिंग कॉस्ट होती है और उसका जो पूरा मेंटेनेंस होता है उसका भी पूरी प्लानिंग आपके पास होनी चाहिए और ड्राइवर की भी उपलब्धता सुनिश्चित होनी चाहिए और सही जगह पर डिप्लॉयमेंट भी होना चाहिए।
0: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
1: ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत। आप उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार सुन रहे हैं। पेट्रोल डीजल की बचत और ऊर्जा संरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के आह्वान के बाद प्रदेश में सरकारी विभाग सक्रिय होते दिखाई दे रहे हैं। इसी क्रम में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण एमडीडीए ने भी तत्काल प्रभाव से ऊर्जा संरक्षण और तेल बचत को लेकर कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों की तेल बचत और ऊर्जा संरक्षण पर विशेष कार्य योजना लागू की है। उन्होंने बताया कि अधिकारियों कर्मचारियों से कार्यालय आने जाने के दौरान साझा वाहन अपनाने का रोस्टर जारी किया गया है ताकि अनावश्यक ईंधन खपत को कम किया जा सके। इसके अलावा कार्यालय के आसपास रहने वाले कर्मचारियों को साइकिल से या पैदल कार्यालय आने की सलाह दी गई है। एमडीडीए उपाध्यक्ष ने कहा कि इससे न केवल ईंधन की बचत होगी बल्कि कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी। उन्होंने कहा कि ऊर्जा संरक्षण को लेकर भी कई महत्वपूर्ण आंतरिक दिशा निर्देश लागू किए गए हैं जिनका उद्देश्य बिजली और ईंधन दोनों की बचत करना है।
4: हम लोगों ने आज रोस्टर बनाया है कि सभी जेईई जो भी सेक्टर में निर्माण में सीलिंग में लगे हैं एक सेक्टर के लिए गाड़ी आवंटित कर दी है। सीलिंग में जाएंगे तो एक साथ एक ही गाड़ी में बैठकर लोग कार पूल करेंगे और सीलिंग की कार्रवाई और डस्टिंग की कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ हम लोगों ने जो एसी है वो 25 डिग्री पर मेंटेन किया है और जहां जरूरत नहीं है उसको बंद कर दिया।
1: चमोली जिले में स्थित रुद्रनाथ मंदिर के कपाट

0: 18 मई को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इस बीच भगवान रुद्रनाथ की यात्रा का आज शीतकालीन गति स्थल गोपीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद शुभारंभ हो गया है। रुद्रनाथ के मुख्य पुजारी हरीश भट्ट ने बताया कि सुबह पूजा अर्चना के बाद गोपीनाथ मंदिर में गर्भगृह से भगवान रुद्रनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली को श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए मंदिर परिसर में रखा गया। उन्होंने बताया कि आज और कल उत्सव डोली श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए मंदिर परिसर में ही रहेगी। 17 मई को डोली रुद्रनाथ के लिए प्रस्थान करेगी और 18 मई को रुद्रनाथ मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे।
1: आज भगवान श्री रुद्रनाथ जी की जो विग्रह मूर्ति है वो गर्भगृह से आकर मंदिर प्रांगण में रख दी गई है और आज और कल दो दिन दर्शनार्थ के लिए रखी जाएगी। 17 तारीख को हम यहाँ से प्रातः 9 बजे प्रस्थान करके यहाँ से चलेंगे और 18 तारीख 11-12 बजे के बीच में भगवान रुद्रनाथ जी के कपाट खुलेंगे।
0: पौड़ी की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया के निर्देशों के क्रम में कोटद्वार में उप जिलाधिकारी ने आज शशिधर भट्ट स्पोर्ट्स स्टेडियम का स्थलीय निरीक्षण कर निर्माण कार्यों, साफ सफाई व्यवस्था और खिलाड़ियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान परिसर स्वच्छ और व्यवस्थित पाया गया तथा शौचालयों की स्थिति भी संतोषजनक मिली। साथ ही निर्माण कार्य भी तेजी से संचालित किए जा रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि स्टेडियम में चल रहे सभी निर्माण कार्य और मरम्मत कार्यों को इस माह के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। उप जिलाधिकारी ने निर्माण कार्यों को गुणवत्ता के साथ समयबद्ध ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए। हरिद्वार में आगामी कुंभ मेले को सुव्यवस्थित, सुरक्षित और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से मेला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। इसी क्रम में मेलाधिकारी सोनिका ने विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे सड़क और पुल निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यों की प्रगति का जायजा लेने के साथ ही सड़क निर्माण कार्यों की मौके पर गुणवत्ता और तकनीकी मानकों की भी जांच कराई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत शुल्क मुक्त सोने के आयात की सीमा 100 किलोग्राम तय की। प्रदेश में मकानों के सूचीकरण और आवास जनगणना का कार्य तेजी से जारी। अभी तक 70% कार्य पूरा, 19 लाख घरों तक पहुंची टीम। पेट्रोल डीजल की कीमत माफ कीजिए बचत और ऊर्जा संरक्षण को लेकर राज्य के सरकारी विभाग सक्रिय। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने भी शुरू की तेल बचाओ मुहिम, साझा वाहन और ऊर्जा संरक्षण पर जोर। और चमोली जिले में रुद्रनाथ यात्रा का शुभारंभ, शीतकालीन गद्य स्थल गोपीनाथ मंदिर में चल विग्रह उत्सव डोली को श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ रखा गया। 18 मई को खुलेंगे रुद्रनाथ मंदिर के कपाट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:15 हुए हैं। पेश है सुगम संगीत। आगाज कर रहे हैं गुलाम अली की गाई इस गजल के साथ।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून,

0: अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
1: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
0: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: सुगम संगीत में लीजिए अब सुनिए जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजों में कतील शिफाई की गजल।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.8 मेगा हर्ट्स पर। दिन के 1:30 हुए हैं। प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग की कड़ी संख्या 1285।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं विमलेश
1: और मैं अजीत। नमस्कार, राधे नगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया और स्वप्निल काटकर जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: दुनिया में सभी लोग किसी न किसी के भरोसे पर जीते हैं, इसलिए हरदम यही प्रयास करें कि हमारे ऊपर से किसी का भरोसा ना टूटे।
1: बहुत अच्छा विचार। जी हाँ श्रोताओ, दुनिया भरोसे पर ही तो कायम है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारे प्रति किसी का विश्वास न टूटे, क्योंकि टूट जाए तो मरम्मत में मुश्किल होती है।
2: जी हाँ।

0: पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम हैं:
1: दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा,
0: गांव उगाला जिला अम्बाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और परिवार के अन्य सभी सदस्यगण,
1: और महाराष्ट्र से मिस्टर पटेल, और
0: ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी।
1: संदेशों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अब स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में। तो विमलेश जी, इस सप्ताह हमने विशेष रूप से ये चर्चा की कि गर्मी के मौसम में हम क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं। आशा है कि श्रोताओं को जरूर पसंद भी आई होगी। आज इस सप्ताह के हमारे प्रसारण का आखिरी दिन है, तो आज हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
0: जी अजीत जी, देखिए हमारा प्रसारण शैक्षिक है और विशेषकर स्कूली बच्चों के लिए है। तो मुझे लगता है कि जब तक हम अपने प्रसारण में बच्चों की बातें न करें, तब तक बात अधूरी ही रहेगी।
1: बिल्कुल।
0: तो क्यों न गर्मी के मौसम को बच्चों की गर्मी की छुट्टियों से जोड़कर देखा जाए।
1: अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बच्चों के लिए भी और उनके अभिभावकों के लिए भी।
0: जी अजीत जी, गर्मियों की छुट्टियाँ बच्चों के लिए सिर्फ आराम का समय नहीं, बल्कि सीखने, बढ़ने और नए अनुभव लेने का सुनहरा अवसर देती हैं। और यदि इन छुट्टियों को सही दिशा दे दी जाए, तो ये छुट्टियाँ जीवन भर काम आने वाली आदतें सिखा सकती हैं।
1: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आज हम बात करेंगे कि बच्चे और उनके अभिभावक गर्मी की छुट्टियों का सदुपयोग कैसे करें। तो विमलेश जी, चलिए आपसे शुरू करते हैं।
0: जी अजीत जी, देखिए सबसे जरूरी बात यह है कि अपनी पढ़ाई से जुड़ाव हमेशा बनाए रखें।
1: जी, लेकिन विमलेश जी, क्या पाठ्य पुस्तकें ही पढ़ी जाएं?
0: जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ या कुछ और कहानियाँ। कहानियाँ भाषा के कौशल को बढ़ाने में बड़ी सहायक सिद्ध होती हैं।
1: जी, और हाँ, श्रोताओं आपको विशेष सूचना दे दें कि यदि आपको पाठ्य पुस्तकों को सुनना है, तो आप NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर जाएं। आपको वहाँ NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ऑडियो संस्करण या ऑडियो बुक मिल जाएगा।
0: आप इस चैनल पर हमारे शैक्षिक कार्यक्रम भी सुन सकते हैं, जो आप उमंग कार्यक्रम में सुनते हैं। और हाँ, यदि आप पाठ्य पुस्तक या कहानी पढ़ें, तो बोल बोल कर यानी वाचन के साथ पढ़ें,
1: क्योंकि इससे धारा प्रवाह पढ़ने के कौशल का भी विकास होगा। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि छुट्टियों के दिनों में अभिभावक बच्चों को कोई ना कोई नया हुनर जरूर सिखाएं, जैसे चित्रकला, क्राफ्ट बनाना या फिर कोई वाद्य यंत्र सीखना।
0: तो ये तो बात हुई पढ़ाई की। पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक गतिविधि भी जरूर करें। सुबह या शाम जरूर कोई खेल खेलें। और भी बहुत कुछ गर्मी की छुट्टियों में किया जा सकता है,
1: जैसे
0: प्रकृति से जुड़ना, यानी कि पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना, गर्मी के मौसम में पक्षियों को दाना पानी देना इत्यादि।
1: जी विमलेश जी, मुझे एक और बात याद आ गई। यदि इन दिनों में वे अपनी चीजों को ठीक से रखने का अभ्यास करें, तो छुट्टियाँ खत्म होने तक ये उनकी आदत बन जाएगी।
0: इन दिनों में बच्चे कुछ रचनात्मक गतिविधियाँ भी कर सकते हैं,
1: जैसे
0: कि कहानी लिखना, डायरी लिखना, कविता लिखना इत्यादि। और हाँ, इन दिनों में वे माता पिता के कामों में भी हाथ बटा सकते हैं।
1: और इन छुट्टियों में कहीं घूमने भी जा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, इन छुट्टियों में अपने बुजुर्गों जैसे नाना नानी, दादा दादी से भी मिलने का थोड़ा समय जरूर निकालें।
0: तो श्रोताओं, आशा है कि आपको हमारे ये ग्रीष्म रेडियो विशेषांक पसंद आए होंगे। अब आपके लिए एक प्रश्न।
1: तो प्रश्न है कि बच्चे अपनी गर्मी की छुट्टियों में और क्या क्या कर सकते हैं। भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है
0: थाथू और मैं। कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में एक बच्ची और उसके दादाजी के बीच स्नेह और प्रेम के रिश्ते को उजागर किया गया है, और इसके द्वारा बच्चों को पारिवारिक मूल्यों की शिक्षा दी गई है। विशेष रूप से ये संदेश दिया गया है कि बच्चे घर के बड़े बुजुर्गों के प्रति प्रेम और आदर का भाव रखें।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम थाथू और मैं।
2: अपने दादाजी के साथ रहती हूँ, उन्हें मैं था कहती हूँ। लेकिन जब उन पर बहुत प्यार आता है, तो मैं उन्हें थातू बुलाती हूँ। कभी कभी थातू मुझे सिनेमा दिखाने बाहर ले जाते हैं। मैं हॉर्न बजाती हूँ, पम पम। रास्ते की सब बकरियां और गायें दूर

0: फट जाती हैं। थातू, क्यों ना हम चांद पर चलें? मैं पूछती हूँ। वे सिर हिलाकर हंस देते हैं। थाता के दांत नहीं हैं। जब वे हंसते हैं तो एक गुलाबी सी दीवार दिखाई देती है और फिर एक गुलाबी सी गुफा। जब बारिश होती है तो थाता खिड़की के बाहर इशारा करते हैं और कहते हैं,
1: देखो बरसात हो रही है, चलो बाहर चलें।
0: थातू और मैं हमेशा कुछ अलग करते हैं। हम समुद्र तट पर जाते हैं। ऊंची नीची लहरें मेरे चारों तरफ उठती गिरती हैं। चांद हमारे साथ साथ चलता है और हवाएं सीटी बजाती हैं। मछलियां थातू और मुझे ढूंढती हुई आती हैं। मेरी उंगलियां कुतरती हैं और मुझे खेलने को बुलाती हैं। हम दौड़ लगाते हैं और कलाबाजियां खाते हैं। जब अंधेरा हो जाता है तो मैं थातू का हाथ पकड़ लेती हूँ, उनके साथ में कूदती फांदती घर आ जाती हूँ और फिर थातू अपनी मनपसंद किताब पढ़ने बैठ जाते हैं। थातू, ये कोई जादुई किताब है? मैं पूछती हूँ। थातू मुस्कुराते हैं। क्या मैं भी जादूगर बनूंगी आपकी तरह? वे कहते हैं,
1: अब सो जाओ।
0: उनकी गोद में सिर रखकर मैं सो जाती हूँ। मुझे अपने थातू से बेहद प्यार है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि एक दिन मैं भी उनके जैसी बनूं।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम थाथू और मैं, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
3: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के सूबेदार जोगिंदर सिंह की वीरता और अपार शौर्य के बारे में बताया गया है कि कैसे भारत चीन के युद्ध के दौरान उन्होंने अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया और युद्ध का रुख भारत के पक्ष में मोड़ दिया। उन्हें इस वीरता के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
1: जब तुम लौट कर जाओ तो लोगों से हमारे बारे में कहना कि तुम्हारे कल के लिए हमने अपना आज कुर्बान कर दिया, अपना आज कुर्बान कर दिया। जरूर ये शब्द किसी ऐसे युद्ध वीर के होठों से निकले।

0: ने जिसने देश की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। आज हम भारत माता के एक ऐसे ही सपूत की चर्चा करेंगे जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध में अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया और देश का मस्तक गौरव से ऊंचा कर दिया।
1: वो युद्ध नायक हैं भारतीय सेना के सूबेदार जोगिंदर सिंह। उनका जन्म 28 सितंबर 1921 को पंजाब के मोगा जिले के एक छोटे से गांव महाकला में हुआ था। बचपन से ही वो बड़ी कुशाग्र बुद्धि के थे और अपने स्कूल में एक मेधावी विद्यार्थी माने जाते थे। जोगिंदर सिंह सेना में भर्ती हो गए।
0: कार्य के प्रति निष्ठा और कर्तव्यों के प्रति सजगता के कारण यूनिट के सभी लोग उनका सम्मान करते थे। अधिकारी गण भी उनसे प्रसन्न थे। धीरे धीरे उन्नति करते हुए वो यूनिट इंस्ट्रक्टर बन गए।
1: सन 1962 जोगिंदर सिंह की यूनिट में खेल अभ्यास चल रहा था। उनकी टीम लखनऊ में संपन्न होने वाली बास्केटबॉल टूर्नामेंट की तैयारी कर रही थी।
2: अरे ये क्या, इसका मतलब क्या वॉर शुरू हो गई? हाँ।
1: ये था 1962 का वर्ष। भारत चीन सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे थे। चीनी फौज बख्तरबंद गाड़ियों, तोपों और आधुनिक हथियारों के साथ भारत की सीमा की ओर बढ़ चली थी। लेकिन अब तक हमला नहीं हुआ था।
0: भारतीय सीमा की ओर चीनी फौज की बढ़त ने साफ संकेत दे दिया था कि युद्ध होकर रहेगा। जोगिंदर सिंह 16 रेजिमेंट में थे। उनकी बटालियन को तुरंत लखनऊ से वापस आने का संदेश दिया गया और फौरन उन्हें नेफा में मोर्चा संभालने का आदेश दिया गया।
1: नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, आज ये क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश कहलाता है। सूबेदार जोगिंदर सिंह की पलटन को बूमला तवांग में तैनात किया गया। बूमला तवांग एक अत्यंत दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है जहां लगभग हर समय बर्फ जमी रहती है। भारतीय सेना को ऐसे पर्वतीय और बर्फानी क्षेत्र में युद्ध करने का अनुभव ना के बराबर था। उनके पास वहां की भयंकर ठंड को झेलने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी नहीं थे।
0: इतना ही नहीं, भारतीय सेना के पास हथियारों और गोला बारूद की भी कमी थी। जोगिंदर सिंह पलटन के इंचार्ज थे। उन्होंने 1947-48 में पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। वो एक अनुभवी योद्धा थे। उनकी टुकड़ी में वो एकमात्र व्यक्ति थे जिन्हें सैन्य युद्ध का पूर्व और पर्याप्त अनुभव था।
1: जहां उनकी टुकड़ी में केवल 29 सैनिक ही थे, वहीं चीन की सेना में सैनिकों की संख्या तो बहुत थी ही। उनके पास अत्याधुनिक हथियार, बर्फीले क्षेत्र में युद्ध लड़ने का अनुभव, भारी मात्रा में रसद और ठंड से निपटने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी थे।
0: समय की गंभीरता को भांपते हुए सूबेदार जोगिंदर सिंह की टुकड़ी समझ चुकी थी कि ये युद्ध आसान नहीं होगा।
3: सैनिक भाइयों, जैसा कि हम देख सकते हैं कि दुश्मन ने बंकर बनाने शुरू कर दिए हैं। वो हम पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, तो अब हमें भी फौरन खाइयां खोदना शुरू कर देना चाहिए। लग जाओ काम पे।
4: जी सूबेदार साहब।
3: हम 29 लोग हैं, तो कम से कम 4 खाइयां और 3 बंकरों की जरूरत पड़ेगी हमें। साथियों, बेशक दुश्मन के पास बेहतर हथियार हैं,

0: तादाद में हमसे बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें याद रखना है कि आज भारत माता का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है, तो हर एक हिम्मत बढ़ा के रखेगा।
1: जी सुबेदार साहब।
0: बोले सोनिहाल।
2: सत श्री अकाल।
3: दिन था 20 अक्टूबर 1962, सुबह 5:30 बजे का समय, कड़ाके की ठंड थी।
4: तेजा सिंह, और चाय बना दे यार, सवेर होगी।
5: साहब,

0: भीषण संग्राम हो रहा था। एक ओर आधुनिक हथियारों से लैस भारी संख्या में चीनी सेना, तो दूसरी ओर सूबेदार जोगिंदर सिंह के नेतृत्व में सिख रेजिमेंट के मात्र 29 सैनिक। चीनी सेना के पास बल था तो भारतीय सेना के पास मनोबल।
1: इस बीच जोगिंदर सिंह बुरी तरह से घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी लाइट मशीन गन से हमला जारी रखा और शत्रु पक्ष के बहुत से सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
0: और अब जो कुछ हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। भारतीय सैनिकों के पास गोलियां कम थी और वो बहुत देर तक गोला बारूद से चीनी सेना का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसलिए सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अब आमने सामने के युद्ध का रास्ता चुना।
1: सिख सैनिकों ने अपनी बंदूकों पर बायोनेट यानी संगीन लगाई और जो बोले सो निहाल के युद्ध घोष के साथ प्रचंड वेग से चीनी बंकरों पर टूट पड़े। संगीन के पहर ने शत्रु शिविरों में खलबली मचा दी।
0: बोमला तवांग दर्रे के इस युद्ध में जोगिंदर सिंह के परम मित्र सूबेदार काला सिंह भी शामिल थे और इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी भी। उन्होंने उस दिन के युद्ध की घटना को याद करते हुए बताया,
2: उस दिन हमारे सैनिकों के रौद्र रूप को देखकर चीनी सैनिक बुरी तरह से घबरा गए थे। उन्होंने सिख रेजिमेंट के जवानों को तूफान की तरह अपने कैंप की तरफ बढ़ते हुए देखा था। उनकी दाढ़ियां खुली हुई थी और हवा में लहरा रही थी। हालांकि वो तादाद में बहुत कम थे, पर उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि चीनी कैंपों पर वो कह ठा देंगे।
0: इस आमने सामने के युद्ध में भी सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया। उनके रण कौशल से प्रतिपक्ष के बहुत से सैनिक खेत रहे। वो गंभीर रूप से घायल होने पर भी पूरी ऊर्जा के साथ लड़ते रहे और अंत में जमीन पर गिर गए।
1: इसके बाद भी उन्होंने धीरे धीरे रेंगना शुरू किया, लेकिन एक बर्फीली चट्टान से गिरकर खाई में बर्फ की परतों के नीचे दब गए।
0: इसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा और ना ये पता चला कि वो कहां हैं। सूबेदार जोगिंदर सिंह को उनकी कर्तव्य निष्ठा, सशक्त और प्रेरणादायक सैन्य नेतृत्व और असाधारण वीरता के लिए देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: बाद में पता चला कि वो चीन की सेना द्वारा युद्धबंदी बना लिए गए थे।

साई कने हिडी दिनी हे देसाए माधुर्य रूपा

0: उत्तराखंड के लोकगीत अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2:15 होने को हैं। कुछ ही पलों में दोपहर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबूधाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता का आश्वासन दिया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेंद्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबूधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की।
2: ये किसी भी रूप में स्वीकार करना ही है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और बिंदु का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।

0: राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद को भाई कहकर संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने चुनौतीपूर्ण समय में यूएई नेतृत्व के लचीलेपन की प्रशंसा की। श्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है और उनको फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखा, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और यूरोप के 6 दिन के दौरे के पहले चरण में आज अबूधाबी पहुंचे। हवाई अड्डे पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में औपचारिक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। यूएई के F-16 लड़ाकू विमानों ने उनके विमान को अमीरात हवाई क्षेत्र में प्रवेश कराते हुए सुरक्षा प्रदान की। एक रिपोर्ट।
2: बातचीत के नतीजे सामने आने शुरू हो गए हैं। दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक MOU पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर RBL बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉ जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। एक रिपोर्ट।
3: विदेश मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने लगातार सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था का समर्थन किया है जो मौजूदा वास्तविकताओं को दर्शाए तथा उभरते बाजारों तथा विकासशील देशों की आकांक्षाओं को पूरा करे। उन्होंने कहा कि सभी देशों को न केवल वैश्विक चुनौतियों का प्रबंधन करने के लिए बल्कि और अधिक लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व करने वाली और समानतापूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने में मिलकर काम करना चाहिए। डॉ जयशंकर कहा कि सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन होना चाहिए। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। डॉ जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराग़ची की भागीदारी की सराहना भी की। विदेश मंत्री ने क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिग्स पेरेला और युगांडा के विदेश मंत्री ओडोंगो जेजे से भी मुलाकात की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल में प्रवेश के लिए NEET UG 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में OMR मोड में आयोजित होने वाली NEET UG परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी CBT माध्यम से होगी।
4: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, OMR शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते NTA ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाएं। 2 से शुरू होगा, 5 15

0: तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
1: श्री प्रधान ने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अपनी पसंद का शहर चुनने का अवसर मिलेगा।
2: जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी जीरो फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए हम उसकी दायित्व ले रहे हैं। लेकिन प्रथम दृष्टया जो एनटीए ने तय किया है कि हम एक सप्ताह विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते हैं, ये विंडो खुला रहेगा।
1: श्री प्रधान ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की आवश्यकता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। ये परियोजनाएं सेमीकंडक्टर, रेलवे और सीवेज जल शोधन संयंत्र से जुड़ी हैं। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य में कई परियोजनाएं शुरू की गई जिससे विकास को गति मिल रही है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
3: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है। आज मोबाइल फोन भारत से एक्सपोर्ट होने वाली एक नंबर सबसे पहली कमोडिटी बन गई है।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने तेल कीमतों में वृद्धि पर कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बाद जब विश्व में ईंधन की कीमतों में वृद्धि देखी गई तब भारत उस स्थिति में सबसे अलग खड़ा रहा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि जहां कई देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 20% से लगभग 100% तक वृद्धि की गई है, तब भारत ने पेट्रोल के दाम में केवल 3.2% और डीजल के लिए 3.4% की वृद्धि की है। श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जन कल्याण के साथ आर्थिक स्थिरता को संतुलित कर रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की कथित विदेश यात्राओं पर सवाल उठाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक सांसद को संबंधित अधिकारियों को अपनी विदेश यात्राओं की जानकारी देना अनिवार्य है और विदेश में मेहमान नवाजी के संबंध में FCRA अधिनियम 2010 के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में रथेंद्र बसु निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। श्री बसु कोचबिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस रॉय की देखरेख में आज सुबह चुनाव संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने औपचारिक रूप से श्री बसु के नाम का प्रस्ताव रखा। सदन ने ध्वनिमत से उनके नाम की पुष्टि की। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य चुनाव प्रक्रिया के दौरान उपस्थित नहीं थे लेकिन बाद में सत्र में शामिल हुए। उधर पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के वरिष्ठ विधायक ए अम्बालगन को 16वीं विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सिफारिश पर यह नियुक्ति की है। श्री अम्बालगन पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और ओपलम से विधायक हैं। विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में औपचारिक पदभार ग्रहण करने के बाद वे विधानसभा में नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। पंजाब के लुधियाना को हलवारा हवाई अड्डे पर एयर इंडिया की पहली उड़ान के आगमन के साथ भारत के वाणिज्यिक विमान नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने हवाई अड्डे के संचालन को क्षेत्र में उद्योग, व्यापार और आर्थिक विकास के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन बताया। एयर इंडिया ने लुधियाना और दिल्ली के बीच दैनिक उड़ानें शुरू की हैं। इससे ब्रिटेन और रोम, मिलान तथा पेरिस सहित अन्य गंतव्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी संभव हो सकेगी। वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल एपी सिंह ने आज कहा कि ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियां वायु शक्ति का ही विस्तार हैं। मानव रहित हवाई प्रणालियों पर सेंटर फॉर एयरोस्पेस पावर एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज तथा इंडियन मिलिट्री रिव्यू द्वारा आयोजित एक संयुक्त सेमिनार और प्रदर्शनी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियां अभियानों के दौरान मानव जीवन के जोखिम को कम करती हैं। ओमान

0: के मुलद्दा में बांग्लादेश के चार भाइयों के शव एक खड़ी कार के अंदर मिलने से प्रवासी समुदाय और उनके गृहनगर चट्टोग्राम में शोक का माहौल है। पुलिस को शवों की जानकारी दो बांग्लादेशी प्रवासियों द्वारा दी गई। कांगो गणराज्य के उत्तर पूर्व में इबोला के प्रकोप से 65 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों लोग संक्रमित हो गए हैं। अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने बताया कि लगभग 246 लोगों में इबोला होने का संदेह है। और अब खेल खबरों के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा।
1: सबसे पहले बात बैडमिंटन की। थाईलैंड ओपन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने ताकुमी नोमुरा और युइची शिमोगामी की जापानी जोड़ी को 21-12, 21-13 से हराया। उधर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु को जापान की अकाने यामागुची से हार का सामना करना पड़ा। आज पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला थाईलैंड के कुनलाउत विदत्सरन से होगा। टेनिस कोर्ट का रुख करें तो इटली ओपन में महिला सिंगल्स फाइनल मुकाबला कल यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना और अमेरिका की कोको गॉफ के बीच होगा। सेमीफाइनल में स्वितोलिना ने पोलैंड की इगा स्वियातेक को, वहीं कोको गॉफ ने रोमानिया की सोरोना क्रिस्टिया को पराजित किया। कोको गॉफ वीनस विलियम्स के बाद लगातार इटली ओपन के फाइनल में पहुंचने वाली सबसे युवा अमरीकी टेनिस खिलाड़ी बन गई है। इस बीच क्रिकेट की बात करें तो आईपीएल में आज लखनऊ में शाम 7:30 से लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। कल मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया था।
0: मौसम विभाग ने आज कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में रात के समय मौसम गर्म रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबूधाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेंद्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2:30 हुए हैं और इस समय श्रोताओं के लिए हम लेकर आते हैं खेती की बातें। आज इस कार्यक्रम में जानकारी का विषय है पर्वतीय क्षेत्रों में मूंगफली की काश्त। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर J.K. बिष्ट।
3: किसान भाइयों, खेती में अनाज व दालों के साथ ही तेल वाली फसलों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। खरीफ मौसम में जो तेल वाली फसलें उगाई जाती हैं उनमें मूंगफली, सोयाबीन और तिल प्रमुख हैं। इनमें मूंगफली का एक प्रमुख स्थान है क्योंकि इसके पौधों के सभी भागों का महत्वपूर्ण उपयोग है। जड़ों में लगने वाली फलियों की खुदाई के बाद बचा हुआ पौधे का हरा भाग भी पौष्टिक चारे के रूप में पशुओं को खिलाया जाता है। मूंगफली वनस्पतिक प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। इसके दानों में लगभग 40% तेल पाया जाता है। इसके तेल में 82% तरल चिकनाई वाले ओलिक एवं लिनोलिक अम्ल पाए जाते हैं। इसके अलावा दाने में लगभग 25% प्रोटीन तथा 10% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसके तेल का उपयोग वनस्पति घी, साबुन, सौंदर्य प्रसाधन और क्रीम आदि का निर्माण में किया जाता है। तेल निकालने के बाद बची हुई खली में लगभग 8% नाइट्रोजन, 1.4% फास्फोरस और 1.2% पोटाश पाया जाता है। भूनकर खाने के अलावा मूंगफली के दानों को कच्चा तथा तलकर मीठे और नमकीन व्यंजन बनाकर काम में लाया जाता है। मूंगफली की जड़ों में पाए जाने वाले जीवाणु वातावरण से नाइट्रोजन को मिट्टी में संचित करने का कार्य करते हैं, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और इसी कारण फसल चक्र में मूंगफली को शामिल किया जाता है। आज इस वार्ता के

माध्यम से हम मूंगफली की खेती के विषय में चर्चा करेंगे। मूंगफली के लिए लंबे तथा गर्म मौसम की आवश्यकता पड़ती है। अंकुरण तथा प्रारंभिक बढ़वार के लिए 14 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान आवश्यक होता है। इसकी खेती अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी में सफलता से की जा सकती है। भारी और सख्त भूमि इसके लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि ऐसी मिट्टी में फलियां अच्छी तरह नहीं बढ़ पाती हैं। भूमि का पीएच मान 5 से अधिक हो तो पैदावार अच्छी मिलती है। पर्वतीय क्षेत्र के लिए मूंगफली की प्रजातियों में सुलामीत और वीएल मूंगफली एक प्रमुख है। स्थानीय प्रजातियों की तुलना में इन प्रजातियों में रोगों का प्रकोप कम होता है, साथ ही इसकी फलियां मोटी और दाना सुडोल होता है। इन प्रजातियों की उत्पादन क्षमता 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टर है, अर्थात 40 से 50 किलोग्राम प्रति नाली है। इसलिए किसान भाइयों के चाहिए कि वे उन्नत प्रजातियों के स्वस्थ और प्रमाणिक बीजों का प्रयोग करें। बीज की मात्रा एक नाली खेत के लिए 1 किलो 200 ग्राम से लेकर 1 किलो 400 ग्राम तक है। यह मात्रा छिलका उतारकर मूंगफली की गिरी अर्थात दाने के रूप में है। जहां तक बुआई के उपयुक्त समय का प्रश्न है, जून के प्रथम सप्ताह में बोने से अच्छी उपज प्राप्त होती है। देर से बुआई करने पर उपज में कमी आ जाती है। किसान भाइयों, प्रजातियों के चयन व बीज की मात्रा के बाद खेत की तैयारी तथा खाद और उर्वरक के प्रयोग की बात आती है। बोने से पहले खेत की गहरी जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा कर समतल कर लें। पर्वतीय क्षेत्र में गोबर की खाद का प्रयोग आमतौर पर किया जाता है। इसके लिए बुआई से 15 दिन पहले 3 से 4 कुंटल सड़ी गोबर की खाद प्रति नाली खेत के हिसाब से मिट्टी में अच्छी तरह मिला दें। जहां तक रासायनिक खादों का सवाल है, एक नाली खेत के लिए बुआई के समय 900 ग्राम यूरिया, 7.5 किलोग्राम सिंगल सुपरफास्फेट और 700 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास की आवश्यकता पड़ती है। यूरिया की इतनी ही मात्रा फसल में फूल आने की अवस्था पर छिड़काव के रूप में देनी होगी। तेल की मात्रा और गुणवत्ता के लिए सल्फर नामक तत्व की बड़ी उपयोगिता है। मिट्टी में सल्फर की उपस्थिति से नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में मदद मिलती है। यदि आप नाइट्रोजन अमोनियम सल्फेट उर्वरक द्वारा या फास्फोरस सिंगल सुपरफास्फेट के द्वारा खेत में प्रयोग करें तो सल्फर यानी गंधक की आपूर्ति भी इन्हीं से हो जाती है। अन्यथा जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। जिप्सम में लगभग 18.6% सल्फर और 29% कैल्शियम होता है। एक नाली खेत में 5 से 10 किलो जिप्सम बुआई के समय और फूल आने पर देने से फलियां अच्छी बनती हैं। मूंगफली के बीजों से छिलका अलग करते समय सावधानी रखनी चाहिए, ताकि बीजों को सुरक्षित रखा जा सके। रोग से बचाव के लिए बीजों के किसी कवकनाशी जैसे कैप्टान या थायराम से उपचारित करना चाहिए। जीवाणु खाद जैसे राइजोबियम से बीजों को उपचारित कर बोने से भूमि में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण की प्रक्रिया तेज होती है, जिसका उपज पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। मूंगफली को 3 से 5 सेंटीमीटर की गहराई तथा कतारों में ही बोना चाहिए। कतारों के बीच 35 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी रखें। बुआई के बाद फसल को 45 से 50 दिन तक खरपतवारों से मुक्त रखना जरूरी है और पौधे से पौधे की दूरी 5 से 7 सेंटीमीटर रखें और दो लाइनों के बीच में 45 सेंटीमीटर की दूरी बनाएं। बुआई के बाद 45 से 50 दिन तक खरपतवारों से मुक्त रखना जरूरी है। इस अवधि में 2 से 3 निराई गुड़ाई करनी चाहिए। रसायनों के प्रयोग से भी फसल को खरपतवारों से मुक्त रखा जा सकता है। इसके लिए एलाक्रोन नामक खरपतवार नाशी रसायन की 4 मिलीमीटर मात्रा का प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर बुआई के तुरंत बाद खेत में नमी रहते छिड़काव करना चाहिए। फसल में निराई गुड़ाई तथा मिट्टी चराने का कार्य फूल आने से पहले कर लें, अन्यथा फलियां बनते समय यह कार्य करने पर उनके टूटने से उपज पर खराब असर पड़ता है। किसान भाइयों, मूंगफली में रोगों और कीटों के द्वारा काफी नुकसान पहुंचाया जाता है। इनमें सबसे ज्यादा नुकसान
टिक्का नामक

बीमारी से होता है। यह रोग एक कवक के द्वारा होता है जिसका वैज्ञानिक नाम माइक्रोस्पेला पर्सोनाटा और माइक्रोस्पेला एरिचिडिकोला है। प्रारंभिक अवस्था में इस रोग के लक्षण नीची पत्ती पर दिखाई देते हैं, इन पत्तियों पर गहरे धब्बे पड़ जाते हैं और बाद में ये धब्बे गोल चकत्तों में बदल जाते हैं। इन धब्बों का रंग काला तथा भूरा हो जाता है और ये बड़ी तेजी से बढ़ जाते हैं जिसके कारण पत्तियां गिरने लगती हैं। इस रोग से बचाव के लिए बोने से पहले बीजों का कैप्टान या थायरान नामक दवा 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर लेना चाहिए। खड़ी फसल में रोग के लक्षण दिखाई देने पर कार्बंडाजिंग की 1 ग्राम दवा का प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 10 से 15 दिन के अंतराल पर 2-3 बार छिड़काव करें। इसके साथ ही मोजेक नामक रोग लगता है जो विषाणु या वायरस के कारण होता है और एक एफिड के द्वारा फैलता है। इस रोग के कारण पौधे बौने रह जाते हैं और पत्तियां मुड़ जाती हैं। इससे बचाव के लिए रोगरोधी प्रजातियों के प्रयोग के साथ ही एफिड या माहू की रोकथाम के लिए मेटासिस्टॉक 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर फसल में छिड़काव करें। पौधे में अंकुरण के समय एक रोग लगता है जिसे जड़ विगलन या रूट रॉट कहते हैं। यह रोग स्केलेटोरोनिया कवक के कारण होता है जिसमें पौधों का जमीन से नीचे का भाग सड़ जाता है और पौधे मर जाते हैं। इसके बचाव के लिए फसल चक्र अपनाने के साथ ही बीज को थायराम अथवा सेरेसान से उपचारित कर बोना चाहिए। कॉलर रॉट नामक रोग एस्परजिलस निकर नामक कवक के द्वारा होता है जो बीजों के अंकुरण की अवस्था में लग जाता है और पौधे मुरझाकर सूख जाते हैं। कैप्टान नामक कवकनाशी की 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बोने से पहले उपचारित करने से इस बीज जनित और भूमि जनित रोग से बचा जा सकता है। मूंगफली में गेरोई रोग पक्षीनिया एरेचिटिस नामक कवक के कारण होता है जिसमें पत्तियों पर गहरे भूरे धब्बे बन जाते हैं। रोग रहित बीज के प्रयोग के साथ ही रोगी पौधों को निकालकर फसल से अलग कर देना चाहिए तथा जिनेप 2 मिलीलीटर या कार्बेवैक्सीन 1 लीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद बारी आती है रोगों के बाद अब हम चर्चा करेंगे कीटों के बारे में। लाल रोएदार सूंडी जिसका वैज्ञानिक नाम एमेक्स्ट्रा एल्बिड्रा डिग्रा है पत्तियों की ऊपरी सतह को खा जाती है जिससे पौधों की प्रकाश संश्लेषण अर्थात भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रभावित होती है और फसल को नुकसान हो जाता है। इसकी रोकथाम के लिए एंडोसल्फान 35 EC की 1.5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर फसल में समान रूप से छिड़काव करें। इसके साथ ही एफिड या माहू भी लगता है जिसे वैज्ञानिक भाषा में एफिस क्रेसिवोरा कहते हैं। इसके काले रंग के छोटे छोटे कीट रोजेट नामक विषाणु जनित रोग फैलाने के साथ ही पत्तियों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इसके बचाव के लिए मेटासिस्टॉक की 1.5 मिलीमीटर मात्रा का प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर 10 दिन के अंतर पर 2-3 छिड़काव करने चाहिए। दीमक मूंगफली का एक खतरनाक कीट है। यह भूमि के अंदर रहकर पौधों की जड़ों को खाता है। जड़ों को खाने वाला एक और कीड़ा है कुरमुला। इस कीट के गिडार भी पौधों की जड़ों को खा जाते हैं। इन कीट से बचाव के लिए खेतों में अंतिम जुताई के समय थाइमेट 10% दानेदार अथवा 0.5 किलोग्राम प्रति नाली की दर से खेत में मिला देनी चाहिए। प्रकाश प्रपंच यानी लाइट ट्रैप के द्वारा भी वयस्क कीटों को नष्ट कर इनसे पैदा होने वाले गिडारों की संख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। प्रकाश प्रपंच में बिजली के बल्ब या CFL की रोशनी में वयस्क कीट आकर्षित होकर टकराते हैं और नीचे रखे पानी या कीटनाशक के घोल में गिर जाते हैं। इसके अलावा बीमार कुरमुलों की गोबर की खाद में मिलाकर रखने से भी अन्य कुरमुले रोगग्रस्त हो जाते हैं और मर जाते हैं। इस बीमारी को दूधिया रोग कहते हैं। इस रोग से ग्रसित कुरमुलों की पहचान उनके पीछे के हिस्से को देखकर की जा सकती है जो स्वस्थ कुरमुलों में काले तथा बीमार कुरमुलों में सफेद रंग का होता है। किसान भाइयों, मूंगफली की फसल 130 से 135 दिन में पककर तैयार हो जाती है और इस समय इसकी खुदाई की जा सकती है। फसल पकने

0: पर पौधों की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और पौधे मुरझाकर गिरने लगते हैं। अच्छी तरह से पकी और तैयार फसल में फलियां चमकदार और कड़ी हो जाती है और दबाने पर आसानी से नहीं दब पाती। खुदाई के समय फलियों को पौधों से अलग कर उसमें लगी मिट्टी, घास आदि को साफ कर लेना चाहिए। भंडारण से पहले फलियों को अच्छी तरह सुखाना आवश्यक है, अन्यथा नमी रह जाने पर उनके अंदर का दाना सड़ जाता है। इसलिए फलियों को अच्छी धूप में कम से कम एक सप्ताह तक सुखाना चाहिए। यदि किसान भाई इसी फसल से अगली बार के लिए बीज रखना चाहते हैं तो उसे और भी भली प्रकार सुखाना चाहिए तथा बीज के प्रयोग हेतु फलियां सहित ही रखा जाता है।
1: पर्वतीय क्षेत्रों में मूंगफली की काश्त, इस विषय पर खेती की बातें कार्यक्रम में श्रोता भी सुन रहे थे डॉक्टर जी के बिष्ट से जानकारी। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। हमारी सायंकालीन सभा आरंभ होती है संध्या 5 बजे। आज रात 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। शाम 5:05 पर आप सुनते हैं कार्यक्रम शैल स्वर। आज इस कार्यक्रम में कलाकार होंगे भोला दत्त तिवारी और साथी। शाम 5:15 पर युवा साथी सुनेंगे युवा वाणी। इस कार्यक्रम में आज की बात का विषय रहेगा परिवार है आपकी नींव, सिने जगत से और आज का इतिहास भी श्रोता सुनेंगे। शाम 5:45 पर उत्तरायण कार्यक्रम प्रसारित होगा जिसमें आज चर्चा का विषय रहेगा अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। इसके अलावा एक और चर्चा सुनिएगा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। इसी कार्यक्रम में वार्ता प्रसारित होगी दुख सुखक साथी हमार परिवारजन। वार्ताकार होंगी श्रीमती रमा मेहता। शाम 6:41 पर श्रोता भक्ति संगीत का आनंद लेंगे। आज सुनिएगा हरिओम शरण और उदित नारायण के गाए भक्ति वंदन। संध्या 7 बजे ग्राम जगत कार्यक्रम सुनवाया जाएगा जिसमें आज की बातें होंगी पॉली हाउस में टमाटर का उत्पादन विषय पर और चर्चा सुनिएगा उर्वरकों का संतुलित प्रयोग विषय पर। शाम 6:50 पर गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार और शाम 7:30 पर कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार देहरादून केंद्र से रिले होंगे। फिल्म संगीत सुनिएगा शाम 7:40 पर। रात 9:15 पर श्रोता फरमाइश के फिल्मी नगमे सुनेंगे आपके अनुरोध पर रात 9:30 पर और रात 10:30 पर भी फिल्म संगीत सुनवाया जाएगा। सुगम संगीत सुनिएगा सबरस में रात 8 बजे और रात 10 बजे। ये था विवरण हमारे केंद्र से आज सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। हम आकाशवाणी अल्मोड़ा से बोल रहे हैं। दिन के 2:45 हुए हैं। इस समय श्रोता सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फनकार और आज के फनकार हैं अभिनेता शाइनी आहूजा। सुनो शाइनी आहूजा को श्रोताओं आज हम खास तौर पर याद कर रहे हैं। आज 15 मई उनका जन्मदिन है तो उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं उनके जन्मदिन की। अपने दौर के वो बेहद चर्चित अभिनेता रहे हैं। उनके पिता भारतीय सेना में अधिकारी थे इसलिए बचपन से ही घर में अनुशासन का माहौल था। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज से अपनी शिक्षा पूरी की। बाद में इंजीनियरिंग में उन्होंने एडमिशन भी लिया लेकिन पढ़ाई में उनका मन ज़्यादा नहीं लगा और एक्टिंग और कला की दुनिया में उन्हें ज़्यादा आनंद आता था। धीरे धीरे शाइनी का रुझान थिएटर की तरफ बढ़ा। उन्होंने एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया जहां उनकी मुलाकात मशहूर थिएटर ट्रेनर बैरी जॉन से हुई और यहीं से उन्होंने एक्टिंग की बारीकियां सीखी और अपने हुनर को निखारा। 15 मई 1975 को नई दिल्ली में उनका जन्म हुआ। थिएटर के बाद शाइनी ने विज्ञापनों में काम करना शुरू किया। उन्होंने कई बड़े ब्रांड्स के लिए एड्स किए जिनमें कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट और बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए कई

ब्रांड्स शामिल थे। इसी दौरान उनकी किस्मत ने करवट बदली और निर्देशक सुधीर मिश्रा अपनी फिल्म हजारों ख्वाहिशें ऐसी इस फिल्म के लिए नए चेहरे की तलाश कर रहे थे और इस रोल के लिए उन्होंने लगभग 200 से भी ज़्यादा लड़कों का ऑडिशन लिया था, लेकिन आखिर में शायनी आहूजा को ये सुनहरा अवसर मिला और 2005 में प्रदर्शित हुई ये फिल्म हजारों ख्वाहिशें ऐसी उनके लिए उनके करियर को एक नई ऊंचाई तक ले जाने वाली फिल्म साबित हुई और इस फिल्म में उनके अभिनय को खूब सराहा गया।

तो श्रोताओं, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी इस फिल्म में शाइनी आहूजा की खूब तारीफ हुई, दर्शकों ने उन्हें खूब सराहा और इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट मेल डेब्यू अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इसके बाद वो तेजी से सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगे और पहली फिल्म की कामयाबी के बाद शाइनी आहूजा ने कई हिट फिल्मों में काम किया और वो फिल्में थीं गैंगस्टर, वो लम्हे, लाइफ इन अ मेट्रो और भूल भुलैया जैसी कई चर्चित फिल्मों में वो नज़र आए और इन सभी फिल्मों में उनके एक्टिंग को दर्शकों ने खूब पसंद भी किया।

श्रोताओं, साल 2007 में शाइनी आहूजा अक्षय कुमार की ब्लॉकबस्टर फिल्म भूल भुलैया में दिखाई दिए और इस फिल्म में उन्होंने विद्या बालन के पति का रोल निभाया था। आज भी लोग उनके इस किरदार को भूल नहीं पाए हैं। शाइनी आहूजा लंबे समय से फिल्मी दुनिया से अब दूरी बनाए हुए हैं और अब वो फिलीपींस में रहते हैं और वहाँ अपना बिजनेस संभाल रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को एक नए सिरे से उन्होंने पहचान दिलाई है।

0: सदाबहार फिल्मी गीत कार्यक्रम अब हम श्रोताओं को सुनवाएंगे, और इससे पहले हम बता दें एक ही फनकार कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे, और आज के फनकार थे मशहूर अभिनेता शाइनी आहूजा। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं, अपराह्न के बजे हैं 3, और जैसा कि मैंने बताया इस समय श्रोता ज़रूर इंतज़ार करते हैं सदाबहार फिल्मी गीतों का।
1: Presenting the all-new Maruti Suzuki Victoris, the proud winner of Indian Car of the Year and a Bharat NCAP 5-star rated SUV. Experience first in segment features like underbody CNG technology.
2: Available in petrol, CNG and strong hybrid options. Built for every journey. And this month, enjoy exchange benefits up to 50,000 rupees. Maruti Suzuki Victoris. Drive the future. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom today. PNC apply.
3: डीजल क्यों चूज कर रहे हैं जब स्मार्टर ऑप्शन है यही। इंट्रोड्यूसिंग नई मारुति सुजुकी अरीना की विक्टोरियस SCNG सेगमेंट फर्स्ट अंडर बॉडी CNG टैंक के साथ 27.02 किलोमीटर पर किलोग्राम तक का माइलेज, मतलब ज्यादा सेविंग्स कम खर्चा। और अब विक्टोरियस खरीदने पर पाए एक्सचेंज बोनस अप टू 50,000, तो देर किस बात की। आज ही अपने नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना डीलरशिप विजिट कीजिए। मारुति सुजुकी SCNG, स्मार्टर फ्यूल स्मार्टर यू। टीएनसी अप्लाई।
0: सदाबहार फिल्मी गीत के सभी श्रोताओं को अंजू पांतिका स्नेहिल नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आप सभी का इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, रिश्तों का ताना बाना, जिंदगी को खुशहाल हमें है बनाना, सुख दुख संग संग साझा करना, ढूंढते हैं आपस में जुड़ने का हम अक्सर बहाना। प्यार सम्मान एहसास भावनाओं को है जगाना, तो परिवार हर व्यक्ति की शक्ति का बेहतर है पैमाना, जिससे जुड़कर हम सभी जिंदगी को, रिश्तों को, स्नेह प्यार को, भावनाओं को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। और परिवार का संबल हो तो जिंदगी की हर मंजिल पाना बेहद आसान हो जाता है। और श्रोताओं, आज हम सभी मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय

अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, तो सभी श्रोताओं को सपरिवार अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। अपनों का प्यार जब भी हमें मिलता है परिवार संग, तो जिंदगी कुछ यूं ही गुनगुना उठती है ना।

शुदों हमारी ज़िंदगी में हमारे अपनों के संग बिताए हर लम्हे की खूबसूरत यादों का कभी ना ख़त्म होने वाला एक अनमोल ख़जाना है हर एक के पास, जिसमें नगमे हैं, किस्से हैं, यादें हैं, बातें हैं और क्या कुछ नहीं है, यादों का एक खूबसूरत सैलाब है। बस जब भी हम गुनगुनाते हैं, याद करते हैं, तो यादें याद आती हैं।

तो श्रोताओ, हमारी जिंदगी में जो परिवार है वो सबसे छोटी इकाई है, या फिर इस समाज में भी हमारा परिवार सबसे छोटी इकाई है। ये सामाजिक संगठन की मौलिक इकाई है। परिवार के अभाव में मानव समाज के संचालन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, और हम सभी किसी न किसी परिवार के सदस्य हैं, और हमारा एक परिवार है, और उससे अलग होकर हम अपने अस्तित्व के बारे में सोच भी नहीं सकते। हमारी संस्कृति और सभ्यता कितने ही परिवर्तनों को स्वीकार करके अपने को परिष्कृत कर ले, लेकिन परिवार संस्था के अस्तित्व पर कोई भी आंच कभी नहीं आई है। वो बने और बनकर भले ही टूटे हों, लेकिन उनके अस्तित्व को कभी नकारा नहीं जा सकता। और इसके इतिहास की बात करें तो श्रोताओं, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने साल 1994 को अंतर्राष्ट्रीय परिवार वर्ष घोषित किया था, और समूचे संसार में लोगों के बीच परिवार की अहमियत बताने के लिए ही हर साल 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाने लगा। 1995 से ये सिलसिला जारी है, और आज के दिन परिवार की महत्ता को समझाने के लिए विविध कार्यक्रमों का आयोजन तो होता ही है, और साथ ही हम तो बस यही कहेंगे कि हस्ती खेलती मस्ती से भरी दुनिया प्यार की हो, और ये इस दुनिया में ख्वाब हो, हकीकत हो, जिंदगी को हम बहुत खुशी खुशी जिए, यही बस एक परिवार की खूबसूरत दास्तां हो।

जी हाँ श्रोताओं, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, ताऊ ताई, चाचा चाची, भाई बहन, बुआ फूफा, मामा मामी, कहाँ तक हैं। हर रिश्ता अपने आप में बेहद समृद्ध, बेहद खास होता है। जिंदगी में कैसे भी उतार चढ़ाव आए, सुख दुख आए, हर्ष उल्लास, त्योहारों उत्सव का कैसा भी मौका आए, परिवार संगठित हो, समृद्ध हो, साथ साथ हो, तो जिंदगी की हर मुश्किल आसान हो जाती है अगर हम यानी परिवार हमारा साथ साथ हो।

श्रोताओं, आज बदलते वक्त में संयुक्त परिवार की परंपरा भले ही टूटती जा रही है, एकल परिवार का चलन है, लेकिन हर परिवार को जिंदगी में ऐसे कभी न कभी पता ज़रूर चलता है, ऐसा वक्त ज़रूर आता है ज़िंदगी में जब एक दूसरे के साथ और परिवार की शक्ति को हम समझ पाते हैं। और ये जो एक आपस में परिवार का भावनात्मक, मानसिक, सामाजिक रूप से जो हमारा जुड़ाव रहता है, तो परिवार ही वो आधार होता है जो हमें हर सफर आशा करने में हमारी एक खूबसूरत कड़ी की तरह होती है। और जब हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, शिकवे शिकायत भी करते हैं, लेकिन अंततः हम सब एक परिवार से जुड़े होते हैं और उस परिवार की महत्ता को समझते हैं, तभी तो परिवार दिवस जैसा आयोजन मनाने की ज़रूरत पड़ रही है। क्योंकि परिवार की जो शक्ति है, उसकी जो समृद्धि है, उसे समझना हर एक के लिए कितना महत्वपूर्ण है, यही आज खास दिन का संदेश है। लेकिन हमारी ज़िंदगी में परिवार हर पल है, हर क्षण है, ज़िंदगी के हर मकाम में परिवार हमारे साथ है, तो फिर क्या बात है।

जी हाँ, एक दूसरे से प्यार करें, सम्मान करें, एहसास सामंजस्य भावनाओं की गहराई अपनापन लिए, रिश्तों की जो मिठास है वो हमेशा बनी रहे, एकदम खास रहे, हर पीढ़ी एक दूसरे का सम्मान करे, प्यार करे, एक दूसरे को समझे भावनात्मक रूप से और एक दूसरे के लिए हमेशा हर घड़ी कुछ ना कुछ करने को तैयार रहे, तो परिवार का जो एक खूबसूरत सपना है वो साकार होगा और सभी जिंदगी में मुस्कुराएंगे। क्योंकि जब हर कड़ी एक दूसरे की प्यार से जुड़ती है तो जिंदगी में ना जाने कितने खूबसूरत रंग भर जाते हैं। कभी महसूस करें तो आप खुद पाएंगे।

सदाबहार फिल्म गीत अभी श्रोता सुन रहे थे। एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न के 3:30 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा यहीं पर संपन्न होती है। सायंकालीन सभा में संध्या 5 बजे हम फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

एफएम बैंक 14.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन एयर पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 5 बजने वाले हैं। अब हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: Kentucky.
1: को जिस तरह निशाना बना गया है ये किसी भी रूप में स्वीकार करना नहीं है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम करे और विजन का परिचय दिखाया है यह बहुत ही सराहनीय। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और यूरोप की 6 दिन के दौरे पर पहले चरण में आज अबूधाबी पहुंचे। हवाई अड्डे पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने उनका स्वागत किया। एक रिपोर्ट।
3: बातचीत के नतीजे सामने आने शुरू हो गए हैं। दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
2: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। डॉक्टर जयशंकर ने आज मलेशिया के विदेश मंत्री मोहम्मद हसन से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्य साई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत माध्यम लड़ाकू विमान AMCA निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता हैं और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल में प्रवेश के लिए NEET UG 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में OMR मोड में आयोजित होने वाली NEET UG परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी CBT माध्यम से होगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज गुरुग्राम में भारतीय पेट्रोलियम प्रबंधन संस्थान में 11वें विचार मंथन सत्र की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने बताया कि सत्र में भारत के तेल और गैस क्षेत्र में अनुसंधान, विकास, नवाचार और स्टार्टअप्स पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया गया। पश्चिम बंगाल विधानसभा में रदेंद्र बसु निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। श्री बसु कूच विहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। उधर पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना DMK के वरिष्ठ विधायक ए अम्बालगन को 16वीं विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सिफारिश पर यह नियुक्ति की। भारत का माल और सेवा कुल निर्यात अप्रैल 2026 में $80 अरब 80 करोड़ रहने का अनुमान है। ये पिछले वर्ष अप्रैल की तुलना में 13.6% अधिक है। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के 26 मई तक आने की संभावना है। केरलम में मानसून के आगमन की सामान्य तिथि 1 जून है। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। शैलस्वर कार्यक्रम में आइए सुनते हैं भोला दत्त तिवारी और साथियों का गाया ये कुमाऊनी लोकगीत।

शैलेश्वर कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे भोला दत्त तिवारी और साथियों का गाया ही कुमाऊनी लोकगीत। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम विवरण से पहले आइए सुनते हैं एक सूचना। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद बागेश्वर से प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम विनायक थाना थल जनपद पिथौरागढ़ निवासी 84 वर्षीय रेवती देवी पत्नी स्वर्गीय हरगोविंद दिनांक 20 अप्रैल 2026 से ग्राम गोखरी थाना कांडा जनपद बागेश्वर से लापता है। उनका कद 5 फीट 11 शरीर चेहरे का रंग गेहुआ है। लापता होने से पहले वो लाल ब्लाउज नीली साड़ी गले में माला वो हवाई चप्पल पहनी थी। इनकी मानसिक स्थिति कमजोर बताई जा रही है। इनके संबंध में किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त हो तो थाना कांडा जनपद बागेश्वर पर संपर्क करने का कष्ट करें। सूचना समाप्त हुई। और अब लीजिए प्रस्तुत है जानकारी हमारे केंद्र से, हमारी आज की सायंकालीन सभा के शेष तथा कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। अब से कुछ देर बाद सायं 5:15 पर युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम ये वो वाणी। कार्यक्रम उत्तरायण का समय रहेगा सायं 5:45। भक्ति संगीत कार्यक्रम में सायं 6:41 पर कलाकार होंगे हरिओम शरण और उदित नारायण। ग्रामीण श्रोताओं कार्यक्रम होगा ग्राम जगत सायं 7:00। फिल्म संगीत हम आपको सुनवाएंगे सायं 7:40 पर। मिले जुले गीतों और गजलों का कार्यक्रम सबरस का समय रहेगा रात्रि 8:00। फिल्म संगीत एक बार फिर आप सुनेंगे इंद्रधनुष कार्यक्रम में रात्रि 9:15 पर। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर हम आपको सुनाएंगे आज रात्रि 9:30 पर। सुगम संगीत आप सुनेंगे आज रात्रि 10:00 और फिल्म संगीत एक बार फिर हम आपको सुनवाएंगे रात्रि 10:30 पर। हमारी पैसाकालीन सभा में कल प्रातः 6:05 पर आप सुनेंगे विचार बिंदु। तत्पश्चात भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। प्रातः 7:10 पर श्री रामचरित मानस गान और प्रातः 7:30 पर लोकमंजरी कार्यक्रम में कलाकार होंगे मनोज कुमार। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में कल प्रातः 8:30 पर आप सुनेंगे नरेश मल्होत्रा का राग गुणकली में ख्याल गायन। फरमाइशी फिल्मी गीतों कार्यक्रम की नजर का समय रहेगा कल प्रातः 9:05। सबरंग कार्यक्रम में कल प्रातः 10:05 पर कलाकार होंगे रोना लैला अनुराधा पौडवाल पंकज उदास और गुलाम अली। सैनिकों के लिए फिल्म संगीत प्रसारित किया जाएगा कल प्रातः 11:00। शास्त्रीय संगीत हम आपको सुनवाएंगे कल प्रातः 11:30 पर। मेरी पसंद फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे कल दोपहर 12:00। महिलाओं का कार्यक्रम होगा ऐपर कल दोपहर 12:30 पर, जिसमें कल हम आपको सुनवाएंगे मुंसियारी के पारंपरिक व्यंजन विषय पर श्रीमती इंदिरा गंधारिया से दीपा जोशी की क्षेत्र संकलित बातचीत। सुगम संगीत कार्यक्रम में कल दोपहर 1:15 पर कलाकार होंगे गुलाम अली अनवर अनुराधा पौडवाल शुभा मुदगल और सलमा आगा। रमेश उपाध्याय का लिखा नाटक अपने अपने दायरे आप सुनेंगे कल दोपहर 1:30 पर। उत्तराखंड के लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे कल दोपहर 2:00। किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम खेती की बातें कल दोपहर 2:30 पर। एक ही फनकार फिल्म संगीत का कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे कल दोपहर 2:45 पर और सदाबहार फिल्मी गीत आप सुनेंगे कल अपराह्न 3:00। हमारी सायंकालीन सभा में कल सायं 5:05 पर शैलेश्वर कार्यक्रम में कलाकार होंगे जगदीश फुलारी। युवा साथियों कार्यक्रम होगा युवावाणी कल सायं 5:15। कार्यक्रम उत्तरायण का समय रहेगा कल सायं 5:45। भक्ति संगीत कार्यक्रम में कल सायं 6:41 पर कलाकार होंगे अनूप जलोटा और अनुराधा पौडवाल।

किसान भाई सुनिंग का कार्यक्रम किसान वाणी कल सायं 7 बजे फिल्म संगीत हम आपको सुनवाएंगे कल सायं 7:40 पर। मिले जुले गीतों और गजलों का कार्यक्रम सबरस का समय रहेगा कल रात्रि 8 बजे। फिल्म संगीत एक बार फिर हम आपको सुनवाएंगे इंद्रधनुष कार्यक्रम में कल रात्रि 9:15 पर। राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम के अंतर्गत चित्र भारती कल रात्रि 9:30 पर हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। दिल्ली केंद्र से ही कल रात्रि 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रिले किया जाएगा। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से हमारी आज की सायंकालीन सभा के शेष तथा कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 5:15 हुए हैं। अब युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवा वाणी।

0: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का हमारे कार्यक्रम युववाणी में। और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो मित्र हिमानी बोरा। दोस्तों, आज यानी 15 मई को हम सब मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। दोस्तों, परिवार केवल कुछ रिश्तों का नाम नहीं, बल्कि ये हमारी जिंदगी की सबसे मजबूत ताकत और सबसे सुरक्षित सहारा होता है। इंसान जीवन में कितना ही आगे क्यों न बढ़ जाए, लेकिन उसकी सोच, संस्कार और उसका व्यक्तित्व कहीं ना कहीं उसके परिवार से बनता है। आज के आधुनिक दौर में जहां लोग अपने सपनों, करियर की दौड़ में व्यस्त हैं, वहीं परिवार के साथ बिताया जाने वाला समय धीरे धीरे कम होता नजर आता है। सोशल मीडिया ने दुनिया को तो करीब ला दिया, लेकिन अपने ही रिश्तों में दूरियां बढ़ाई हैं। दोस्तों, आज युवा आत्मनिर्भर बनना चाहता है, अपने फैसले खुद लेना चाहता है, लेकिन इसके साथ ही कई बार वो परिवार से भावनात्मक रूप से दूर होता नजर आता है। तो क्या आज भी परिवार हमारी सबसे बड़ी ताकत है, और युवाओं के इसके प्रति क्या विचार हैं? आइए जानते हैं हमारे युवा साथी रोहित और गुंजन के साथ हुई ये भेंट वार्ता।
1: तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है रोहित और गुंजन, आप दोनों का ही हमारे कार्यक्रम युववाणी में। तो रोहित, हम शुरुआत करते हैं आपसे, लेकिन उससे पहले आप हमें अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए।
2: हेलो हिमानी, मेरा नाम रोहित है और मैं अल्मोड़ा में रहता हूँ।
1: जी रोहित, तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में परिवार आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है।
2: जी, मेरे अनुसार परिवार इंसान की सबसे बड़ी ताकत होता है। आज की तेज जिंदगी में लोग काम और करियर में इतना बिजी हो गए हैं कि परिवार को समय देना कम कर रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि कठिन समय में सबसे पहले परिवार ही साथ खड़ा होता है। परिवार हमें प्यार, सुरक्षा और आत्मविश्वास देता है। जब इंसान मानसिक तनाव में होता है, तब परिवार की बातें और उनका साथ उसे बहुत सहारा देती है। पैसे और सफलता बाद में आते हैं, लेकिन परिवार की जगह कोई नहीं ले सकता। मुझे लगता है कि परिवार के बिना जीवन अधूरा है। परिवार ही हमें अच्छे संस्कार और सही रास्ता दिखाता है, इसीलिए हर युवा को अपने परिवार के साथ जुड़ा रहना चाहिए।
1: जी रोहित, आपने बिल्कुल सही बात कही है कि परिवार जो है वो हमें प्यार, सुरक्षा और आत्मविश्वास देता है और हर मुश्किल घड़ी में हमारे साथ खड़ा रहता है। रोहित, अब ये बताइए कि क्या मोबाइल और सोशल मीडिया जो है वो पारिवारिक रिश्तों को कमज़ोर कर रहे हैं, आपको क्या लगता है?
2: हाँ, काफ़ी हद तक ऐसा होता है। आज लोग घर में साथ बैठकर भी मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। पहले परिवार के लोग आपस में बात करते थे, साथ में खाना खाते थे और साथ में समय बिताते थे, लेकिन अब बातचीत कम होती जा रही है। सोशल मीडिया ने लोगों को पास भी किया है और

0: दूर भी किया है। खासकर युवाओं में मोबाइल की लत रिश्तों में दूरी पैदा कर रही है। हालांकि तकनीक गलत नहीं है, लेकिन उसका ज़्यादा उपयोग नुकसान पहुंचा सकता है। अगर हम परिवार को समय दें, आपसी बातचीत बढ़ाए और रिश्तों को मजबूत करें, तो परिवार के साथ बिताया गया समय किसी भी मोबाइल स्क्रीन से ज़्यादा कीमती होता है।
1: जी रोहित, आपने बहुत ही अच्छी बात हमारे साथ कही है कि आज लोग साथ में तो बैठे होते हैं, लेकिन हर किसी के हाथ में उनका अपना अपना मोबाइल फ़ोन होता है। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हम इस दूरी को कम करें और साथ में बैठकर बातें करें और अपने परिवार के साथ समय बिताएं। लेकिन रोहित, आप साथ ही हमें ये भी बताइए कि आज का जो युवा है वो परिवार से दूर होता नज़र आता है। अगर सोशल मीडिया को हम एक फैक्टर माने, इसके अलावा भी देखा गया है कि आजकल युवा जो है वो अपने परिवार से बहुत कम बातचीत रखते हैं और बहुत कम उन्हें चीज़ें बताते हैं।
0: आज का युवा पहले की तुलना में परिवार से थोड़ा दूर होता दिखाई देता है। इसका सबसे बड़ा कारण बदलती जीवन शैली और बढ़ती व्यस्तता है। पढ़ाई, नौकरी, करियर और सोशल मीडिया में युवा इतने उलझ गए हैं कि परिवार के साथ समय कम बिताते हैं। कई बार युवा अपनी भावनाएं मोबाइल और इंटरनेट पर ही व्यक्त करते हैं, लेकिन घर वालों से खुलकर बात नहीं कर पाते। आधुनिक सोच और स्वतंत्र जीवन की चाह भी दूरी बढ़ा रही है। कुछ युवाओं को लगता है कि परिवार उनकी बातें समझ नहीं पाएगा, इसीलिए वे अपने मन की बातें छिपाने लगते हैं। हालांकि आज भी हर युवा अंदर से अपने परिवार का महत्व समझता है, क्योंकि मुश्किल समय में सबसे पहले परिवार ही साथ खड़ा होता है। इसीलिए ज़रूरी है कि युवा और परिवार दोनों एक दूसरे को समय दे और अपनी बातें खुलकर व्यक्त करें।
1: जी रोहित, आपने बिल्कुल सही बात कही है कि आज का जो युवा है वो ज़्यादा स्वतंत्रता की चाह रखता है और अपनी चीज़ों को प्राइवेट रखना चाहता है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग अपनी मन की बातें इंटरनेट पर साझा करते हैं, अनजान लोगों से बातें करके अपनी दिल की बातें बताते हैं, लेकिन परिवार के साथ ऐसा करने में वो झिझकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे परिवार वाले हैं वो भी हमें समझें, और हमारे लिए तो ये ज़रूरी है ही कि हम उन्हें अपनी छोटी छोटी चीज़ों में शामिल करें और उन्हें अपनी बात बताएं। तो दोस्तों, हमारे बीच में हमारे साथ हमारी एक और साथी गुंजन भी हैं। तो गुंजन, अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए।
2: हाय दोस्तों, मेरा नाम गुंजन है और मैं यहीं अल्मोड़ा की रहने वाली हूँ।
1: जी गुंजन, गुंजन आप बताइए कि आपके अनुसार जो है वो परिवार किसी इंसान की नींव कैसे हो सकता है?
2: देखिए, मेरे अनुसार तो परिवार हमारी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा मजबूत नींव है, क्योंकि जिस तरह किसी बिल्डिंग होती है उसकी मजबूती जो होती है उसकी नींव पर निर्भर करती है, वैसे ही इंसान का भविष्य भी उसके जो उसकी फैमिली है उस पर निर्भर करता है। जैसे कि परिवार जो होता है हमें प्यार देता है, संस्कार, सम्मान और जीवन जीने की सीख सिखाता है। बचपन से लेकर बड़े होने तक परिवार ही तो हमारा हर कदम पर साथ देता है, और जब हम असफल होते हैं तब परिवार हमें हिम्मत देता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी। देखिए, परिवार जो है हमें सही और गलत की पहचान तो कराता है, इसलिए चाहे इंसान कितना भी सफल क्यों ना हो जाए, उसे अपने परिवार से हमेशा जुड़कर रहना चाहिए, और मजबूत परिवार ही जो होता है वो मजबूत समाज को बनाता है।
1: जी गुंजन, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि इंसान को हमेशा अपने परिवार से जुड़ा रहना चाहिए, और एक मजबूत परिवार ही मजबूत समाज का निर्माण करता है। गुंजन, आप एक बात ये भी बताइए कि आज के युवाओं में परिवार के साथ समय बिताना क्यों ज़रूरी है?
2: देखिए, आज के समय में युवाओं की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बिजी हो गई है, उन्हें पढ़ाई, नौकरी, सोशल मीडिया हर चीज़ में इन्वॉल्व रहना पड़ता है, तो वैसे ही वो अपने परिवार के साथ बहुत कम टाइम स्पेंड कर पाते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से परिवार के साथ टाइम बिताना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमारे रिश्ते जो होते हैं मजबूत होते हैं और हमें जो है मेंटल पीस मिलती है। और जब हम अपने पेरेंट्स, हम अपने माता पिता या परिवार के किसी भी लोगों से बात हात करते हैं, तो हमें उनके अनुभव से एक सही जो है गाइडेंस मिलती है, और साथ ही परिवार के साथ रहने से हमें थोड़ा अकेलापन भी कम महसूस होगा, हमें तनाव भी कम होगा। तो मुझे लगता है कि चाहे इंसान कितना भी बिजी हो जाए, उसे अपने परिवार के लिए ना समय थोड़ा निकालना ही चाहिए, और यही रिश्ते जो है हमारा साथ जो होता है वो हमेशा लाइफ टाइम देते हैं और हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं।
1: जी गुंजन, आपने बहुत ही अच्छी बात कही है। गुंजन, आप ये बताइए कि आजकल जो बच्चे हैं वो अपनी बातें परिवार को खुलकर नहीं बताते और किसी दूसरी जगहों पर जाकर वो अपनी बात बताते हैं, इसको लेकर आपके क्या विचार हैं?
2: देखिए, मेरे अकॉर्डिंग तो बच्चे और परिवार जो हैं उनके बीच की जो दूरी है वो अचानक नहीं आती है, वो बहुत

0: धीरे धीरे टाइम के साथ आती है, क्योंकि कई बार बच्चे डरते हैं कि अगर वे अपनी गलतियाँ या अपनी जो समस्याएं वो अपने पेरेंट्स को बताएंगे तो उन्हें डांट पड़ेगी या उनको ही गलत समझा जाएगा, तो इसी डर के कारण वे अपने मन की बातें जो हैं वो छिपाने लगते हैं। दूसरी बात यह है कि आजकल पेरेंट्स भी काम और जिम्मेदारियों में इतने ज़्यादा बिजी हो गए कि अपने बच्चों के साथ वो बैठकर खुलकर बात नहीं कर पा रहे हैं, तो इसी वजह से ये कम्युनिकेशन गैप पैदा हो चुका है। तो मुझे लगता है कि अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को दोस्त की तरह समझे तो बच्चे अपनी बातें बिना डरे पेरेंट्स को बताएंगे और उनके बीच का जो कम्युनिकेशन गैप है वो फिल हो सकता है।
1: जी गुंजन, आपने बहुत ही अच्छी बात हमारे श्रोताओं को बताई है कि पेरेंट्स जो हैं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो बेहद ज़रूरी है कि माँ बाप अपने बच्चों को समझें और उनकी बातों पर ध्यान दें। तो बहुत बहुत धन्यवाद है रोहित और गुंजन, आप दोनों का ही।
2: तो दोस्तों, ये तो थी गीतवायता रोहित और गुंजन के साथ।
3: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
4: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value. With its bold design and spacious comfort, it's built to impress every single day.
3: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.70 lakh.
4: Yes, Rs. 6.70 lakh. Valid till 31st May. Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
3: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
5: Nexa.
4: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
3: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just Rs. 9.72 lakhs.
4: Yes, Rs. 9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just Rs. 899 per month.
3: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
4: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
5: Nexa.

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
0: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: Most TVs keep you tied to the city, but you deserve the freedom to explore. Introducing the Maruti Suzuki e-Vitara. With its massive 61 kilowatt-hour battery and a range of 543 kilometers, the horizon is finally yours. Own it for Rs. 10.99 lakh, with a battery EMI of just Rs. 3.99 per kilometer. Backed by India's largest charging network, India Goes Electric.
3: चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आज के अंक सिने जगत से की ओर और देते हैं जानकारी हिंदी सिनेमा की उस अदाकारा की जिनकी मुस्कान, अभिनय और नृत्य ने करोड़ों दिलों को अपना बनाया। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, हम बात कर रहे हैं माधुरी दीक्षित की। दोस्तों, उनका जन्म आज यानी 15 मई 1967 को मुंबई में हुआ था। उन्होंने अपनी फिल्म

0: Most TVs keep you tied to the city, but you deserve the freedom to explore. Introducing the Maruti Suzuki e-Vitara. With its massive 61 kilowatt hour battery and a range of 543 kilometer, the horizon is finally yours. Own it for rupees 10.99 lakh with a battery EMI of just rupees 3.99 per kilometer. Backed by India's largest charging network, India Goes Electric.
1: चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आज के अंक सिने जगत से की ओर और देते हैं जानकारी हिंदी सिनेमा की उस अदाकारा की जिनकी मुस्कान, अभिनय और नृत्य ने करोड़ों दिलों को अपना बनाया। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, हम बात कर रहे हैं माधुरी दीक्षित की। दोस्तों, उनका जन्म आज यानी 15 मई 1967 को मुंबई में हुआ था। उन्होंने अपनी फिल्म

चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम के अंतिम चरण की ओर, जिसमें हम रोज पूछते हैं आपसे एक प्रश्न और देते हैं उत्तर बीते दिन पूछे गए प्रश्न का। दोस्तों, हमारा कल का प्रश्न था, फेसबुक के मुख्य संस्थापक और सीईओ कौन है? जिसका सही उत्तर है मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक के संस्थापक और सीईओ हैं। जिसका सही उत्तर हमें लिख भेजा है ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन और शाहनवाज अब्बासी। काटा रोड पश्चिम महाराष्ट्र से मास्टर विट्ठल सुरोशे, सुषमा सुरोशे, मायरा सुरोशे। रामपुत की कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से विनय शंकर पांडे, नयन पांडे, शोमांशु पांडे। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और जगदीश जौहरी। ग्राम नागर कोहरा जिला छत्तीसगढ़ से बबलू शाहू, जामुन देवी शाहू। एसएम जावेद कुमला झारखंड से। चलिए दोस्तों, कार्यक्रम में नोट कीजिए हमारा आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? अगर जानते हैं आप इस प्रश्न का सही उत्तर तो लिख भेजिए हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9411001122 पर। हमें रहता है इंतज़ार आपके सही उत्तर का। चलिए दोस्तों, कार्यक्रम युवाणी में अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। कल मिलते हैं पुनः एक नए अंक के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति अपनी रेडियो मित्र हिमानी को। नमस्कार।

कार्यक्रम उत्तरायण सुन रही सभी श्रोताओं के मनीषा मेहरात नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत छु श्रोताओं आप लोगों कार्यक्रम उत्तरायण में। जब मैं बातचीत कर अगर आप लोगों को मनोरंजन न करी जान तो श्रोताओं कार्यक्रम की शुरुआत कर लेनो थोड़ा बातचीत अगर। श्रोताओं मन की जीवन में परिवारक बहुत ठूल महत्व छू। परिवार वो जाग छू जहाँ हमको सबो हबेर पहली प्यार अपनेपन और भल संस्कार मिलने। जीवन में चाहे कदुक ले परेशानी है जो परिवार हमेशा हमार दगड़ ठाड़ रो। ईजा बजू प्यार भय बहनियों दगड़ और ठुल बुढ़ बुजुर्गों का आशीर्वाद हमार जीवन के खुशियुल भर दी। परिवारक बिना जीवन आदू गए जस लागू किले की सच्चे सुख और अपनेपन परिवार में ही मिलो। श्रोताओ आजक बखत में मन की अपन पढ़ाई अपन नौकरी और अपन कामों में ई दुख व्यस्त है गिन कि परिवार दगे बखत बितून कम करी हलो। फोन और इंटरनेट के कारण ने मन की एक दौर है बीर दूर है जानी। इस बखत में परिवारक महत्व के समझन बहुत जरूरी है को। परिवार में प्रेम एकता और सम्मान बढ़ी रो यही उद्देश्य हर साल 15 मई हूँ अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाई जा। ये दिवस हमको अपन परिवार तक जुड़ाव बढ़ून और रिश्तों के मजबूत बनूनक प्रेरणा दियो। श्रोताओं संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 1993 में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनूनक घोषणा करी गई। ये एक बात हर साल 15 मई हूँ यह दिवस पूर्व विश्व में मनाई जा। ये दिवस के मनूनक मुख्य उद्देश्य मनखियों के परिवारक महत्व प्रति जागरूकरण और समाज में पारिवारिक मूल्यों के मजबूत बरूं छो। परिवार समाज नक सबो हबेर नान लेकिन सबो हबेर महत्वपूर्ण इकाई मानी जा। अगर परिवार मजबूत छो तो समाज और राष्ट्र ले मजबूत बढ़ोल। श्रोताओ परिवार मनखी जीवनक पहल पाठशाला छो। नंतिन सबो हबेर पहली अपन परिवार बटी बुलान और चलन व्यवहार करण और दोहरूक सम्मान करण सीखूं। ईजा बजू नांतिनु का भल संस्कार दिनी उनको सही बाट दिखूनी। परिवार में प्रेम अनुशासन और सहयोगक भावना नांतिनु व्यक्तित्व के भल बढ़ूं। एक भल परिवार नांतिनु उज्ज्वल भविष्य नींव रखूं। श्रोताओं आजक आधुनिक दौर में तकनीकी मनखियों जीवन बहुत आसान बढ़े हलो। मोबाइल फोन इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यमल मन की दुनी भरक जानकारी के थोड़ बखत में ही प्राप्त कर लेनी। लेकिन तकनीकी बढ़ते उपयोगल पारिवारिक रिश्तों पर ले प्रभाव पड़नो। आज परिवारक सदस्य एक घर में दगड़ रूणक बाद ले अपन अपन फोनों में व्यस्त रूनी। पहली लोग खाल बखत में परिवार दगे भयभीर बात करछी हंसी मजाक करछी और एक दोहरू अपन सुख दुख बाँटछी। लेकिन अब ज़्यादातर बखत मोबाइल और सोशल मीडिया में बितूनी। ये कारण परिवारक सदस्यों बीच बातचीत और आपसी जुड़ाव कम होते जानो। कई बार मनखी अपन परिवार के बखत निधि पान जैल रिश्तों में दूरी बढ़न थे जे। ये के लीजिए आज बखत में जरूरी छू कि हम तकनीकी उपयोग करूँ लेकिन उद्गो करूँ जदू हमार लीजिए सही छू और हम अपन परिवार दगे बखत बितबेर रिश्तों में प्रेम अपनपन और विश्वास बढ़ाई रखूँ। श्रोता परिवार केवल हमको आर्थिक सहायता नहीं दें बल्कि मानसिक और भावनात्मक सहार ल दें। जब मन की परेशान हूँ तब परिवार को हिम्मत दें। परिवार दगर रूनल जीवन में आत्मविश्वास और सुरक्षा भावना ल बनी रहे। परिवार में प्रेम और एकता होनल घर में सुख शांति बढ़ी रहे। एक भल परिवार एक भल समाज और उज्जवल राष्ट्र निर्माण कर सकूं। श्रोताओ अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हमको परिवारक महत्व के समझूनक और रिश्तों के मजबूत बढ़ूनक संदेश दियो। परिवार हमार जीवनक सबो हबे ठूल ताकत छू। परिवार में प्रेम सहयोग और सम्मान हुनल जीवन सुख शांति बीतू।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ये वो वाणी। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 5:45 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम उत्तरायण।

एक लीजिए, हमको अपन परिवार प्रति अपन कर्तव्य के समझन चैन और हमेशा अपन रिश्तों में प्यार और विश्वास बढ़ाई रखन चैन। यही एक सुखी जीवन और भल समाजक पहचान छू।

0: उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: श्रोताओ, हगिलापुर लोगों का सुनो, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवसक अवसर पर यो वार्ता जैक विषय छु दुख सुख साथी हमर परिवार जन, और वार्ता का अर्चिन श्रीमती रमा मेहता।
2: अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हर वर्ष 15 मई हो मनाई जा। यो दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा परिवारों को महत्व दिन लीजी और उनर सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक और नैतिक योगदान के सम्मानित करने लीजी घोषित की जरो। पहली बार यह दिवस 1994 में मनाई गो, जो कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय परिवार वर्ष ले छी। परिवार हमर समाजक एक मूलभूत इकाई छू। बच्चक प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और भावनात्मक विकास परिवार में ही हूँ। यह मूल्य, परंपराएं, संस्कार और सामाजिक व्यवहारक नींव रखूं। दुनिया में हर देशम हर जग परिवार हूं, जब मैं माँ बाप, पति पत्नी और बच्चे और ले कई रिश्ते जुड़े हुई। परिवार हर एक जीवनक महत्वपूर्ण हिस्सा हूं। परिवार अलग अलग विचार बसंदक लोगों के एकजुट करूं, लोगों के आपसी मतभेद के भूलबेर प्रेम भावल ऋण लीजी प्रेरित करूँ और भावनात्मक तौरल परिवार एक दूसरक सहारा दिन और अकेलापन के दूर करनक काम परिवार करूं। यो हमको सुरक्षा के एहसास दिलूं, जेल हम अपन दुख दर्द बांट सकनूं और अपन खुशियां और जीतक जश्न मना सकनूं। इमें एक दूसरक सम्मान करन और अपन कामुक जिम्मेदारी लिन ले शामिल छू। हमर संस्कृति में ले पारिवारिक एकता पर हमेशा बटी बल दी जा। एक मजबूत परिवार व्यक्ति और समाज द्विनुक विकासम महत्वपूर्ण भूमिका निभू। परिवारक सदस्य एक दूसरक जरूरत के पूर्ण करन में मदद करनी। आजक आधुनिक युग में व्यस्त जीवन, तकनीकी और बदलती हुई जीवन शैली कारण परिवारों में दूरी बढ़नी, इसीलिए हर इंसान के अपूर परिवार दगे समय बितून चें, आपसी प्रेम और सम्मान बनाई रखन चें और रिश्तों के मजबूत बढ़ून चें। तबे तो सारे संसार लोगों बीच में परिवारक अहमियत बतूनक लीजी हर साल 15 मई हूँ अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाई जा। 1995 बटी यह सिलसिला जारी छू। आज परिवारक महत्ता समझूनक लीजी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित की जानी। यह दिनक लीजी जो प्रतीक चिन्ह चुनी जरो उमें हरी रंगक एक गोल घेरक बीचम एक दिल और एक घर अंकित की जरो। यह स्पष्ट हूँ कि कोई ले समाजक केंद्र बिंदु परिवार ही हूँ। परिवार ही हर उम्रक लोगों के सुकून पहुँचूँ। परिवार केवल कुछ

0: लोगों एक साथ रुनल निबड़न इमें रिश्तों एक मजबूत डोर हैं, सहयोगक एक अटूट बंधन हूँ, एक दूसरक सुरक्षा जिम्मेदारी हैं, हमर फर्ज हूँ कि हम रिश्तक गरिमा के बनाए रखूँ। आज 15 मई 2026 हूँ, पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनूनो। यह सालक एक विषय परिवार असमानताएं और बाल कल्याण छू, जो नांतिनाक विकास और पारिवारिक स्थिरता पर केंद्रित छू। यह साल सरकारों और संगठनों द्वारा परिवार असमानताएं और बाल कल्याण विषय पर चर्चा और नीति केंद्रित कार्यशालाएं आयोजित की जानी। संयुक्त राष्ट्र और विभिन्न संस्थाओं द्वारा परिवार उन्मुख नीतियों और सतत विकास में उनर भूमिका में प्रकाश डालने वाले जागरूकता अभियान चलाई जानो। संसार भर में आज पारिवारिक मेलजोल सेमिनार और परिवार प्रेम और शांति पाठशाला जैस कार्यक्रमों आयोजन करी जानो। ये अलावा परिवारों सामुदायिक सेवाओं में भागीदारी, परिवारक दगे गुणवत्तापूर्ण समय बितूनक लीजी प्रोत्साहन, बच्चों के अधिकारों, लैंगिक समानता और सामाजिक समावेशन जैस विषयों पर शिक्षाप्रद सत्र संवादों के आयोजन पर यह साल बहुत जोर दी जानो। यह आयोजनक प्राथमिक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समुदायों के बीच में पारिवारिक संबंधों के महत्व के दिखोण छू, किलकि परिवार सामाजिक निर्माणक मूलभूत इकाई हूँ और यह एक व्यक्ति जीवन में बहुत महत्व धरूँ। संयुक्त राष्ट्रक मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस आम जनमानसक बीच में परिवारों से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता के बढ़ावा दियोल, दगड़ में यह संबंधों के प्रभावित करने वाले सामाजिक आर्थिक और जनसांख्यिकीय कारकों के बारे में समझ विकसित करना अवसर ले प्रदान करूँ। यह दिन अपन परिवार दगे अनमोल रिश्तों के संजोनक दिन छू। भारतीय संस्कृति में परिवार के विशेष महत्व दी जा। पहली बटी या संयुक्त परिवार व्यवस्था प्रचलित छी, जमें दादा दादी माता पिता चाचा चाची और नानतिन दगड़े रुचि। यह व्यवस्था में प्रेम सहयोग सम्मान और सामूहिक जिम्मेदारी की भावना हुची। समयक दगड़ आधुनिक जीवन शैली के कारण एकल परिवारक चलन बढ़ो, लेकिन परिवारक महत्व आज ले बढ़ी हुई छू। हर देशम परिवारक अपन अलग अलग परंपराएं और संरचनाएं छिन, लेकिन उनर सबूक मूल उद्देश्य इक्के छू कि सदस्यों के सुरक्षा विकास खुशहाली, परिवार हमको जिंदगी जीन सकूँ और हमको सामाजिक जिम्मेदार नागरिक बढ़ून में मदद करूँ। आधुनिक युग में परिवारों की संरचना जीवन शैली और संबंधों में कई बदलाव अधीन विज्ञान तकनीकी शहरीकरण और व्यस्त जीवन के कारण परिवारों के अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़नो। ये चुनौतियाँ पारिवारिक संबंधों आपसी समझ और सामाजिक जीवन के लिए प्रभावित करनी। आजकल माँ बाप और परिवारक सदस्य अपन काम पढ़ाई और अन्य जिम्मेदारियों में इदुक व्यस्त है गिन कि परिवारक दगे समय बितून कठिन है गो। जैल आपसी बातचीत कम होन लग रहे और भावनात्मक दूरी ले बढ़न लग रही। एकल परिवार में रूनी वाल नंतिना के बुजुर्गों का अनुभव और मार्गदर्शन कम मिलनो। जैल परिवार में सहयोगक भावना ले कम होने। मोबाइल फोन सोशल मीडिया और इंटरनेटल लोगों के डिजिटल रूपल जोड़ रो, लेकिन परिवारक सदस्यों का आपसी संवाद कम है गो। महंगाई नौकरी अस्थिरता बढ़ती हुई खर्चों कारण परिवार में आर्थिक दबाव बढ़ गो, जैल तनाव और पारिवारिक विवादक स्थिति ले उत्पन्न है जा। यह सब चुनौतियों का सामना करने के लिए परिवारक सदस्यों के एक दूसर दगे समय बितून चें, खुलकर संवाद करन चें, बुजुर्गों के सम्मान करन चें, प्रेम और सहयोगक भावना बनाई रखन चें। अमर परिवार में प्रेम विश्वास और समझ बढ़िया रोली। अगर परिवार में प्रेम विश्वास और समझ बढ़िया रोली तो हर चुनौती का समाधान संभव छू। तो आज 15 मई हूँ, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवसक अवसर पर हम सब परिवारक महत्व के समझते हुए विश्व सब परिवारों का सम्मान दिनों और सबके यो भागदौड़ भरी जिंदगी में अपन परिवारक दगे गुणवत्तापूर्ण समय बितूनक याद दिलूनु। आजोक दिन हमको परिवारक महत्व एकता मूल्यों और सामाजिक संरचना में वीक भूमिका के स्मरण करनक अवसर दियूँ।
1: श्रोताओं अल्लाह पुलो बोल सुनो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवसक अवसर

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
1: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओ, हमार देश एक यस देश छु जा लाखों मन की छोट छोट व्यवसाय कर बेर अपन जीवन चलुनी। कोई सड़क किनार फल बेचनी तो कोई साग सब्जी बेचनी, और कोई कपड़क दुकान खुलवे सामान बेचनी तो कोई घरेलू सामान बेच बेर अपन परिवारक पालन पोषण करनी। यह लोग रत्ती बटी ब्यावकर तक मेहनत कर बेर अपर रोजी रोटी कमोनी। हमार दैनिक जीवन में यह छोट व्यापारियों बहुत ठुल योगदान छू। लेकिन कोरोना महामारी बखत में जब पूरे देश में लॉकडाउन लग रो छी, तब इनको सब हबे ज़्यादा परेशानियों का सामना करन पड़ो। इनर काम बंद है पड़ो, आमदनी रुक पड़ी और परिवारक पालन पोषण करन जरा मुश्किल है पड़ो। कई मनखियों की सामर्थ्य तो खान पीन तक समस्या ठाड़ है पड़ी। यस कठिन बखत में भारत सरकारल छोट व्यापारियों के लिए उनर मदद करने के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत करी। यह योजना का पूर्ण नाम प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर

निधि योजना छू। ये योजना जून 2020 में शुरू करेगी। यह एक मुख्य उद्देश्य छोटे व्यापारियों के आर्थिक सहायता दिबेर उनको आत्मनिर्भर बढ़ूं छू। श्रोताओं, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना विशेष रूपल रेहड़ी पट्टी लगुनी वाल और सड़कों किनारों पर छोट व्यापार करने वाल मनखियों के लिए शुरू करी जा रहा है। ये योजना के अंतर्गत छोट व्यापारियों के बिना कोई गारंटी बैंक बटे ऋण प्रदान करी जा, ताकि वो अपन काम के फिर से शुरू कर सको। शुरुआत में इमें तो जो लाभार्थी छिन उनको 10,000 रुपये तक ऋण दी जा। अगर वो अपन ऋण के बखत पर बैंक में वापस कर देनी तो हगिल बार उनको 20,000 रुपये और वैक बाद फिर 50,000 रुपये तक ऋण प्रदान करी जा। ये योजना में सरकार ब्याज पर सब्सिडी ले दें, जेल व्यापारियों के कम बोझ उठून पड़ो। श्रोताओं, ये योजना सबु हवेर भल बात यो छू कि गरीब और जो छोट व्यापारी छिन उनको साहूकारों के चक्कर नी लगून पड़न। पहली कई लोग मजबूरी में उच्च ब्याज पर पैसे ले लीजिए और बाद में कर्ज बोझ तलीबे दब जा छी, लेकिन अब सरकारक मददल उनको आसानी बैंक बटे ऋण मिल जा। येल उनर व्यापार फिर से चलन भेजा और उनर आर्थिक स्थिति में ले सुधार है जा। श्रोताओ, आजक बखत में तकनीकी बहुत तेजी हागिल बढ़ने मन की नकद डबल हिणक जाती मोबाइल और ऑनलाइन भुगतानक ज़्यादा उपयोग करनी। सरकारल प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में डिजिटल लेन देन के लिए बढ़ावा दी रो। जो व्यापारी डिजिटल भुगतान के अपनूनी उनको कैश बैक जस सुविधा ले दी जा रहे। येल छोट व्यापारी ले डिजिटल इंडिया अभियान दग जुड़नी और अब सड़क किनार चाह बेचने वाले मनखी ले अपन मोबाइल बटी भुगतान आरामल कर सकनी। श्रोताओं, ये योजना केवल आर्थिक सहायता दिन तक सीमित नहीं बल्कि यह छोट व्यापारियों के आत्मविश्वास का लबड़ है। पहली कई मनखी बैंक जान बटी डर छी, उनको लाग छी कि बैंक जो छो वो ठुल लोगों का मदद करूँ, लेकिन अब छोट व्यापारी ले बैंकिंग व्यवस्था दगे जुड़नी। येल उनमें आत्मनिर्भर बढ़ने भावना लबड़ने और अपन नानतिनू पढ़ाई उनर खर्च और उनर भविष्य के लिए भल योजना ले वो बढ़ पानी। श्रोताओं, यो योजना सब हवे ठुल लाभ यह छू कि इमें सैनी ले अपन काम शुरू कर सकनी। कई सैनी घर बटी बिहार नान दुकान या ठल लगवेर अपन परिवारक मदद करनी। ये योजनाल उनको आर्थिक सहायता मिले और वो आत्मनिर्भर बढ़ पानी। येल महिला आत्मविश्वास ल बढ़ू और समाज में वो अपन एक अलग पहचान ल बढ़ पानी। श्रोताओं, सरकार बखत बखत पर ये योजना के बारे में मनखियों के जागरूक ल करते रहे, ताकि ज़्यादा हबीर ज़्यादा मनखी ये एक लाभ उठा सको और नगर निकाय बैंक और अन्य संस्थान मिल बेर जो ये योजना के पात्र मनखी छिन उनको योजना की जानकारी दी सको और येल गरीब और ज़रूरतमंद मनखियों तक ये सहायता ल पहुँच सको। श्रोताओं, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना आत्मनिर्भर भारत अभियान के मजबूत बढ़ून में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने। जब छोट व्यापारी मजबूत हल तब देशक अर्थव्यवस्था ले मजबूत हिल। छोट छोट व्यापारी हगिल बढ़वेर ठुल विकासक आधार बढ़नी। ये योजना मनखियों के मेहनतक दगे हगिल बढ़ून और सम्मानक दगे जीवन जीनक ले प्रेरणा दे। श्रोताओं, हमूल बात करी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना एक दगड़ में भारत सरकार 2020 में आत्मनिर्भर भारत योजना के लिए शुरुआत करी। जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी बटी जूझन छी, यो अब कठिन वक्त में भारत एक अर्थव्यवस्था के मजबूत बढ़ाई रखने के लिए और मनखियों के रोजगार उपलब्ध करुनक एक ठुल चुनौती बढ़ रही छी। यस में सरकार यो योजना के माध्यम देश का आत्मनिर्भर बढ़ूनक लक्ष्य रखो और ये योजना का उद्देश्य केवल संकट बटी उभरन नहीं थी, बल्कि भविष्य के लिए एक मजबूत और टिकाऊ अर्थव्यवस्था तैयार करन छी। श्रोताओं, आत्मनिर्भर भारत योजना केवल एक योजना नहीं तो बल्कि यो एक सोच छू जो देशक हर एक नागरिक के अपन खुटा में ठाड़ होनक और देश के सशक्त बढ़ूनक लिए प्रेरित करना। श्रोताओं, आत्मनिर्भरता का मतलब छू अपन संसाधनों

उपयोग करबेर उत्पादन नवाचार और आत्मविश्वास जगह हगिल बढ़न। यही भावना राष्ट्र के मजबूत सक्षम और विकसित बनाए। श्रोताओ, ये योजना के अंतर्गत सरकार लगभग 20 लाख करोड़ रुपए आर्थिक पैकेज घोषणा कर रहे, जो देशक अलग अलग वर्गों जैसे गरीब किसान मजदूर और छोट व्यापारी सहायता के लिए छू। ये अंतर्गत छोट और मध्यम उद्योगों के विशेष रूप से प्रोत्साहन दी जानो, किले की यह देशक अर्थव्यवस्था रीढ़ मानी जानी। उनके ऋण सब्सिडी और अन्य सुविधा ले दी जाने जेल ऊ अपन व्यवसाय के हगिल बढ़ सकूं और रोजगारक नई अवसरों के पैद कर सकूं। श्रोताओ, आत्मनिर्भर भारत योजना एक महत्वपूर्ण पहलू वोकल फॉर लोकल छू। जैक मतलब छू कि हमको अपन देश में बड़ी उत्पादकों का उपयोग करन चैन और उनके बढ़ावा दिन चैन। येल न केवल स्थानीय उद्योगों के मजबूती मिले बल्कि देशक अर्थव्यवस्था लय मजबूत हिल। यो पहल मनखियों में स्वदेशी समानक प्रति गर्व और विश्वास लबड़े। श्रोताओ, यो योजना 5 मुख्य स्तंभ छिन्न: अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, प्रणाली, जनसांख्यिकी और मांग। यो स्तंभों के आधार पर देशक समग्र विकासक दिशा तय करी जाए। अर्थव्यवस्था के नई ऊंचाइयों तक ले जान, आधुनिक और मजबूत अवसंरचना निर्माण करन, पारदर्शी और कुशल प्रणाली का विकास, युवा जनसंख्या का सही उपयोग और बाजार में मांग के बढ़ावा दें, ये सब है यो योजना प्रमुख लक्ष्य छिन। यह कदगर कृषि क्षेत्र में ले यो योजना के तहत कई महत्वपूर्ण कदम उठाई जरीन। किसानों का नई तकनीकों दगर जोड़न, बेहतर बाजार उपलब्ध करून और उन्हें आय बढ़ूनक लीजिए अलग अलग योजनाओं के लागू करी जरो। यह खबर अलावा स्टार्टअप और नवाचार के बढ़ावा देने के लिए कई पहल शुरू करी जिन्हें जेल युवा अपने विचारों के पूर कर सकनी और रोजगारक नई अवसरों के पैद कर सकनी। लेकिन श्रोताओ, आत्मनिर्भर भारत योजना का सामर्थ्य थोड़ा चुनौती लचिन, जैसे तकनीकी विकास में कमी, वैश्विक प्रतिस्पर्धा और संसाधनों का सही उपयोग। लेकिन अगर सरकार और आम नागरिक मिलबेर प्रयास करनी तो यो चुनौतियों के आराम से कम करी जा सकूं। श्रोताओ, हमके शिक्षा तकनीकी और कौशलक विकास पर ले थोड़ा ध्यान दिन होल, ताकि हम वैश्विक स्तर पर ले प्रतिस्पर्धा कर सकूं। और आज जरूरत यो बात इच्छू कि हमको हम सबू के यो विचार के केवल शब्दों तक सीमित नहीं रखन छू, बल्कि इका अपन जीवनक हिस्सा बढ़ून होल। जब हर मन की आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करल, तब सच्चे अर्थों में आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा होल। और यो प्रयास निरंतर और सामूहिक रूप से जारी रहलो तो उदुन दिन दूर नहीं जब भारत विश्व में एक सशक्त समृद्ध और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में अपन विशिष्ट पहचान बढ़ाल। तो श्रोताओ, ये तो छी हमारे आजक बातचीत। जाना जाने आप लोगों के सुनो गोकुल बिस्त और इनर दगड़ियों स्वर में गाई यो कुमाऊनी लोकगीत।

श्रोताओं आल्ला पुलो गुल सुना गोकुल सिंह बिस्ट और इनर दगड़ियों स्वर में गाई यो कुमाऊनी लोकगीत। यह कदगा श्रोताओं अब बखत है गो आज उत्तरायण कार्यक्रम के संपन्न करनक बहु आप लोगों दगा फिर भेट हिल। तब तक लीजिए मनीषा मेहरा का दियो आज्ञा नमस्कार। श्रोताओं थोड़ी देर बाद उत्तराखंड प्रादेशिक समाचार देहरादून केंद्र बटी प्रसारित हल आप लोग थोड़ा प्रतीक्षा करिए।

0: इससे कार्यक्षमता, गुणवत्ता, उत्पादकता और योग्यता में वृद्धि होती है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता का आश्वासन दिया। राज्य विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों में स्वामी विवेकानंद उत्तराखंड ई पुस्तकालय योजना लागू। प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना है उद्देश्य। पिथौरागढ़ जिले में आम जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए हेलो हेल्प सेवा शुरू। और उधम सिंह नगर के जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर रुद्रपुर में सुरक्षित ईंधन सुरक्षित जीवन अभियान का शुभारंभ। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं जयवीर सिंह। और अब समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता हैं और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में OMR मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी CBT माध्यम से होगी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अपनी पसंद का शहर चुनने का अवसर मिलेगा। उच्च शिक्षा विभाग के तहत संचालित राज्य विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों में स्वामी विवेकानंद उत्तराखंड ई पुस्तकालय योजना लागू कर दी गई है। इसके तहत शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को ऑनलाइन एकीकृत प्लेटफॉर्म पर सभी पाठ्यक्रमों की ई बुक सहित अन्य डिजिटल सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी ताकि छात्र छात्राओं को किताबों को लेकर कोई दिक्कत न हो। योजना के ठोस क्रियान्वयन के लिए शासन स्तर से सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों एवं निदेशक उच्च शिक्षा को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। एक रिपोर्ट।
2: उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि स्वामी विवेकानंद उत्तराखंड ई पुस्तकालय योजना के तहत छात्र छात्राओं और शिक्षकों को एकीकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पाठ्य पुस्तकें, उत्कृष्ट लेखकों की किताबें, शोध पत्र और अन्य डिजिटल सामग्री एक क्लिक पर मिलेगी। उन्होंने कहा कि ई पुस्तकालय योजना का उद्देश्य प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुँचाना है ताकि आर्थिक और भौगोलिक कारणों से कोई भी छात्र किताबों से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के विद्यार्थियों को समान रूप से मिल सकेगा और छात्र अपनी सुविधा अनुसार आसानी से विषयवार पुस्तकों की पढ़ाई कर सकेंगे। इसके अलावा इस योजना का लाभ तकनीकी शिक्षा, आयुष व चिकित्सा शिक्षा सहित अन्य विभाग, निजी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय भी ले सकेंगे। इसके लिए उन्हें निर्धारित शुल्क देना होगा। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से संतोष थपलियाल।
1: पौड़ी जिले में विकास कार्यों को पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध बनाने की दिशा में प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए पौड़ी प्रगति पोर्टल लॉन्च किया है। यह अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म जिले में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग सुनिश्चित करेगा। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने कहा कि पोर्टल के जरिए सभी विभागों की प्रगति पर निरंतर नजर रखी जा सकेगी, जिससे कार्यों में गति के साथ साथ गुणवत्ता भी सुनिश्चित होगी। उन्होंने बताया कि यह पोर्टल प्रशासनिक कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी, जवाबदेह और पारदर्शी बनाने के साथ ही विकास कार्यों की गुणवत्ता और प्रगति पर सतत निगरानी रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
3: पौड़ी प्रगति पोर्टल का अभी रिसेंटली उद्घाटन किया गया है और अब हमारे जितने भी जिला योजना, राज्य योजना और केंद्र पोषित की जो निर्माण कार्य होंगे वो सभी की मॉनिटरिंग, रियल टाइम मॉनिटरिंग उस पोर्टल के माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी। और इसके लिए सभी विभागों को जो उनके लॉगिन आईडीज हैं वो भी दिए जा चुके हैं और जिसपे उन्हें प्रत्येक अपने वित्तीय तथा फिजिकल प्रोग्रेस प्रत्येक प्रोजेक्ट का अपलोड करना होगा। और अब हम लोग आगे की जितनी भी समीक्षाएं करेंगे वो सब कुछ प्रगति पोर्टल के रिपोर्ट के एनालिसिस के आधार पर ही करेंगे। और इसकी बहुत ही अच्छी बात ये है कि इसमें विभागवार, ब्लॉकवार हर प्रकार से हम लोग रिपोर्ट देख सकते हैं, जिससे कि क्लियर कट हर समय हमें बार बार दोबारा से सभी विभागों से उनकी सूचनाएं बार बार मांगने की भी आवश्यकताएं नहीं रहेंगी और फिजिकल और फाइनेंशियल प्रोग्रेस में हम लोग साथ में सामंजस्य बिठाकर मॉनिटरिंग कर सकेंगे।
4: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
1: पिथौरागढ़ जिले में आम जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए हेलो हेल्प सेवा आज से शुरू हो गई है। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर 9458144651 जारी किया गया है, जिस पर कोई भी नागरिक अपनी समस्या दर्ज करा सकता है। जिलाधिकारी आशीष भटकाई ने आज हेल्प डेस्क कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जिले के किसी भी दूरस्थ क्षेत्र से नागरिक अब हिंदी या स्थानीय भाषा में अपनी शिकायत आसानी से दर्ज करा सकेंगे। हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों को संबंधित विभागों तक तुरंत भेजा जाएगा और प्राथमिकता के आधार पर उनका समाधान कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य जनता और शासन के बीच संवाद को मजबूत बनाना है।
5: हेलो हेल्प पिथौरागढ़ एक हेल्प डेस्क है, इसका आज से इसको स्टार्ट कर दिया गया है। तो इसमें जो है एक तो पब्लिक रिवॉल्व सिटीजन का सिस्टम है जो कि फोन के आधार पर ही काम करेगा। तो कोई भी व्यक्ति स्थानीय भाषा में जो अपनी शिकायतें उनको यहां दर्ज करा सकते हैं और रियल टाइम में संबंधित विभाग को उसको ट्रांसफर किया जाएगा और उसका प्रायोरिटी के आधार पर निराकरण सुनिश्चित करते हुए फिर संबंधित व्यक्ति को भी अवगत कराया जाएगा। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है और इसको सिंप्लीफाइड वे में हम लोगों ने रखा हुआ है और शिकायतें प्राप्त करते हुए निस्तारण करना ही इसमें प्राथमिकता रहेगी।
1: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उधम सिंह नगर की ओर से आज जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर रुद्रपुर में सुरक्षित ईंधन सुरक्षित जीवन अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर न्यायिक अधिकारियों कर्मचारियों और अधिवक्ताओं को ईंधन की बचत के लिए प्रेरित करते हुए सप्ताह में 2 दिन पैदल या साइकिल से न्यायालय परिसर आने का आह्वान किया गया। अभियान को व्यावहारिक रूप से अपनाते हुए प्राधिकरण की सचिव ममता पंत अपने निवास से लगभग पैदल चलकर न्यायालय परिसर पहुंची। उन्होंने कहा कि 1 महीने तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य आम जन में ईंधन और पर्यावरण संरक्षण और स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।
6: ये कैंपेन 1 महीने तक चलेगा। इस कैंपेन में हमने सारे लिटिगेंट्स, सारे अधिवक्तागण, सारे न्यायिक अधिकारीगण सब लोगों से आह्वान किया है कि वह सप्ताह में 2 दिन सैटरडे और मंडे कोर्ट पैदल आए या फिर साइकिल से कोर्ट आए। इसका यही उद्देश्य है कि ईंधन बचाए तथा सुरक्षित जीवन पाए। आज समस्त न्यायिक अधिकारीगण द्वारा तथा मेरे द्वारा पैदल आया गया।
1: ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान बागेश्वर में इन दिनों महिलाओं और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। 12 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में प्रतिभागियों को अगरबत्ती, धूप और पारंपरिक दिए बनाने की बारीकियां सिखाई जा रही हैं। प्रतिभागियों को केवल अगरबत्ती और धूप बनाना ही नहीं सिखाया जा रहा बल्कि पहाड़ी क्षेत्रों से आसानी से मिलने वाली जड़ी बूटियों के उपयोग की जानकारी भी दी जा रही है। संस्थान के निदेशक सुखविंदर कादियान ने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में रोजगार के सीमित अवसरों को देखते हुए स्वरोजगार ही सबसे बेहतर विकल्प बनकर उभर रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि कम पूंजी लगाकर आसानी से काम शुरू किया जा सके।
7: हमारी RCT जो है अलग अलग तरह के जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती रहती है जिसमें कम पूंजी में जो है युवक युवती जो है अपना स्वरोजगार कर सके। अभी जो हमारा चल रहा है धूप अगरबत्ती का चल रहा है 12 दिवसीय कार्यक्रम है, इसमें जो है 10,000 रुपये से जो है अपना स्वरोजगार शुरू किया जा सकता है और अगर मशीनें भी जो है आधुनिक मशीनें लगाएंगे तो 50,000 से 1,00,000 तक जो है वो आधुनिक मशीनें भी आ जाती हैं।
1: वहीं लाभार्थी जानकी जोशी ने बताया कि प्रशिक्षण में उनका आत्मविश्वास बढ़ा है और अब वे भविष्य में स्वरोजगार शुरू करने की योजना बना रही हैं।
8: हमने यहाँ पे 3-4 प्रकार की धूप बनानी सीखी, मिट्टी के दिए बनाने सीखे, अगरबत्ती सीखी, जिससे हमें नया अनुभव प्राप्त हुआ है। अगर हमें मौका मिलेगा तो आगे इसको हम आगे ले जाएंगे और अपना बिजनेस शुरू करेंगे।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता का आश्वासन दिया। राज्य विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों में स्वामी विवेकानंद उत्तराखंड ई पुस्तकालय योजना लागू, प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना है उद्देश्य। पिथौरागढ़ जिले में आम जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए हेलो हेल्प सेवा शुरू और उधम सिंह नगर के जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर रुद्रपुर में सुरक्षित ईंधन सुरक्षित जीवन अभियान का शुभारंभ। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। भक्ति संगीत कार्यक्रम में आइए पहले सुनते हैं हरिओम शरण की गाई ये भक्ति रचना।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भक्ति संगीत। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6:50 होने वाले हैं। अब गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी देवदून बटाया गढ़ोली में प्रादेशिक समाचारों का दगड़ में दीपक सिंह रावत। पहली मुख्य समाचार, प्रदेश में मकानों को सूचीकरण और आवास गणना का कार्य 70% तक पूर्व हो गया। 19 लाख घरों तक पहुंची टीम। पेट्रोल डीजल की बचत और ऊर्जा संरक्षण थे लेकर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने भी शुरू करी तेल बचाओ मुहिम। सादा वाहन और ऊर्जा संरक्षण पर जोर। पौड़ी जिला में विकास कार्यों थे पारदर्शी गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध बाण की दिशा में प्रशासन ने पौड़ी प्रगति पोर्टल शुरू करी। और चमोली जिला में रुद्रनाथ यात्रा को शुभारंभ। शीतकालीन गद्दी स्थल गोपीनाथ मंदिर परिसर में चल विग्रह उत्सव डोलित है। श्रद्धालुओं को दर्शनार्थ रखे गया 18 मई खुण खुलला रुद्रनाथ मंदिर के द्वार। अरब समाचार एक छोर बट, प्रदेश में मकानों को सूचीकरण और आवास गणना का कार्य 70% तक पूर्व हो गया। गणना कार्य में लगी टीमों ने अभी तक 19 लाख घरों में डेटा इकट्ठा करी। ये लिहाज से 86 लाख आबादी थे कवर करे गया। एक कार्य खुण 24 मई तक समय निर्धारित करे गया। ये संबंध में भारत का महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण देवदून में प्रमुख सचिव आर के सुधांशुक दगड़ प्रदेश में जनगणना कार्य की समीक्षा करी। उन वर्चुअल बैठक करी जिलाधिकारियों और नगर आयुक्तों बटे फीडबैक लिया। श्री नारायण ने बोली कि जनगणना के कार्य में आंकड़ों की गुणवत्ता को सबसे ज्यादा अहमियत है, किले की ये पर परिसीमन से लेकर जन कल्याणकारी योजनाओं का आधार टिको छ। उन सभी से आंकड़ों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना खुण डेटा की जांच पर विशेष ध्यान दिए जाने की अपील करी। दगड़ में उम्मीद जताए कि उत्तराखंड में शेष बचा एक तिहाई कार्य थे भी समयबद्ध ढंग से पूर्व करे जालू।
1: जनगणना का प्रथम चरण मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य चल रहा है और उसके लिए एक अवधि निर्धारित होती है। तो उत्तराखंड में अवधि 24 मई को समाप्त हो रही है, तो अभी 10 दिन बचे हैं, तो 10 दिन में इस कार्य को पूरा किया जाना है। सभी जगह कार्य चल रहा है, करीब 2/3 कार्य हो गया है। अगर पूरे उत्तराखंड की बात करें तो अगले 10 दिन में बचा हुआ 1/3 काम भी कर लेंगे।
0: पेट्रोल डीजल की बचत और ऊर्जा संरक्षण से लेकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का आह्वान के बाद प्रदेश में भी सरकारी विभाग सक्रिय होन दिखेना छन। ये क्रम में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण MDDA ने भी झटझटाक प्रभाव से ऊर्जा संरक्षण और तेल बचत थे लेकर कदम उठाना शुरू कर दिया। MDDA उपाध्यक्ष वंशीधर तिवारी ने प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों को तेल बचत और ऊर्जा संरक्षण पर विशेष कार्य योजना लागू करी। उन्होंने बताया कि अधिकारियों कर्मचारियों से कार्यालय आने जाने के दौरान साझा वाहन अपनाने का रोस्टर जारी करेगा, जैसे अनावश्यक ईंधन खपत थे कम करे जाए सक। यहाँ के अलावा कार्यालय के आसपास रहने वाला कर्मचारियों थे साइकिल से या पैदल कार्यालय आना खुणों प्रेरित करे जानो च। उन बोली कि ऊर्जा संरक्षण थे लेकिन कई महत्वपूर्ण आंतरिक दिशा निर्देश लागू करेगिन, जहाँ को उद्देश्य बिजली और ईंधन दुयों को बचत करण च।
2: हम लोगों ने आज रोस्टर बनाया है कि सभी JEE जो भी सेक्टर में अवैध निर्माण में सीलिंग में लगे हैं, एक सेक्टर के लिए की गाड़ी आवंटित कर दी है। सीलिंग में जाएंगे तो एक साथ एक ही गाड़ी में बैठकर लोग कार पूल करेंगे और सीलिंग की कार्रवाई और डस्टिंग की कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ हम लोगों ने जो AC है वो 25 डिग्री पर मेंटेन किया है और जहाँ जरूरत नहीं है उसको बंद कर दिया।
0: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उधम सिंह नगर की ओर से आज जिला और सत्र न्यायालय परिसर रुद्रपुर में सुरक्षित ईंधन सुरक्षित जीवन अभियान का शुभारंभ करेगा। यह अवसर पर न्यायिक अधिकारियों कर्मचारियों और अधिवक्ताओं थे ईंधन के बचत खोण प्रेरित करते हुए सप्ताह में 2 दिन पैदल और साइकिल से न्यायालय परिसर आने का आह्वान करेगा। अभियान तय व्यावहारिक रूप से अपने की प्राधिकरण के सचिव ममता पंत अपना निवास से लगभग पैदल चली के न्यायालय परिसर पहुंचीं। उन्होंने बोली कि 1 महीने तक चलने वाला यह अभियान का उद्देश्य आमजन में ईंधन और पर्यावरण संरक्षण और स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूकता बढ़ाना च।
3: ये कैंपेन 1 महीने तक चलेगा। इस कैंपेन में हमने सारे लिटिगेंट्स, सारे अधिवक्तागण, सारे न्यायिक अधिकारीगण सब लोगों से आह्वान किया है कि वह सप्ताह में 2 दिन सैटरडे और मंडे कोर्ट पैदल आएं या फिर साइकिल से कोर्ट आएं। इसका यही उद्देश्य है कि ईंधन बचाए तथा सुरक्षित जीवन पाएं। आज समस्त न्यायिक अधिकारीगण द्वारा तथा मेरे द्वारा पैदल आया गया।
4: समाचारों को यू बुलेटिन आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करे जानो जे। ताजा समाचारों खुड़ी आप हमारा सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड थे फॉलो कर सकते हैं। दगड़ा दगड़ी यू समाचार हमारा यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध छिन।
0: पौड़ी जिला में विकास कार्यों थे पारदर्शी गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध बनाने की दिशा में प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए

0: पौड़ी प्रगति पोर्टल शुरू कैरी। यू अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म जिला में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं को रियल टाइम मॉनिटरिंग सुनिश्चित करलू। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बोली कि पोर्टल का जरिए सभी विभागों को प्रगति पर निरंतर नजर रखे जा सकत, जहाँ से कार्य में गति को दगड़ दगड़ गुणवत्ता भी सुनिश्चित हुई। उन बताए कि यू पोर्टल प्रशासनिक कार्य प्रणाली थे अधिक प्रभावी, जवाबदेह और पारदर्शी बनाने के दगड़ ही विकास कार्यों को गुणवत्ता और प्रगति पर सतत निगरानी रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभालो।
1: पौड़ी प्रगति पोर्टल का अभी रिसेंटली उद्घाटन किया गया है और अब हमारे जितने भी जिला योजना, राज्य योजना और केंद्र पोषित की जो निर्माण कार्य होंगे वो सभी की मॉनिटरिंग, रियल टाइम मॉनिटरिंग उस पोर्टल के माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी और इसके लिए सभी विभागों को जो उनके लॉगिन आईडीज हैं वो भी दिए जा चुके हैं और जिसपे उन्हें प्रत्येक अपने वित्तीय तथा फिजिकल प्रोग्रेस प्रत्येक प्रोजेक्ट का अपलोड करना होगा और अब हम लोग आगे की जितनी भी समीक्षाएं करेंगे वो सब कुछ प्रगति पोर्टल के रिपोर्ट के एनालिसिस के आधार पर ही करेंगे और इसकी बहुत ही अच्छी बात ये है कि इसमें विभागवार, ब्लॉकवार हर प्रकार से हम लोग रिपोर्ट देख सकते हैं जिससे कि क्लियर कट हर समय हमें बार बार दोबारा से सभी विभागों से उनकी सूचनाएं बार बार मांगने की भी आवश्यकताएं नहीं रहेंगी और फिजिकल और फाइनेंशियल प्रोग्रेस में हम लोग साथ में सामंजस्य बिठाकर मॉनिटरिंग कर सकेंगे।
0: चमोली जिला में स्थित रुद्रनाथ मंदिर के द्वार 18 मई खुणो श्रद्धालुओं खुणो खुले जाला। ये बीच भगवान रुद्रनाथ के यात्रा का आज शीतकालीन गद्दी स्थल गोपीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद शुभारंभ हुए गया। रुद्रनाथ का मुख्य पुजारी हरीश भट्ट ने बताया कि सुबेर पूजा अर्चना के बाद गोपीनाथ मंदिर के गर्भगृह से भगवान रुद्रनाथ का चल विग्रह उत्सव डोलित हैं। श्रद्धालुओं को दर्शनों खुणो मंदिर परिसर में रखे गए। उन्होंने बताया कि आज अरभोल उत्सव डोली श्रद्धालुओं को दर्शनों खुणो मंदिर परिसर में रैली, 17 मई खुणो डोली रुद्रनाथ खुणो प्रस्थान कर रैली और 18 मई खुणो रुद्रनाथ मंदिर के द्वार श्रद्धालुओं खुणो खुले जाला।
2: आज भगवान श्री रुद्रनाथ जी की जो विग्रह मूर्ति है वो गर्भगृह से आकर मंदिर प्रांगण में रख दी गई है और आज और कल दो दिन दर्शनार्थ के लिए रखी जाएगी। 17 तारीख को हम यहाँ से प्रातः 9 बजे प्रस्थान करके यहाँ से चलेंगे और 18 तारीख 11-12 बजे के बीच में भगवान रुद्रनाथ जी के कपाट खुलेंगे।
0: पिथौरागढ़ जिला में आम जनता की समस्याओं को झटझटाक समाधान खुणो हेलो हेल्प सेवा आज बटे शुरू हो गया। यहाँ खुणो हेल्पलाइन नंबर 9458144651 जारी करेगा, जय पर कोई भी नागरिक अपनी समस्या दर्ज कर सकत। जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने आज हेल्प डेस्क कंट्रोल रूम का उद्घाटन करी। ये अवसर पर उन्होंने बोली कि जिला के कई भी दूरस्थ क्षेत्र से नागरिक अब हिंदी या स्थानीय भाषा में अपनी शिकायत आसानी से दर्ज कर सकला। हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों थे संबंधित विभागों तक तुरंत भेजे जालू और प्राथमिकता के आधार पर उनको समाधान करे जालू। उन्होंने बोली कि प्रशासन का उद्देश्य जनता और शासन के बीच संवाद थे मजबूत बाण।
3: हेलो हेल्प पिथौरागढ़ हेल्प डेस्क है, इसका आज से इसको स्टार्ट कर दिया गया है। तो इसमें जो है एक तो पब्लिक रिवाल रिप्रेजल का सिस्टम है जो कि फोन के आधार पर ही काम करेगा, तो कोई भी व्यक्ति स्थानीय भाषा में जो अपनी शिकायतें उनको यहां दर्ज करा सकते हैं और रियल टाइम में संबंधित विभाग को उसको ट्रांसफर किया जाएगा और उसका प्रायोरिटी के आधार पर निराकरण सुनिश्चित करते हुए फिर संबंधित व्यक्ति को भी अवगत कराया जाएगा। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है और इसको सिंप्लीफाइड वे में हम लोगों ने रखा हुआ है और शिकायतें प्राप्त करते हुए निस्तारण करना ही इसमें प्राथमिकता रहेगी।
0: आखिर में मुख्य समाचार एक दा फिर से। प्रदेश में मकानों को सूचीकरण और आवास गणना का कार्य 70% तक पूर्व, 19 लाख घरों तक पहुंची टीम। पेट्रोल डीजल के बचत और ऊर्जा संरक्षण से लेकर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने भी शुरू करी तेल बचाओ मुहिम, साझा वाहन और ऊर्जा संरक्षण पर जोर। पौड़ी जिला में विकास कार्यों थे पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध बनाने की दिशा में प्रशासन ने पौड़ी प्रगति पोर्टल शुरू करी और चमोली जिला में रुद्रनाथ यात्रा का शुभारंभ। शीतकालीन गद्दी स्थल गोपीनाथ मंदिर परिसर में चल विग्रह उत्सव डोली थे श्रद्धालुओं को दर्शनार्थ रखे गए। 18 मई खुण खुलला रुद्रनाथ मंदिर द्वार। यहाँ का दगड़म गढ़ली में प्रादेशिक समाचारों को समाप्त होंदू। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 7 बजे हैं। अब ग्रामीण श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम ग्राम जगत।

ग्राम जगत कार्यक्रम सुरनेर सर्व श्रोताओं के मैं कृष्णा सिंह लटवालक नमस्कार। श्रोताओं स्वागत है आपूर्ण हमारे कार्यक्रम ग्राम जगत में। गर्मी एक बखत चल रहा और यश में ही हमारे पर्वतीय क्षेत्र में किसानूल अपन खेतन में जो बुआई वो करण लग रही वह दगड़ दग रहे शिमला मिर्च मिर्च बैगन और यके दगड़ है टमाटर जो नर्सरी पहुँच उन्हन के लिए अपन खेतों में वो आजकल लगों लग रहे। तो यश में हमन के टमाटर का बहुत उत्पादन कसिक ली जा सकूँ हम ये पर अहिला पर चर्चा करूँ। सदा भारत में ठुल पैमाने पर बागवानी फसलों खेती और खपत जो छ होने लग रहे इसमें सब्जियों के मांग के पुरकरण किसानों के लिए एक ठुल चुनौती ले बढ़ गया। उसी तो मनखी आल प्याज लहसुन जैसे सब्जियों का इस्तेमाल बारहमासी रूप में करनी लेकिन सब्जियों के रंगत के और स्वाद के बढ़ाने के लिए टमाटर खपत ले हमारे यहाँ बहुत ठुल स्तर पर करी जाने लग रहे। इसमें सिर्फ खेतों में टमाटर उगभेर देशक जरूरत के पूर्ण नहीं करी जा सकन ये निजी कृषि वैज्ञानिक टमाटरक संरक्षित खेत करने की सलाह किसान भाई बहनों के देने लग रही। संरक्षित खेत में पॉलीहाउस ग्रीन हाउस में अलग अलग सब्जियों और बेमौसमी सब्जियों के लिए किसान किफायती खर्च में उगे सकनी। सुधा पॉलीहाउस यानी कि ग्रीन हाउस में टमाटरक फसल लेने कोई बहुत मुश्किल काम नहीं। अगर खेती दगे जुड़ी कामों में शुरुआत बटिके कुछ सावधानी बरती जो तो फसलक उत्पादन तो बढ़ल है ये के दगड़े किसानों के लिए भल लाभ जो है अर्जित हो। स्वतः टमाटरक संरक्षित खेत करते वक्त उन्नत किस्मों का मन के चुनाव करण चैन ये फसलक बढ़वाड़ में मदद मिली और कीट रोगों संभावना ले निरून। पॉलीहाउस ग्रीन हाउस में खेत करने पहली टमाटरक नर्सरी हमन के तैयार करण चैन टमाटरक पौध के सिर्फ खाद और कंपोस्ट में हमन के उगून चैन माटक इस्तेमाल हमन के कम करण चैन। नर्सरी में बुआ है बेर पहली उन्नत बीज चुनाव करण चैन और बीजोपचारक बाद इन्हन के नर्सरी में हमन के बीण चैन। पॉलीहाउस मले माट में दुबे तीन जुदाई हमन के करण चैन इमें गोबरक पकी हुई खाद और मठ हमन के मिलून चैन। टमाटरक संरक्षित खेत में बखत पर सिंचाई बहुत जरूरी हो तो इसमें किसान चाहे तो ड्रिप सिंचाई तकनीक के लिए अपने सकनी या एक तो पानी की बचत हो और प्रत्येक पौध के पानी जो छ मिल जाए। पॉलीहाउस में टमाटर उगण बे खरपतवार यानी अनावश्यक पौध ले नहीं उगन किले की पौध नर्सरी में तैयार करी जाए लेकिन फिर ले पौध साला में कटाई छटाई काम हमन के करते रूण चैन। स्वतः टमाटर ग्रीन हाउस में खेत करण पर सफ़ेद मक्खियों के प्रकोप झेलन पड़ सकूँ यह लीजिए हमन के ट्रैप या फिर कागज पर अरंडीक तेल लगे बेर हमन के इस्तेमाल करण चैन। पौधों और फल के गलन हबेर बचौन के लिए इन्हन के सफ़ेद धागू बे ऊंचाई पर हमन के बांध दिन चैन ये एक बढ़वाड़क संभावना बढ़ जी। यह के डगरे हम ज़्यादा उत्पादन कर जी टमाटर न पौधों में स्केटिंग जो छू कर सकनू स्केटिंग यानी कि एक लंब लकड़ जो छू हम अपन वहाँ लगे सकनू। स्वतः पॉलीहाउस में टमाटर उगुड़ में चार गुना तक ज़्यादा कमाई हम कर सकनू। अगर हम बात करूँ अनेक प्रकार के टमाटर उगाए जाने लगे चेरी टमाटर एक तो यह तकनीक भी उगान पर चेरी टमाटर के लिए बाजार में बहुत महंग जो छू बिक जा और वही अगर हम 1000 वर्ग मीटर में ग्रीन हाउस टमाटर में उगनू तो 10-15 टन टमाटर को

उपज हमन के सिर्फ 10 बे 9 बे 10 मिनट तक हम ले सकूँ। अगर हम विशेषज्ञों बात के मानू तो टमाटरक एक पौध पर करीब 50 बे 60 टमाटर उगनी और एक गुच्छ में 4 बे 5 टमाटर हमन के मिल जानी। तो ये टमाटरों को वजन ला आपू आम टमाटरक मुकाबले जो छे ज़्यादा हों और ये टमाटर सेहत के लिए लाभकारी होनी। तो किसानों के बाजार मांग और कीमत के हिसाब बल मठ कमाई कर भी ले ये टमाटर देनी। तो इसमें हमारे पर्वतीय क्षेत्र में कृषक ले शिमला मिर्च मिर्च और बैगन और टमाटर खेत जो है करण लाग रही। अगर वो खुले खेतों में खेत करण लाग रही तो एक दगर दगड़े हम उनके संरक्षित पॉली हाउस में ले खेत जो है एक करण चैन ताकि हम ज़्यादा उत्पादन ले सकूँ। क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में ले विषम भौगोलिक परिस्थितियों में हम खेत करूँ तो बारिश और फिर ज़्यादा गर्मी की वजह जैसे जो नुकसान हमन कह जाए कि जलवायु परिवर्तन में हमारे पर्वतीय क्षेत्र ले अछूता नहीं। तो इसमें हमन के कहने के संरक्षित खेत यानी कि पॉली हाउस तकनीक के तरफ हमन के धीरे धीरे बढ़न पड़ो ताकि हम ज़्यादा उत्पादन ले सकूँ। जहाँ तक हम आज टमाटर की बात करी तो टमाटरों का हम संरक्षित खेत में उत्पादन कर भी ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकूँ। तो किसान भाई बड़ी तो अच्छी बातचीत टमाटर पॉली हाउस में उत्पादन पर और कार्यक्रम में आगे हम आपको छोड़ू गुलजू हमारे इष्ट देवता की स्तुति सुरेश प्रसाद के स्वर में।

0: श्रोताओं यो छि सुरेश प्रसाद कार्यक्रममै आगे सुन्नु टपक सिंचाई भए खेत गर्दै कृषक हरेन्द्र शाहदेखि यो क्षेत्र सङ्कलित भेटवार्ता।
1: श्रोताओं नमस्कार, संकलित भेंटवार्ताओं के क्रम में आज हमारे साथ हैं कृषक हरेंद्र शाह जी। आप ग्राम सिलंगा पोस्ट महलचोरी तहसील गैरसैंण जिला चमोली से हमारे साथ जुड़े हैं। आपका ये क्षेत्र अल्मोड़ा जिले के सीमावर्ती क्षेत्रांगत आता है। सबसे पहले तो हरेंद्र शाह जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
2: जी धन्यवाद।
1: सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि आपके पास कितनी जमीन है।
2: जी मैं फिलहाल जिस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ उस क्षेत्र में मेरे पास नहीं तो मतलब 800 वर्ग मीटर फिलहाल तो मेरे पास पॉली हाउस है जिसके अंदर मैं खेती करता हूँ, और बाकी बाहर की भी जमीन है, दो चार नाली बाहर की भी है। तो मतलब टोटल मतलब 8-10 नाली में मतलब मैं खेती कर रहा हूँ अभी फिलहाल सब्जी की।
1: जी तो किस प्रकार की खेती आप करते हैं, कौन सी फसलों का उत्पादन आप लेते हैं?
2: सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करता हूँ, जो जिसे कि मतलब वैसे आधुनिक तौर पे बोला जाए तो कैश क्रॉप कहते हैं, मतलब जिसमें छठ उत्पादन छठ पैसा वाली बात। मैं मतलब अधिकतर क्या मेरा जितना भी मैं खेती करता हूँ मैं सभी मतलब मेरा जो सब्जी वर्गीय खेती है कद्दू खीरा लौकी टमाटर शिमला मिर्च तमाम मतलब काफी सारे हैं, हमारे घरेलू भी हैं हाइब्रिड भी हैं वगैरह भी है, सारा का मतलब मिक्स है सीजन वाइज और ऑफ सीजन वाइज।
1: जी तो अभी आपने अपने खेतों में क्या लगा रखा है?
2: जी अभी तो हमारे पास क्योंकि साल भर साल मैं थोड़ा चेंज करते रहता हूँ प्रैक्टिकल की किस टाइम क्या होगा, अभी तो हमारे पास है इस साल मेरे पास अभी जो उपलब्ध है गोभी फूल गोभी तैयार हो रही है जो मतलब अब मतलब ऑफ सीजन में प्रवेश हो गई है।
1: जी
2: जो गोभी तो अभी हमारी शुरुआत हो गई है, इसके बाद हमारे पास है मेहरू कद्दू और प्लस अभी अब खीरे की पौध लग चुकी है, अब लगने वाले हैं कुछ टाइम में, और टमाटर की भी लगेगी शिमला मिर्च की भी लगेगी कद्दू लौकी की भी हो जाएगी, मतलब जून में मतलब सारी लगभग फसलें उत्पादन दे देगी और हम बेचना शुरू कर देंगे।
1: तो अभी आपने फसलों की जो पौध होती है पौधों की नर्सरी लगा रखी है ये कहना आप चाह रहे हैं?
2: ना कुछ ट्रांसप्लांट हो गए हैं, कुछ की नर्सरी अभी रह गई है और कुछ नर्सरी रह के मतलब उनको भी कुछ दिन में ट्रांसप्लांट करना है जगहों के हिसाब से, जहाँ जहाँ जगह खाली होगी जहाँ जहाँ हमने वो कर रखा है कि इसके बाद इसमें ये फसल लगानी है।
1: तो आप ये हरेंद्र शाह जी जो फसलें आप लगाते हैं ये खुले खेतों में लगाते हैं या फिर पॉली हाउस में आप खेती करते हैं?
2: जी मैंने जैसे पहले बताया कि मेरे पास पॉली हाउस, तो पॉली हाउस में मैं मुख्य तौर पर 2-3 फसलें ही लगाता हूँ। मेरे पास खीरा होती है जो सीजनेबल खीरा मैं लगाता हूँ वहाँ, और टमाटर लगाता हूँ, शिमला मिर्च। पॉली हाउस में मेरी मतलब सिर्फ 3 फसलें होती, बाकी लौकी और जो ये कद्दू हो गई और मेहरू कद्दू हो गई करेला हो गया या मतलब और भी तमाम सब्जियां जो है वो उसको मैं मतलब बाहर ही लगाता हूँ। बाहर ये है कि वो चीज़ बाहर के लिए बेस्ट है क्योंकि पॉलिनेशन की दिक्कत होती है, पॉली हाउस में थोड़ा हीटिंग प्रॉब्लम भी थोड़ा ज़्यादा होती है, टेम्परेचर का अप डाउन थोड़ा से वो चीज़ पॉलिनेशन के लिए थोड़ा मायने रखती है, और खुले में थोड़ा ऐसा है कि मधुमक्खियों और वगैरह ओपन स्पेस में थोड़ा पॉलिनेशन का आसान हो जाता है बहुत।
1: आपने पॉलिनेशन की बात करी।

0: अगर मैं अपेक्षाकृत बात करूं कि पॉली हाउस में ज्यादा उत्पादन होता है या फिर जो बाहर खुले में खेतों में अच्छा उत्पादन होता है?
1: देखो मेरे हिसाब से दोनों जगह मतलब उत्पादन होता है, ये मतलब मौसम के मतलब थोड़ा विपरीत काम करने के लिए पॉली हाउस। अगर आपके मतलब टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, अगर आपने बरसात में कोई चीज बाहर लगा रखी है तो उसका नुकसान होने का जो परसेंटेज वो काफी हद तक बढ़ जाती है। जैसे कि पॉली हाउस में जो खेती होती है उसका उत्पादन भी बहुत अच्छा रहता है, लेकिन अगर देखा जाए तो पॉली हाउस में जिस प्रकार की होनी चाहिए, जैसे सेल्फ पॉलिनेशन वाले मतलब बोले तो जो स्वयं मतलब परागण कर सकते हैं वैसे पौधे, जैसे टमाटर शिमला मिर्च, इनमें परागण के लिए किसी और मतलब जरिए की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, उनमें एक ही फूल में क्या होता है परागण होता है।
0: अच्छा,
1: और उसी से परागण हो जाता है, इसलिए उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती पॉली हाउस में।
0: साजी, जो हमारे जो खेती होती है उसमें सिंचाई और खाद जो एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, तो आपने सिंचाई की क्या व्यवस्था आपके वहाँ पर है?
1: सिंचाई की मेरे पास तो ज्यादातर मतलब जैसे पॉली हाउस के अंदर तो ड्रिप माध्यम है सारा, जो टपक विधि है उससे मतलब खेती करने में बहुत आसानी है, आपका मैनेजमेंट करने में, आपको पानी डालने के लिए टाइम नहीं निकालना पड़ेगा, आपको हर पौधे की जड़ पे आपने ड्रिपर लगा रखा है, आपने पाइप बिछा रखा पूरे पॉली हाउस में जितना जितना आपने पौधे लगाने हैं, आप उसके माध्यम से हो सके तो अगर जरूरत पड़े तो दवाई भी डाल सकते जड़ों में, हो सके अगर कभी खाद की कमी हो रही है या कुछ हो रही तो वाटर सोलेबल, कभी ऐसा होता है, कभी होता है कि समझ में नहीं आता। मैं तो मेरी तो जहां तक है कि मैं पहले क्या करता हूं, फसल लगाने से पहले मिट्टी जांच कर लेता हूं, फिर उस हिसाब से मुझे पता चल जाता है कि मेरी जमीन में क्या कमी है और क्या नहीं है, उस हिसाब से मैं सारी अरेंजमेंट कर लेता हूं, बाकी मेरे को तो बाद में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है।
0: तो कितना खर्चा आ जाता है सामान्यतः टपक सिंचाई पद्धति अपनाने में, इसके जो सिस्टम है उसको लगाने में?
1: ऐसा है, अगर आप पॉली हाउस में लगा रहे हैं, अगर आप कोई पॉली हाउस लगवा रहा है नया, तो वो तो उसी के सेटअप में पूरा आता है टपक विधि। अब आजकल लोग मतलब शुरू हमें भी जानकारी थी, लेकिन हमने इधर उधर जब मैंने लगवाया था पॉली हाउस तो इधर उधर से पता करा किसान तो उन्होंने बोला कि आप मतलब जहां मैंने ट्रेनिंग करी वो ग्वालदम थराली में, तो डॉक्टर रानी चलना, तो उनसे भी मैंने बात की तो उन्होंने बोला मतलब ड्रिप बहुत अच्छा है नीचे के लिए वो, क्योंकि ये पॉली हाउस वाले क्या करते हैं अधिकतर ऊपर क्या करते हैं फुहारे लगा देते हैं, तो फुहारे भौकर जैसे वो घूमता है स्प्रिंगल नहीं होता है वो जो प्याज व्याज के पौधे में लगाए रहते हैं, तो वो तो कुछ काम कर नहीं रहता है, क्योंकि वो जब तक पौधे छोटे रहते हैं जमीन खाली रहे तब तक काम होता है। तो आपने जैसे मल्चिंग में काम करना है तो उसमें उसका कोई काम नहीं है, उसके लिए तो ड्रिप ही काम है, आपने नीचे से डाल दी ऊपर से मल्चिंग डाल दी और होल बना लिया उसमें पौधा लगा दिया और नीचे नीचे आपका पानी जा रहा है, आपको कोई मतलब नहीं, ना तो झाड़ ना तो कुछ ऐसा आएगा।
0: अगर मैं बात करूं मल्चिंग की तो कितनी कारगर है ये खरपतवार नियंत्रण में?
1: मल्चिंग बहुत कारगर है, मतलब मैं देखा जाए तो मैं जब से खेती कर रहा हूँ मैं बिना मल्चिंग के काम नहीं करता हूँ, मैं मतलब अभी मतलब मैं अगले साल की मल्चिंग की व्यवस्था करने बैठ गया, क्योंकि कभी कभार ऐसी होती है कि मल्चिंग मिलना बहुत मुश्किल भी होती है, क्योंकि हमारा इधर क्षेत्र है तो दूरस्थ है, तो यहाँ नजदीक में कहीं होता नहीं है, या हल्द्वानी मिलेगा या देहरादून मिलेगा, और मिलेगा तो कहीं बार लेन देन और प्लस उनका मतलब जो रेट में भी फर्क आ जाता है, कोई महंगा बेचता है कोई कम बेचता है, तो ऑनलाइन भी मिलते हैं, मैंने तो बहुत बार ऑनलाइन भी मंगाया जो ठीक ठाक रेट लगे, तो उस हिसाब से थोड़ा दिक्कत हो जाती है, कई बार लेट हो जाता है, इसलिए अरेंजमेंट करके रखना पड़ता है पहले थोड़ा। तो बहुत अच्छा है मल्चिंग, ऐसी है कि आपने एक तो प्लस है पौधा सेफ रहता है ज्यादातर, उसमें खरपतवार नहीं आएगी तो पौधा अच्छा ग्रोथ करेगा, फल भी अच्छे लगेंगे, आपके हल्का जमीन में कोई गिरने वाला फल भी है तो मल्चिंग पे रहेगा तो आपका सड़ने गलने और नुकसान की थोड़ा वो है, और नमी बनी रहेगी, पानी की भी कम खपत होगी, तो बहुत कारगर है मल्चिंग। तो मैं बोलूंगा कि सभी किसान इसे मतलब लगाने का प्रयास करें, अरेंजमेंट करके लगाएं, और आपका टाइम भी बचेगा, आपकी ज्यादा मेहनत भी बचेगी और आपका उत्पादन भी बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा
0: जी। एक अच्छे उत्पादन के लिए बीज शोधन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, तो साजी आप जब बीज लेते हैं लगाते हैं तो उसको किस प्रकार से शोधित करते हैं?
1: जी, बीज जैसे हम लाते हैं पहले तो जैसे मैं तो हाइब्रिड भी लगाता हूँ, तो हाइब्रिड में क्या होता है थोड़ा पहले भी होता है उनमें कोटेड मतलब संशोधित होते हैं वो थोड़ा, लेकिन फिर भी मतलब अगर हम कोई भी बीज हम संशोधित कर रहे हैं तो जैसे हमारे पास ट्राइकोटर्मा है जैविक में, या रासायनिक में वोवास्टीन है या M45 है, या ऐसी आपके पास फंगिसाइड होना चाहिए, तो उसको आप बीज जब आप लगाना हो तो उसमें आप मिला

0: करते हो तो उसमें मिला के थोड़ा से मिला के उसमें थोड़ा क्या होता है वो लग जाता है, तो उसमें बीज जमने में बहुत अच्छा रहता है और प्लस सड़ता थोड़ा कम है और प्लस उसमें जब जमता है तो उसमें फंगस लगने की जो मतलब डर रहता है वो बहुत कम हो।
1: अगर हम बात करें, आपने कहा कि उपचार भी रासायनिक उपचार भी कृषक भाई करते हैं, जैविक उपचार भी करते हैं, तो ये उपचार करके ही जो है बीज लगाने चाहिए तो निश्चित बात है। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं, आपकी जो वार्षिक आय है तो कितनी आपको हो जाती है?
0: हमारा तो ऐसा है, अब किसानी खेती में कोई फिक्स बोला नहीं जाता, लेकिन हमारी जो मैं मतलब वार्षिक में जो भी है मतलब हमारा 2-3 लाख इससे ऊपर भी नीचे भी तो ये लगा रहता है ऊपर नीचे मतलब समथिंग, इसका कोई फिक्स नहीं है कि कभी फसल कोई खराब होगी कोई, तो हम भिन्न भिन्न प्रकार के फसल लगाता हूँ मैं तो उतना मेरे को ज्यादा असर नहीं पड़ता इस चीज में, एक ही किस्म की करूंगा तो उसमें शायद ज्यादा हो सकता है नुकसान हो।
1: जी, अलग अलग प्रकार के खेती करने से नुकसान कम किया जा सकता है।
0: जी, मल्टी क्रॉप में यही फायदा है कि आपने इधर गोभी लगा रखी, उधर आपने शिमला मिर्च लगा रखा है, तो हो सकता है कि गोभी में कोई बीमारी आ जाए तो आपकी फसल चौपट होगी, तो हो सकता है आपकी शिमला मिर्च में फसल खराब होगी, उधर आपने टमाटर लगा रखा, तो जरूरी नहीं है कि सब में एक साथ ही आए बीमारी, क्योंकि पौधा अलग अलग है। अब कद्दू वर्गीय पौधा अलग होता है, उनमें बीमारियों के लक्षण अलग होते हैं, उनमें कीट अलग लगते हैं, और जैसे ये टमाटर और शिमला मिर्च बैंगन ये टाइप के होते हैं इनमें थोड़ा अलग किस्म के होते हैं और ये इनमें कीड़े अलग लगते हैं बीमारियां, तो अलग अलग है सबका। तो अगर आप मिक्स क्रॉप करेंगे सबको अनुपात में लेके तो कोई एक दो फसल हो भी जाए खराब तो आपको ज्यादा मतलब रोना धोना नहीं पड़ेगा।
1: अच्छा, अगर हम बात करें, आपने कहा कि ये सब्जियों का ये वक्त है ना
0: जी,
1: तो कद्दू वर्गीय सब्जियों को लगाने के लिए किस प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिए कृषकों को?
0: कद्दू वर्गीय सब्जियों के लिए सबसे पहले तो ये है कि आप उनको जमीन में ग्रो ना करें, सबसे पहली बात उगाना और वो करना तो बहुत, क्योंकि अक्सर किसान क्या करते हैं जमीन में जब उगाते हैं और डिस्टेंस मेंटेन करें मतलब एक पौधा, कई हमारे घरेलू ये जो मेन काश्तकार जो कृषक जो खेती करते हैं उनको तो जानकारी भी, लेकिन हमारे घर गांव में जो छोटे मोटे तौर पे करते हैं उनको पता नहीं होता, वो एक ही जगह में एक एक फीट पे दो दो फीट पे क्या करते हैं पौधे लगा देते हैं
1: जी,
0: उससे क्या होता है बहुत नुकसान होता है, आप उत्पादन के चक्कर में जितना एक ने देना था सब पौधा का उतना ही उत्पादन होता है, तो उसमें यह है डिस्टेंस, जैसे आपने दूरी बना के रख दिया, ऊपर आपने मचान बना दी, और जमीन में अगर पौधा रहेगा तो जरूरत है कि वो जरूरी है कि वो मतलब टाइम से पहले खत्म हो जाएगा और आपका फल भी सही नहीं रहेगा और उसमें बीमारियां लगने के लक्षण भी ज्यादा होंगे और बीमारियां ज्यादा भी आएगी, तो जैसे ऊपर अगर आप कद्दू वर्गीय सब्जी बना रहे हैं तो उसमें डिस्टेंस मेंटेन करिए और ऊपर मचान जरूर बनाए।
1: शिमला मिर्ची और बैगन की बात की तो पर्वतीय क्षेत्रों में कौन सी प्रजाति की शिमला मिर्ची की पौध और बैगन की जो पौध है वो लगानी चाहिए?
0: अजी सर, तो अब अपने अपने इसको बोला नहीं जा सकता कि पहाड़ में ये चीज क्योंकि देखो मेरे यहाँ टेम्परेचर थोड़ा अलग है और मैं 2 किलोमीटर आगे चले जाऊँ या मैं यहाँ से थोड़ा यहाँ चौकटे तरफ जाऊँ वहाँ का टेम्परेचर बिल्कुल अलग है, मतलब हमारे यहाँ 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर के दूरी पे और 3 किलोमीटर की दूरी पे टेम्परेचर बिल्कुल अलग है, अलग अलग टेम्परेचर पे थोड़ा, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है तो कहीं पर मतलब गहरा है कहीं पर थोड़ा ऊंचाई है, तो कहीं पर घाटी जैसी है तो कहीं पर थोड़ा तो
1: आप ये कहना चाहते हैं कि जो पारंपरिक अच्छा उत्पादन देती हैं उनको लगाना चाहिए जो स्थानीय किस्में हैं?
0: हाँ, जो अपने अपने हिसाब से, जैसे मैं लगा दूँ आपने खीरे और शिमले की बात है तो मैंने जो अपनी जगह में आज तक लगाया, मैं जैसे शिमला की बात करो शामली करके नाम है तो मैं हमेशा वो लगाता हूँ, उसका उत्पादन भी अच्छा है, उसका साइज भी अच्छा है, उसकी चमक भी अच्छी है मतलब फ्रूट की, और शिमला मिर्च की बात करो तो मैं इंदिरा लगाता हूँ, ये भारत होगी महाभारत होगी या ऐसे करके मतलब 2-3 वैरायटी जो मैंने अभी तक अपने एरिया में लगाया और उनका रिजल्ट बेस्ट आया, और कहीं और अगर उनको भेजता हूँ तो कहीं और क्या होता है कि वहाँ का रिजल्ट थोड़ा डाउन रहता है, किसी का सही रहता है, तो ये टेम्परेचर का ज्यादा खेल है थोड़ा अप डाउन का।
1: हरेन शाह जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी, थैंक यू सर।
2: टपक सिंचाई में खेत करने वाले कृषक हरेंद्र साहद गयो क्षेत्र संकलित भेंटवार्ता। श्रोताओं, भारत सरकार उत्तराखंड सरकार ये कौन लग रहे है कि हमन के रासायनिक खादनों जो प्रयोग छ उनको धीरे धीरे कम करण चाहें, किले कि यो एक तो हमार जेब में आर्थिक रूप में भर ले पड़ूँ और दोहर हमार स्वास्थ्य दगले यार खिलवाड़ हूँ, यह के दगड़े हमन के

धीरे धीरे जैविक खादनक प्रयोग जैविक कीटनाशनक प्रयोगक तरफ बढ़न चाहिए। हम ये कह सकूँ कि कीटनाशकनक प्रयोग जो है हमन के संतुलित रूप में करन चाहिए, किले कि हमर जो अत्यधिक रासायनिकों का अगर हम उत्पादन करनू तो हमर जो माटक उर्वरा शक्ति है धीरे धीरे कने वो कम होते रही, क्षीण होते रही। तो हमन के ये सब बातों का ध्यान रखते हुए ये कोशिश करनी पड़े कि हम संतुलित रूप में उर्वरकों इस्तेमाल करो। और कार्यक्रम में अब अखिल आपके सुनो गिरीश सिंह बरगली गई यो छोड़ा।

श्रोताओं योचि गिरीश सिंह बरगली श्रोताओं हर रोज हम आपके कार्यक्रमक सलाह बतनु तो आजक सलाह हम अपन तरफ बे अपन के ये रो कि शिमला मिर्चक शुरुआती 3 फूल हट भी हमार कृषक भाई बहनी ज़्यादा उत्पादन के प्राप्त कर सकनी। तो ये सलाह के बाद अब आजक ग्राम जगत कार्यक्रम के इति के संपन्न करनु भोला पुदगे फिर भेंट होल एला पुदगड़ी कृष्णा सिंह लटवाल के दो अनुमति। नमस्कार।

0: अभी ग्राम श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्राम जगत। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 7:30 हुए हैं। आपको मऊनी उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से लेके जाएंगे।
1: आकाशवाणी देहरादून बटी कुमाऊनी मा प्रादेशिक समाचारों डगर मी कुसुम लता पिलखवाल।

0: पहली मुख्य समाचार। प्रदेश में मकानों सूचीकरण और आवास गणना काम 70% तक पूर्व। 19 लाख घरों ताले पहुंची टीम। पेट्रोल डीजल की बचत और ऊर्जा संरक्षण के लिए मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने शुरू करी तेल बचाओ मुहिम। साझा वाहन और ऊर्जा संरक्षण पर दी जोर। पौड़ी जिले में विकास कामों के पारदर्शी गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध बनाने दिशा में प्रशासनल पौड़ी प्रगति पोर्टल शुरू करो। और चमोली जिले में रुद्रनाथ यात्रा शुभारंभ। शीतकालीन गद्दी स्थल गोपीनाथ मंदिर परिसर में चल विग्रह उत्सव डोली के श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ रखी गो। 18 मई के खुलल रुद्रनाथ मंदिर द्वार। अब समाचार विस्तार सुनो। प्रदेश में मकानों सूचीकरण और आवास गणना काम 70% ताले पुर है गो। गणना कामों में लगी टीमों अब ताले 19 लाख घरों बटी डेटा इकट्ठा कर हेलो। यो लिहाजल 86 लाख आबादी के कवर करी जैरो। यह कामक लीजिए 24 मई ताले समय निर्धारित करी जैरो। यो संबंध में भारत महा रजिस्ट्रार व जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण देहरादून में प्रमुख सचिव आर के सुधांशु दगर प्रदेश में जनगणना कामक समीक्षा ले करी। उन्होंने वर्चुअल बैठक कर जिलाधिकारियों और नगर आयुक्तों से फीडबैक ले ली। श्री नारायण को की जनगणना कामों में आंकड़ों गुणवत्ता के सभी हबे ज्यादा अहमियत छो। किले की परिसीमन बटी लिबे जन कल्याणकारी योजना के यमे आधार टिकी हुई छो। उन्होंने संबंध आंकड़ों गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए डेटा जांच पर विशेष ध्यान दी जानक अपील ले करी। दगड़ी ही उम्मीद ले जते कि उत्तराखंड में शेष बची एक तिहाई काम के लिए समयबद्ध ढंगल पूरी करी जाल।
1: जनगणना का प्रथम चरण मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य चल रहा है और उसके लिए एक अवधि निर्धारित होती है। तो उत्तराखंड में अभी 24 मई को समाप्त हो रही है तो अभी 10 दिन बचे हैं, तो 10 दिन में इस कार्य को पूरा किया जाना है। सभी जगह कार्य चल रहा है, करीब 2/3 कार्य हो गया है। अगर पूरे उत्तराखंड की बात करें तो अगले 10 दिन में बचा हुआ 1/3 काम भी कर लेंगे।
0: पेट्रोल डीजलक बचत और ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अपीलक बाद प्रदेश माले सरकारी विभागक सक्रिय दिखाई दिनी। यो क्रम में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण MDDL ले ऊ बखत बटी ऊर्जा संरक्षण और तेल बचत के लिबेर कदम उठान शुरू कर हेली। MDDL उपाध्यक्ष वंशीधर तिवारी प्राधिकरण अधिकारियों और कर्मचारियों दे तेल बचत और ऊर्जा संरक्षण पर विशेष कार्य योजना लागू कर हेली। उन्होंने बता कि अधिकारियों कर्मचारियों दगर कार्यालय आण जाणक दौरान साझा वाहन अपनानक रोस्टर ले जारी करी जेरो ताकि अनावश्यक ईंधन खपत के कम करी जा सको। यह के अलावा कार्यालय आसपास टूण वाल कर्मचारियों के साइकिल या पैदल कार्यालय आणक लीजिले प्रेरित करी जानो। उन्होंने कहा कि ऊर्जा संरक्षण के लिए ले बहुत महत्वपूर्ण आंतरिक दिशा निर्देश लागू करी जरी जैक उद्देश्य बिजली और ईंधन द्विनोक बचत करियम छू।
2: हम लोगों ने आज रोस्टर बनाया है कि सभी JEE जो भी सेक्टर में अवैध निर्माण में सीलिंग में लगे हैं एक सेक्टर के लिए एक गाड़ी आवंटित कर दी है। सीलिंग में जाएंगे तो एक साथ एक ही गाड़ी में बैठ कर लोग कार पूल करेंगे और सीलिंग की कार्रवाई और रोस्टरीकरण की कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ हम लोगों ने जो AC है वो 25 डिग्री पर मेंटेन किया है और जहाँ जरूरत नहीं है उसको बंद कर दिया।
0: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उधम सिंह नगरक ओर बटी आज जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर रुद्रपुर में सुरक्षित ईंधन सुरक्षित जीवन अभियानक शुभारंभ करी गो। यह अवसर पर न्यायिक अधिकारियों कर्मचारियों और अधिवक्ताओं के ईंधनक बचतक लिजी प्रेरित करते हुए हफ्त माह 2 दिन पैदल या साइकिल न्यायालय परिसर आनक अपील ले करी गये। अभियान के व्यवहारिक रूप अपनाण और प्राधिकरण के सचिव ममता पंत अपू निवास बटी लगभग पैदल चल बे न्यायालय परिसर पहुंची। उन्होंने कहा कि 1 महीने ताले चलन वालियों अभियानक उद्देश्य आम जनमा ईंधन व पर्यावरण संरक्षण और स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूकता बढ़ान छो।
3: ये कैंपेन 1 महीने तक चलेगा। इस कैंपेन में हमने सारे लिटिगेंट्स सारे अधिवक्तागण सारे न्यायिक अधिकारीगण सब लोगों से आह्वान किया है कि वह सप्ताह में 2 दिन सैटरडे और मंडे कोर्ट पैदल आए या फिर साइकिल से कोर्ट आए। इसका यही उद्देश्य है कि ईंधन बचाए तथा सुरक्षित जीवन पाए। आज समस्त न्यायिक अधिकारीगण द्वारा तथा मेरे द्वारा पैदल आया गया।
4: कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की यह बुलेटिन आकाशवाणी देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करी जा रहा।

0: ताज़ा समाचारों लीजिए, आप हमारे सोशल मीडिया एक्स और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड के फॉलो कर सकता। यह कदगर न्यूज समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर ले उपलब्ध छी।
1: पौड़ी जिले में विकास कार्यों के पारदर्शी गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध बढ़ने दिशा में प्रशासनल एक महत्वपूर्ण पहल के करते हुए पौड़ी प्रगति पोर्टल ले शुरू करो। यह अत्याधुनिक डिजिटल पेज फॉर्म जिले में संचालित अलग अलग विकास योजनाओं रियल टाइम मॉनिटरिंग सुनिश्चित करो। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरियाल को की पोर्टल के जरिए सभी विभागों प्रगति पर निरंतर रखी जा सकेल। जेल की कामों में गति दगड़ी दगड़ी गुणवत्ता ले सुनिश्चित है। उन्होंने बताया कि यह पोर्टल प्रशासनिक कार्यप्रणाली के सकल प्रभावी जवाबदेह और पारदर्शी बनाने दगड़ी ही विकास कामों की गुणवत्ता और प्रगति पर सतत निगरानी रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए।
2: पौड़ी प्रगति पोर्टल का अभी रिसेंटली उद्घाटन किया गया है और अब हमारे जितने भी जिला योजना, राज्य योजना और केंद्र पोषित की जो निर्माण कार्य होंगे वो सभी की मॉनिटरिंग, रियल टाइम मॉनिटरिंग उस पोर्टल के माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी और इसके लिए सभी विभागों को जो उनके लॉगिन आईडीज हैं वो भी दिए जा चुके हैं और जिसपे उन्हें प्रत्येक अपने वित्तीय तथा फिजिकल प्रोग्रेस प्रत्येक प्रोजेक्ट का अपलोड करना होगा और अब हम लोग आगे की जितनी भी समीक्षाएं करेंगे वो सब कुछ प्रगति पोर्टल के रिपोर्ट के एनालिसिस के आधार पर ही करेंगे और इसकी बहुत ही अच्छी बात ये है कि इसमें विभागवार, ब्लॉकवार हर प्रकार से हम लोग रिपोर्ट देख सकते हैं जिससे कि क्लियर कट हर समय हमें बार बार दोबारा से सभी विभागों से उनकी सूचनाएं बार बार मांगने की भी आवश्यकताएं नहीं रहेंगी और फिजिकल और फाइनेंशियल प्रोग्रेस में हम लोग साथ में सामंजस्य बिठाकर मॉनिटरिंग कर सकेंगे।
1: चमोली जेल में स्थित रुद्रनाथ मंदिरक द्वार 18 मई के श्रद्धालुओं लीजिए खोली जाए। यो बीच भगवान रुद्रनाथक यात्रा आज शीतकालीन गद्दी स्थल गोपीनाथ मंदिर में पूजा अर्चनाक बाद शुभारंभ है। गो रुद्रनाथक मुख्य पुजारी हरीश भटल बता की रत्ती पूजा अर्चनाक बाद गोपीनाथ मंदिरक गर्भगृह बटी भगवान रुद्रनाथक चल विग्रह उत्सव डोली के श्रद्धालुओं दर्शनों के लिए मंदिर परिसर में रखी गो। उन्होंने बता की आज और भोल उत्सव डोली श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए मंदिर परिसर में रोली। 17 मई के डोली रुद्रनाथक लिजी प्रस्थान करें और 18 मई के रुद्रनाथ मंदिरक कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दी जाए।
3: आज भगवान रुद्रनाथ जी की जो विग्रह मूर्ति है वो गर्भगृह से आकर मंदिर प्रांगण में रख दी गई है और आज और कल दो दिन दर्शनार्थ के लिए रखी जाएगी। 17 तारीख को हम यहाँ से प्रातः 9 बजे प्रस्थान करके यहाँ से चलेंगे और 18 तारीख 11-12 बजे के बीच में भगवान रुद्रनाथ जी के कपाट खुलेंगे।
1: पिथौरगढ़ जिले में आम जनता समस्याओं के जल्द समाधानक लीजिए हेलो हेल्प सेवा आज बटी शुरू है गई। यह लीजिए हेल्पलाइन नंबर 9458144651 जारी करी जरो जमे कोले नागरिक अपू समस्या दर्ज करे सकूं। जिलाधिकारी आशीष भटगाइल आज हेल्प डेस्क कंट्रोल रूम का उद्घाटन करो। यह अवसर पर उन्होंने कहा कि जिला कोले दूरस्थ क्षेत्र बड़ी नागरिक अपू हिंदी या स्थानीय भाषा में अपू शिकायत आसानी दर्ज करे सकूं। हेल्पलाइन में मिली शिकायतों के संबंधित विभागों ताले जल्द भेजी जाल और प्राथमिकता के आधार पर उनर समाधान करी जाल। उन्होंने कहा कि प्रशासनक उद्देश्य जनता और शासनक बीच संवाद के मजबूत बनाण छू।
4: हेलो हेल्प पिथौरागढ़ एक हेल्प डेस्क है, इसका आज से इसको स्टार्ट कर दिया गया है। तो इसमें जो है एक तो पब्लिक रिवॉल्व रिप्रेजल का सिस्टम है जो कि फोन के आधार पर ही काम करेगा, तो कोई भी व्यक्ति स्थानीय भाषा में जो अपनी शिकायतें उनको यहां दर्ज करा सकते हैं और रियल टाइम में संबंधित विभाग को उसको ट्रांसफर किया जाएगा और उसका प्रायोरिटी के आधार पर निराकरण सुनिश्चित करते हुए फिर संबंधित व्यक्ति को भी अवगत कराया जाएगा। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है और इसको सिंप्लीफाइड वे में हम लोगों ने रखा हुआ है और शिकायतें प्राप्त करते हुए निस्तारण करना ही इसमें प्राथमिकता रहेगी।
1: आखिर में मुख्य समाचार आई सुनो। प्रदेश में मकानों सूचीकरण और आवास गणना काम 70% तक पूर्व 19,00,000 घरों ताले पहुंची टीम। पेट्रोल डीजलक बचत और ऊर्जा संरक्षण के लिए मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ले शुरू करी तेल बचाओ मुहिम। साझा वाहन और ऊर्जा संरक्षण पर दी जोर। पौड़ी जिले में विकास कामों के पारदर्शी गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध बनाने दिशा में प्रशासनल पौड़ी प्रगति पोर्टल शुरू करो और चमोली जिले में रुद्रनाथ यात्रा शुभारंभ। शीतकालीन गद्दी स्थल गोपीनाथ मंदिर परिसर में चल विग्रह उत्सव डोली के श्रद्धालुओं दर्शनार्थ रखी गो। 18 मई के खुले रुद्रनाथ

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
2: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value, with its bold design and spacious comfort. It's built to impress every single day.
1: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.70 lakh.
2: Yes, Rs. 6.70 lakh. Valid till 31st May. Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
1: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
3: Nexa.
4: Most TVs keep you tied to the city, but you deserve the freedom to explore. Introducing the Maruti Suzuki e-Vitara. With its massive 61 kilowatt hour battery and a range of 543 kilometer, the horizon is finally yours. Own it for Rs. 10.99 lakh with a battery EMI of just Rs. 3.99 per kilometer. Backed by India's largest charging network, India Goes Electric.
5: ज्वेल थीप। आइए सुनते हैं इस फिल्म में लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को। गीत लिखा है शैलेंद्र ने और संगीत SD बर्मन का है।

0: Presenting the all-new Maruti Suzuki Victoris, the proud winner of Indian Car of the Year and a Bharat NCAP 5-star rated SUV. Experience first in segment features like underbody CNG technology.
1: Available in petrol, CNG and strong hybrid options. Built for every journey. And this month, enjoy exchange benefits up to 50,000 rupees. Maruti Suzuki Victoris. Drive the future. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom today. PNC apply.
2: श्रोतो, इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत और अब आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी को फिल्म प्रोफेसर में। गीत लिखा है हज़रत जयपुरी ने और संगीत शंकर जयकिशन का है।

0: डीजल क्यों चूज कर रहे हैं जब स्मार्टर ऑप्शन है यही। इंट्रोड्यूसिंग नई मारुति सुजुकी अरीना की विक्टोरियस SCNG सेगमेंट फर्स्ट अंडर बॉडी CNG टैंक के साथ 27.02 किलोमीटर पर किलोग्राम तक का माइलेज, मतलब ज्यादा सेविंग्स कम खर्चा। और अब विक्टोरियस खरीदने पर बाइक एक्सचेंज बोनस अप टू 50,000, तो देर किस बात की। आज ही अपने नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना डीलरशिप विजिट कीजिए। मारुति सुजुकी SCNG, स्मार्टर फ्यूल स्मार्टर यू। टीएस अप्लाई।
1: और अब श्रोताओं, कार्यक्रम के समापन में आइए सुनते हैं आशा भोसले को फिल्म डॉन में। गीत लिखा इंदिवल ने और संगीत कल्याण जैन जी का है।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है मिले जुले गीतों और गजलों का कार्यक्रम सबरस। आइए पहले सुनते हैं गुलाम अली को।

0: डीजल क्यों चूज कर रहे हैं जब स्मार्टर ऑप्शन है यही। इंट्रोड्यूसिंग नई मारुति सुजुकी अरीना की विक्टोरियस एससीएनजी सेगमेंट फर्स्ट अंडर बॉडी सीएनजी टैंक के साथ 27.02 किलोमीटर पर किलोग्राम तक का माइलेज, मतलब ज्यादा सेविंग्स कम खर्चा। और अब विक्टोरियस खरीदने पर पाए एक्सचेंज बोनस अप टू 50,000, तो देर किस बात की। आज ही अपने नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना डीलरशिप विजिट कीजिए। मारुति सुजुकी एससीएनजी, स्मार्टर फ्यूल स्मार्टर यू। टीएनसी अप्लाई।
1: और अब श्रोता भाई, ये सुनते हैं आशा भोसले और गुलाम अली को। कलाम नासिर काजमी का है।

श्रोता अभी आप सुन रहे थे मिले जुले गीतों और कजलुआ कार्यक्रम सबरस। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:30 होने वाले हैं। अब थोड़ी देर में अगला कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं शक्ति सिंह और श्रोताओं तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ सचिन कुमार। सचिन, आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद शक्ति।
0: सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने 2 स्वर्ण 7 रजत और 8 कांस्य पदक सहित कुल 17 पदक जीते। भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में 2 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ अपने अभियान का समापन किया। एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में हरजिंदर कौर ने आज कांस्य पदक अपने नाम किया। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंची।

0: उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशिया अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 राज पदक जीत करके ऐतिहासिक अभियान का समापन किया। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक भी जीते हैं। इसके साथ ही लड़के और लड़कियों के कुल मिलाकर पदकों की संख्या 17 रही।
1: भारतीय मुक्केबाजों ने अपने शानदार प्रदर्शन के बल पर शुरुआत से लेकर आखिर तक प्रतियोगिता में अपना दबदबा बनाए रखा। आज खेले गए फाइनल मुकाबलों में 64 किलोग्राम वर्ग में राखी ने उज्बेकिस्तान की रुखशोन बोनू अहदोवा को और 57 किलोग्राम वर्ग में नव्या ने जापान की सारा कोनो को 4-0 से हरा कर स्वर्ण पदक अपने नाम किए। लड़कियों में ही 48 किलोग्राम वर्ग में खुशी चंद, 63 किलो वर्ग में दिया, 70 किलो वर्ग में हिमांशी, 75 किलोग्राम वर्ग में ज्योति, 80 किलोग्राम वर्ग में वंशिका और 80 किलोग्राम से अधिक वर्ग में गुरसीरत कौर ने रजत पदक जीता। लड़कों के वर्ग में एकमात्र फाइनल में पहुंचने वाले खिलाड़ी लक्ष्य फोगाट ने 75 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक अपने नाम किया। इससे पहले एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी में भारत ने 9 स्वर्ण, 6 रजत और 12 कांस्य सहित कुल 27 पदक जीते। ताशकंद में भारतीय मुक्केबाजों का ये कीर्तिमान अभियान भारतीय बॉक्सिंग इतिहास के एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में अंकित हो गया है। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
0: सचिन, भारतीय बॉक्सिंग का एक स्वर्णिम अध्याय कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। आज भारतीय खिलाड़ियों ने हर क्षेत्र में पदक जीते हैं, लेकिन क्या ये कहा जाए कि विजेंद्र ने जो मशाल 2008 में जलाई थी, जिसको मैरीकॉम लंबे समय तक लेके चली, आज भारत के युवा खिलाड़ी अंडर 15 अंडर 17 वर्ग में उसको धारण करते हुए आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं?
2: हाँ, नहीं, निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि क्योंकि देखिए ओलंपिक में पदक पहला उन्होंने दिलाया था, लेकिन अगर हम थोड़ा और पीछे जाएं तो डिंकू सिंह जैसे बॉक्सर भी थे जिन्होंने हमारे लिए बहुत सफलताएं, एशियन गेम्स में भी मेडल लेके आए थे, बहुत लंबे समय बाद वो जीते थे, कॉमनवेल्थ में भी अच्छा प्रदर्शन किया कुछ मुक्केबाजों ने लगातार, तो वहाँ से एक परंपरा कह सकते हैं कि, और ये पहले से चली आ रही, कौर सिंह 1982 एशियाड में गोल्ड मेडल जीते थे, उससे पहले हवा सिंह हुआ करते थे, तो ये सब हरियाणा के ही ज़्यादातर, डिंको को अगर हम छोड़ दें वो मणिपुरी थे, तो हरियाणा एक तरीके से नर्सरी बनी सकती बॉक्सिंग के लिए, क्योंकि वहीं से ज़्यादातर हमारे मुक्केबाज निकले हैं जो जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपनी छाप छोड़ी है। तो और इसके अलावा जब हरियाणा से निकलने लगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें सफलताएं मिलने लगी, तो बाकी राज्यों में भी उसका असर देखने को मिला, नॉर्थ ईस्ट में भी उस तरीके की चीज़ें देखने को मिली, तो लगातार जो है जैसे लवलीना वगैरह जहां से निकल के आई, असम से आए कोई, मणिपुर से बॉक्सर हैं, मैरीकॉम का आपने जिक्र किया, तो इसमें कोई शक नहीं कि नई पौध से ही आगे हमें बड़े मंच पर जो है खिलाड़ी मिलेंगे, और अगर अंडर 15 में 27, अंडर 17 में 17 इस तरीके के पदकों का अगर जखीरा ला रहे हैं हमारे नए नवोदित नई पौध, और अभी अंडर 19 स्तर पे अब प्रतियोगिताएँ होंगी, तो यही अच्छी चीज़ है, बहुत सकारात्मक है ये, क्योंकि यही तो आगे चल के ध्वजवाहक बनेंगे हमारे जो असली
0: जो हमारी कतारों के ध्वजवाहक बनते नजर आएंगे यही खिलाड़ी आने वाले समय में। और सिर्फ बॉक्सिंग में नहीं, भारतीय खिलाड़ियों ने वुशू के खेल में भी अपना शानदार दबदबा दिखाया है। भारतीय वुशू टीम ने मकाऊ में 11वें सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक सहित कुल 5 पदकों के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। भारत पदक तालिका में 3रे स्थान पर रहा।
3: अपर्णा दहिया और शिवानी के नेतृत्व में भारतीय टीम ने मकाओ में अपनी शानदार स्किल और काउंटर अटैक रणनीति का प्रदर्शन करते हुए भारत के लिए एक यादगार अभियान का समापन किया। अपर्णा दहिया ने महिलाओं की 52 किलोग्राम वर्ग में 1 स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने फाइनल मुकाबले में वियतनाम की मौजूदा विश्व चैंपियन टी फुओंग को सीधे सेटों में हरा कर ये कीर्तिमान अपने नाम किया। महिलाओं की 75 किलोग्राम वर्ग में शिवानी ने अपनी रूस की प्रतिद्वंदी के सामने सांडा कौशल का जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए भारत के स्वर्ण पदकों की संख्या को 2 गुना कर दिया। अपर्णा और शिवानी ने पिछले वर्ष ब्राजील में विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीते थे। पुरुषों की 48 किलोग्राम श्रेणी में कुशल कुमार ने रजत पदक हासिल किया। करीना और सागर दहिया ने 1-1 कांस्य पदक जीतकर चैंपियनशिप में भारत के कुल पदकों की संख्या को 5 कर दिया। मकाओ में आयोजित इस प्रतियोगिता में 21 देशों और क्षेत्रों के कुल 110 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्राची प्रिया, स्पोर्ट्स कैन।
0: सचिन, भारत ने 5 पदक जीते, 3 पदक भारत के लिए बेटियां लेकर आई।

0: मैं स्पेशली बात करना चाहूंगा शिवानी की, बीएसएफ में कांस्टेबल हैं
1: जी।
0: लास्ट ईयर सिल्वर जीती थी, अपर्णा भी सिल्वर जीती थी, और इस बार देखिए कि अब दोनों ने एक साथ पदक की चमक को बढ़ा दिया।
1: बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि देखिए अगर कोई अपने पदक का रंग बदलता है खिलाड़ी, तो ये एक बड़ी सफलता है। रजत से आप स्वर्ण पदक पे अपने उसको ला रहे हैं प्रदर्शन को, और अब ये जिस तरीके से हम पहले 19 में प्रवीण कुमार थे, एक सांडा खिलाड़ी जिनको हम जानते थे कि वो पहले खिलाड़ी भारत के हैं जिन्होंने वुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था, लेकिन अब लड़कियां भी उनके पद चिन्हों पर चल रही हैं, तो ये बहुत अच्छा, और ये बहुत कोई पुराना खेल भी नहीं है भारत के लिए। वुशु मात्र 3 दशक पहले इसकी यहाँ शुरुआत हुई, और शुरुआत में तो एसोसिएशन लखनऊ से ही इसकी चलती थी जहाँ तक मुझे याद है। हो सकता है कि ये तक थोड़ा बहुत फेरबदल के साथ कुछ और भी हो सकता है, लेकिन उन लोग इस एसोसिएशन ने बहुत प्रयास किया भारत में इसकी जमे जाना। हालांकि अभी ओलंपिक खेल नहीं है शक्ति
0: जी, बिल्कुल,
1: लेकिन जिस स्तर पर भी अभी खेल रहे हैं हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार, और 5 पदक लाना लड़कियों द्वारा, सारे पदक जीतना, ये एक बड़ी उपलब्धि है
0: जी। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी उपलब्धि। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं के 69 किलोग्राम वर्ग में स्नैच में 96 किलोग्राम का वजन उठा करके कांस्य पदक अपने नाम किया। तो आज कह सकते हैं कि भारतीय खिलाड़ियों ने वजन उठाया भी है, वजन दिखाया भी है, और हर क्षेत्र में जहां पर भी बल प्रयोग हो सकता है भारत ने भरपूर मेडलों की संख्या बढ़ाई।
1: देखिए इसमें लगातार अच्छा प्रदर्शन चल ही रहा है, शुरुआत लड़कियों ने की, फिर कल का दिन एक पुरुष खिलाड़ी के नाम रहा, आज फिर हरजिंदर निकल के आई हैं मेडल विनर के तौर पे। और हरजिंदर का अभी पिछला रिकॉर्ड भी अगर आप देखें तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड है उनका। उन्होंने बर्मिंगम में जो है कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, तो वे एक बड़ा कंपटीशन होता है चूँकि, तो उसमें कॉमन वहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल लाना एक बड़ी सफलता है। और पिछले साल ही उन्होंने अहमदाबाद 2025 में राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप हुई थी उसमें भी मेडल जीता था
0: जी।
1: तो अपने प्रदर्शन को हालांकि अभी वो ब्रॉन्ज मेडल से ऊपर नहीं ले जा पा रही हैं, लेकिन एक कंसिस्टेंसी दिखाई दे रही है कि 25 में भी जीता और 26 में भी जीत रही हैं, तो एक अच्छा प्रदर्शन कहा जा सकता है। क्योंकि भारोत्तोलकों के लिए बहुत बहुत चुनौतियां होती हैं बड़ी अलग तरीके की। आपने देखा ही होगा कल भी जो अजीत जीते थे वो मात्र 1 किलोग्राम वर्ग से उन्होंने किसी खिलाड़ी को 4th नंबर पे छोड़ा था और ब्रॉन्ज मेडल पोडियम पे आने में, तो ये बड़ा बड़ा कठिन खेल है ये कि आप 1-1 किलो किस तरीके से अपने वजन को बढ़ाते हैं, और बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है
0: जी। बिल्कुल, तो बहुत सारी इंजरीज के बीच में
1: बहुत और बहुत मुश्किल खेल है ये
0: जी। बिल्कुल, और 1-1 किलो वजन बढ़ाने में लंबा समय लगता है, लंबी प्रैक्टिस लगती है, और कहीं आपका एज ग्रुप बदल गया तो फिर आपको नई चुनौतियां नए सिरे से।
1: हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत चुनौतियां इस खेल में।
0: आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई ने 12वें ओवर में 3 विकेट पर 91 रन बना लिए थे। लखनऊ ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। इससे पहले कल मुंबई इंडियंस ने एक रोमांचक मुकाबले में पंजाब किंग्स पर 6 विकेट से जीत दर्ज की।
2: धर्मशाला के HPCA क्रिकेट स्टेडियम में कल वापस जीत की पटरी पर लौटने की उम्मीद लिए पंजाब किंग्स का सामना हुआ प्लेऑफ की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी मुंबई इंडियंस की टीम से। पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट खोकर 200 रन बनाए। प्रभसिमरन सिंह ने टीम के लिए 35 गेंद में सर्वाधिक 57 रन बनाए। अजमतुल्ला उमरजाई ने भी 17 गेंद में 38 रन का अहम योगदान दिया। MI की ओर से शार्दुल ठाकुर ने सर्वाधिक 4 विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई ने शुरुआत से ही सूझबूझ का प्रदर्शन करते हुए पारी को आगे बढ़ाया। रियान रिकल्टन और रोहित शर्मा की सलामी जोड़ी ने 39 गेंद में टीम के लिए 61 रन जोड़े। रिकल्टन 23 गेंद में 48 रन और रोहित 25 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद तिलक वर्मा ने मोर्चा संभालते हुए 33 गेंदों में शानदार 75 रन की नाबाद पारी खेली। वहीं टीम के लिए बचा हुआ काम विल जैक्स की 10 गेंदों में 25 रन की छोटी मगर महत्वपूर्ण पारी ने कर दिया। अजमतुल्ला उमरजाई ने पंजाब के लिए 2 विकेट भी लिए। सीजन की शानदार शुरुआत करने वाली पंजाब की लगातार 5वीं है जिसने उसके लिए प्लेऑफ की दौड़ को थोड़ा और मुश्किल कर दिया है। प्रशांत कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
0: सचिन, जिस तरह की शुरुआत पंजाब की सीजन में हुई थी, फेवरेट्स थी, अभी भी काफी हद तक फेवरेट्स है, और इतनी फेवरेट्स है कि लगातार 5 मैच हारने के बाद भी 4th नंबर से कोई हिला नहीं पाया है, लेकिन क्या हो गया इस टीम की फॉर्म को?
1: देखिए स्कोर तो कमोबेश आप कह सकते हैं कि ठीक ठाक था, 200 रन कोई कम नहीं होते हैं, और ये एक बड़ी उपलब्धि भी है इस टीम के लिए। इस सत्र में उन्होंने 8वीं बार ऐसा हुआ है कि 200 रन का स्कोर जो है टांगा है, और इससे पहले और पिछले साल भी उन्होंने ये इस तरीके का कर दिखाया था। सिर्फ 2 ही टीमें हैं जो उनके बराबर ठहरती हैं, लेकिन इसका वो बचाव नहीं कर पाए क्योंकि

0: मुझे लगता है कि तिलक वर्मा जिस अंदाज में खेले हैं, मात्र 33 गेंदों पर उन्होंने 75 रन बनाए और ये उनका पहला अर्धशतक है इस सत्र में 10 पारियों में, तो वो जिस तरीके से आड़े आ गए पंजाब के, वो कहा जा सकता है। प्रभसिमरन की बल्लेबाजी अच्छी थी, उनको दो कैच भी उनके ड्रॉप हुए और बहुत जल्दी जल्दी उनको जीवनदान ये मिले, लेकिन उसका वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा पाए। ये आप कह सकते हैं कि दो, अगर वो 57 रन से कहीं बड़ी पारी खेलने में सफल होते तो मुझे लगता है कि, और जिस तरीके से बीच में मैच थोड़ा सा गेंदबाजों ने अपने कब्जे में लिया, एक ये भी वजह हो सकती है कि बहुत अच्छा उनका औसत चल रहा था, वो 200 प्लस जा रहे थे, जा भी सकते थे, लेकिन शार्दुल ठाकुर ने 4 विकेट जिस अंदाज में लिए उससे मैच कहीं ना कहीं पंजाब के हाथ से निकलता तो नहीं। अब ये तो 200 रन तो पर्याप्त थे, फिसलता इस सेंस में आप कह सकते हैं कि जब मुंबई इंडियंस खेल ली तिलक वर्मा की, वो इतनी बड़ी पारी आ गई, तो उसके बाद इसको माना जा सकता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ होता, शार्दुल ठाकुर उस तरीके से गेंदबाजी नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं पंजाब के। लेकिन अब ये है कि इनके लिए करो मरो की स्थिति तो जरूर है, लेकिन टीम बहुत ही मुझे लगता है कि एक हौसले के साथ खेल रही है, जरा भी अपने ऊपर कोई दबाव नहीं आने दे रहे, ना खिलाड़ी ना कोच न कप्तान, तो अगर उस हौसले के साथ ही उतरते हैं तो मुझे लगता है उसका लाभ इनको मिलेगा जरूर।
1: जी बिल्कुल, लाभ मिलेगा, लेकिन पंजाब की नजरें आज के मुकाबले पे होंगी, जो कि अगर चेन्नई जीतता है तो शायद इस सीजन में पहली बार पंजाब अपने आप को टॉप फोर के नीचे पाएगा।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, इसका असर पड़ सकता है।
1: जी बिल्कुल, अब पंजाब चाहेगा कि यहाँ से कम कोई गलती को ना दोहराया जाए और वापस अपनी पुरानी लय को।
0: वही है कि उनके दो मैच बचे हैं तो उनको दोनों जीत रहे हैं, तो उस अंदाज से उनको खेलना है कि अब ये दोनों ही मैच हमारे लिए क्रूशियल है, हमें जीतने हैं। करो या मरो शब्द मैंने इसीलिए उनके लिए इस्तेमाल किया।
1: जी बिल्कुल, अब करो या मरो के मुकाबले पंजाब को खेलने होंगे और जो शीर्ष दो में पहुंचने की दौड़ थी उसको फिलहाल शीर्ष चार तक बांधने की कोशिश होगी। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। इस जोड़ी ने जापान के ताकुमी नोमुरा और युची शिमोगामी को 21-12, 21-13 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन को थाईलैंड के कुनलाउथ विदिसन से 19-21, 16-21 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु को भी महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। तो कह सकते हैं कि भारत के लिए खेलों में जो आज एकमात्र बुरी खबर रही वो ये रही कि लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु का अभियान थाईलैंड ओपन में आज समाप्त हो गया।
0: ये है कि मतलब क्वार्टर फाइनल तक देखिए आए, अब उससे आगे जाने की उम्मीद थी, लेकिन चूंकि दोनों ही मुकाबले बहुत कड़े प्रतिद्वंदियों के खिलाफ थे दोनों के, तो उस नजरिए से आप कह सकते हैं कि और बेहतर हो सकता था, लेकिन आपका कमी रह गई। सिंधु भी लगातार अच्छा कर रही थी इस टूर्नामेंट में, लक्ष्य भी अच्छा खेल रहे थे, लेकिन दोनों के जो सामने जो खिलाड़ी थे वो उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर साबित हुए, तो वो मौका नहीं मिला उनको, लेकिन ले जाते अगर वो अपने अभियान को और आगे तो और ज़्यादा बेहतर होता।
1: जी बिल्कुल सचिन, लेकिन भारत की इस ऑल टाइम फेवरेट जोड़ी पे क्या कहेंगे, जहाँ पे सात्विक और चिराग हैं हर कॉम्पिटिशन में भारत को कुछ देते हैं।
0: वो तो बहुत ज़बरदस्त खेल ही रहे हैं और उनके वजह से देखिए बहुत सफलताएँ भी मिली हैं, और अब जब सिंगल्स में कुछ नहीं इस तरीके के कोई टाइटल आ रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि डबल्स में आए कम से कम, क्योंकि जो बैडमिंटन ने जो एक दिशा दिखाई थी जो खिलाड़ियों के लिए, वो कहीं ना कहीं बरकरार रहनी चाहिए, अगर वो सिंगल्स में नहीं तो डबल्स में सही।
1: जी बिल्कुल, डबल्स में उम्मीदों के साथ कल ये टीम सेमीफाइनल खेलने उतरेगी और उम्मीद होगी कि उसको खिताब में बदलने की कोशिश हो। श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। धन्यवाद सचिन।
0: धन्यवाद शक्ति।
1: श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 IPS अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में आयोजित सांडा विश्व कप में दो स्वर्ण, एक रजत और दो कांस्य पदक जीते। और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में दो स्वर्ण और सात रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर जोर दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ आज उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
3: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है और उनको फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखा, यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन
2: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: दोनों देशों ने एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कोऑपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
2: आकाशवाणी से बातचीत में यूएई में भारत के दूत दीपक मित्तल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग को गहरा करने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं।
5: प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान कई रणनीतिक घोषणाएं की गई। भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और भारत तथा संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करने के लिए दीर्घकालिक निर्णय लिए गए। आज नेताओं के बीच हुई चर्चाओं में प्रौद्योगिकी के विषय पर भी बातचीत हुई। भारत में 8 एक्साफ्लॉप सुपर कम्प्यूट सुविधा स्थापित करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही भारत के वादिना में जहाज मरम्मत इकाई विकसित करने में साझेदारी करने का यूएई का निर्णय भी शामिल है।
2: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में शुक्रवार देर रात नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा न केवल दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि हाल ही में संपन्न इंडिया यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के संदर्भ में पूरे यूरोप पर असर डालने वाली साबित होंगी। व्यापार की दृष्टि से नीदरलैंड्स भारत का 11वां बड़ा साझेदार है। दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार गत वर्ष $27.8 बिलियन का रहा है। निवेश के मामले में भी नीदरलैंड्स चौथा बड़ा निवेशक है। प्रधानमंत्री अपने इस महत्वपूर्ण दौरे के दौरान नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब यतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे एवं डच राजा विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी शिष्टाचार भेंट करेंगे। शनिवार को प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स में कम्युनिटी इवेंट को संबोधित करेंगे एवं नीदरलैंड्स की प्रतिष्ठित कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। नीदरलैंड्स से आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा।
2: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही गई। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनयिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। इसमें संघर्ष के मूल कारणों को संबोधित करना

0: करना भी शामिल है। मंत्रियों ने बहुपक्षवाद को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता पर बल दिया। नई दिल्ली में बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध मामलों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि ब्रिक्स के सभी सदस्य सहयोगी देशों ने स्थिरता के निर्माण के लिए भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं का समर्थन किया।
1: ब्रिक्स के सभी सदस्य और साझेदार देश लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के निर्माण की थीम पर भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं की सराहना और उनका समर्थन करते हैं। पिछले दो दिनों में हुई चर्चाओं और इन विचार विमर्श के आधार पर हमने एक अध्यक्षता वक्तव्य और एक परिणाम दस्तावेज जारी किया है। इसमें ब्रिक्स की रणनीतिक साझेदारी के तीन स्तंभों के अंतर्गत आने वाले लगभग सभी विषयों पर ब्रिक्स सदस्यों की साझा स्थिति को दर्शाया गया है।
0: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति स्थापना में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री अराक्ची ने कहा कि ईरान से जुड़े किसी भी मामले का सैन्य समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सभी जहाजों को गुजरने में मदद करने के लिए तैयार है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाश अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। इससे पहले गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों में से 3 जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 नासिक से है। सभी आरोपियों को दिल्ली की अदालत ने 7 दिन के पुलिस हिरासत में भेज दिया है। कई अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आज ही कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है।
2: फ्यूज जो होता है वह किसी भी गोला बारूद का सबसे यह इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, चाहे आर्टिलरी शेल हो, बम हो या कोई भी युद्ध सामग्री हो। बिना भरोसेमंद इलेक्ट्रिक फ्यूज के सब बेकार है। यहाँ बनने वाले अत्याधुनिक फ्यूज हमारी सेनाओं को ताकत देंगे और यह प्रोजेक्ट हमारी एमिनेशन मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता का एक नया चैप्टर जोड़ेगा।
1: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
3: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है, 6 गुना वृद्धि। और भारत से एक्सपोर्ट होने वाली कमोडिटीज में आज मोबाइल फोन सबसे पहली कमोडिटी बन गई है और इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट इस पिछले दशक में 11 गुना बढ़े हैं।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज

0: ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इनमें अलग अलग दिन वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कार पूलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। ये निर्णय ईंधन की खपत कम करने के केंद्र सरकार के व्यापक प्रयासों के अनुरूप है। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया 30 जून से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि यह प्रक्रिया 29 जुलाई तक चलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे NewzOnAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ के अलग अलग हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। कोंकण और गोवा में मौसम के अत्यधिक गर्म और उमस भरे रहने का पूर्वानुमान भी जारी किया गया है। विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान जताया है। अगले दो दिन केरल, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के 26 मई तक आने की संभावना है। केरलम में मानसून के आगमन की सामान्य तिथि 1 जून है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में आज लगभग 0.2% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 161 अंक फिसलकर 75,238 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 46 अंक डूबा और 23,644 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 21 पैसे कमजोर होकर 95.97 रुपए के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
0: भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में 11वें सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीतकर कुल 5 पदकों के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। भारत पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। अपर्णा दहिया और शिवानी ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक जीते हैं। इससे पहले एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी में भारत ने 9 स्वर्ण 6 रजत और 12 कांस्य सहित कुल 27 पदक जीते। IPL क्रिकेट में लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 127 रन बना लिए हैं। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। CBI ने नीट UG 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आज ही कर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 IPS अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi reaffirms India's support for safe and uninterrupted navigation through Strait of Hormuz for regional stability and energy security. BRICS foreign ministers call for democratic global governance and stronger multilateral action on peace and climate challenges. CBI arrests one of the kingpins in NEET UG 2026 paper leak case. West Bengal government suspends 3 IPS officers in connection with RG Corps rape and murder case. Met department forecasts heatwave conditions in Jharkhand, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh and Vidarbh till tomorrow. Indian Wushu team bags 2 gold, 1 silver and 2 bronze medals at Sanda World Cup in Macau. And India concludes Asian Under-17 Boxing Championships with historic 2 gold.

0: Presenting the all-new Maruti Suzuki Victoris, the proud winner of Indian Car of the Year and a Bharat NCAP 5-star rated SUV. Experience first in segment features like underbody CNG technology.
1: Available in petrol, CNG and strong hybrid options. Built for every journey. And this month, enjoy exchange benefits up to 50,000 rupees. Maruti Suzuki Victoris. Drive the future. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom today. PNC apply.
2: और अब श्रोताओं कार्यक्रम के समापन में आइए सुनते हैं किशोर कुमार और आशा भोसले को। फिल्म है दिल्ली कथक, गीत लिखा है शैलेंद्र ने और संगीत रवि का है।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम इंद्रधनुष। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 हुए हैं। आप लीजिए प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर।

सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। तो दोस्तों आइए साथ साथ चलते हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों के इस खूबसूरत सफर में जिसका नाम है आपके अनुरोध पर। मैं हूं आपका दोस्त मनोज कुमार जोशी। दोस्तों जिंदगी एक सीधा रास्ता नहीं है और इस टेढ़े मेढ़े घुमावदार रास्ते को तय करने में कोई खूबसूरत हम सफर साथ हो तो मंजिल तक पहुंचना आसान हो जाता है। तो आइए आगाज करते हैं इस सुरीले सफर का इस सुरीले गीत से।

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं।

0: मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है उधर भी।
1: ये कहा
2: अभी आप सुन रहे थे फिल्म सिलसिला का ये दुगाना। आवाजें थी लता मंगेशकर और अमिताभ बच्चन की। जावेद अख्तर के लिखे बोलों को सुरों में ढाला था शिवहरी ने। पसंद थी आप सबकी। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी। और अब आइए सुनते हैं फिल्म राज का ये गीत, जिसे गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने। गीत लिखा है समीर ने और संगीत नदीम श्रवण का है। साल 2002 में रिलीज हुई फिल्म राज उन फिल्मों में से एक है जिसने हिंदी सिनेमा में हॉरर फिल्मों की शैली को फिर से जिंदा किया। विपाशा बसु और डीनो मौर्या द्वारा अभिनीत इस फिल्म से विपाशा बसु को हिंदी फिल्मों में असली पहचान मिली। इस गीत को सुनने के तलबगार हैं आप सब। जलाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा।

डौड़ी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी पूजा तामुरिया, राधिका और प्रभा देवी तामुरिया, ये सभी श्रोतागण सुनना चाहते हैं फिल्म सागर का ये दुगाना, जिसे गाया है आशा भोसले और एसपी बाला सुब्रमण्यम ने, गीत लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने। साल 1985 की क्लासिक फिल्म सागर का ये गीत गोवा के समुद्र तटों पर फिल्माया गया था, जो आपने जीवंत और खुशनुमा माहौल के लिए जाना जाता है। अदाकार कमल हासन को इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला था, जो एक हिंदी फिल्म के लिए इस श्रेणी में उनका पहला और एकमात्र पुरस्कार था।

कार्यक्रम की अगली पेशकश आप सुनेंगे फिल्म जमीर से, जिसे आवाज दी है किशोर कुमार ने, गीत लिखा है साहिल लुधियानवी ने और संगीत दिया है सबन चक्रवर्ती ने। सबन चक्रवर्ती ने आरडी बर्मन की टीम में एक प्रमुख संगीत सहायक के रूप में काम किया और बाद में स्वतंत्र रूप से फिल्मों में संगीत दिया। वो एक गायक भी थे और प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया और गोलमाल है भाई सब गोलमाल है जैसे गीतों में अपनी आवाज भी थी। इस गीत को सुनने की ख्वाहिश रखते हैं आप सब। रायधारा अल्मोड़ा से भारती, मौली, दीके जोशी, मीनू जोशी और क्षितिज।

दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश है फिल्म तुम बिन से, जिसे गाया है के एस चित्रा ने, बोल लिखे हैं फैज़ अनवर ने और संगीत दिया है निखिल विनय ने। साल 2001 में आई ये फिल्म अपने मधुर गीत संगीत के कारण बहुत पसंद की गई। इसी फिल्म से डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने डायरेक्शन में कदम रखा। इस फिल्म के म्यूजिक ने उस साल कई रिकॉर्ड तोड़े थे और इसी फिल्म से अदाकार प्रियांशु चटर्जी ने हिंदी फिल्मों में कदम रखा। इस गीत को सुनने के तलबगार हैं आप सब। लाला बाजार अल्मोड़ा से बाबा फरहान, खुशबू, संजू सामिया, आफिया, मुमताज़ अमान माही, नीलोफर शन्नो और शब्बो।

दोस्तों कहते हैं कि मुस्कुराना सीख लीजिए, जिंदगी ज्यादा परेशान नहीं करेगी। तो मुस्कुराते हुए हमें आज के इस कार्यक्रम को संपन्न करने की अनुमति प्रदान कीजिए। शुभ रात्रि।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अब लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। आइए पहले सुनते हैं गुलाम अली को।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: और अब श्रोताओं, आइए सुनते हैं चंदन दास को।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शी भर्तियों में 28,000 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। राज्य ने G20 समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और 38वें राष्ट्रीय खेल जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का भव्य और सफल आयोजन किया और राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर अपनी खास पहचान बनाई।
2: संकल्प बेहतर उत्तराखंड का, कायम की एक नई मिसाल। उत्तराखंड का हर घर अब देखो हो रहा खुशहाल।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की नगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: और अब श्रोताओं आइए सुनते हैं आशा भोसले को।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अब लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। आइए पहले इसमें हम आपको सुनवाते हैं अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू को। फिल्म है आशिकी, गीत लिखा समीर ने और संगीत नदीम श्रवण का है।

मर्डर। आइए अब सुनते हैं इस फिल्म में अमीर जलाल को। गीत लिखा है सईद कादरी ने और संगीत अनु मलिक का है।

तो इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत, और अब आइए हम आपको सुनवाते हैं फिल्म बाजीगर का ये गीत। इस गीत को गाया है पंकज उधास ने, गीत लिखा है रानी मलिक ने और संगीत अनु मलिक का है।

खिलाड़ी अय्यर फोनते हैं इस फिल्म में, अभिजीत और अलका याग्निक को। गीत लिखा है अनवर सागर ने और संगीत जतिन ललित का है।

फिर तेरी कहानी आ गई। आइए सुनते हैं इस फिल्म में कुमार सानू को। गीत लिखा है कतिल सिफई ने और संगीत अनु मलिक का है।

और अब श्रोताओ कार्यक्रम के समापन में आइए सुनते हैं कब्बन मिर्जा को फिल्म रजिया सुल्तान ने, गीत लिखा है जानिसार अख्तर ने और संगीत खयाम का है।

0: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हुरमुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है और उसको फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखा, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं। संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनयिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री

0: साई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान AMCA निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। विधानसभा में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने प्रश्नकाल, बहस, विधेयकों और बजटों के सीधे प्रसारण की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस राज्य की जनता को विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की गतिविधियों को देखने का पूरा अधिकार है और ये सत्र के सीधे प्रसारण के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जा सकता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीआई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय पूर्णिमा सामंत कड़ाकोटे। Prime Minister Narendra Modi today reiterated India's support for safe and unimpeded navigation through the Strait of Hormuz, underscoring its importance for regional stability as well as global energy and food security. After high-level talks with UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi, Prime Minister Modi strongly condemned recent attacks on UAE.
2: Hormuz ko free, open aur safe banaye rakhna. ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: Prime Minister Modi arrived in UAE this morning on the first leg of his five-nation tour covering the UAE and Europe. He was received by UAE President at the presidential airport and accorded a ceremonial welcome with UAE F-16 fighter jets escorting his aircraft as it entered Emirati airspace. Mr. Modi expressed gratitude to the UAE leadership for the warm reception, noting in a social media post that he looked forward to strengthening cooperation across key areas including energy, investment and supply chains. Concluding his UAE visit, the Prime Minister left for the second leg of his tour to Netherlands. Thereafter, Mr. Modi will visit Sweden, Norway and Italy during the six-day tour. Foreign ministers of BRICS have reiterated their commitment to reform and strengthen global governance. In the outcome document, the ministers called for a more equitable, democratic and accountable international and multilateral system. They noted rising global polarization and distrust and urged collective action to strengthen international peace and security. The ministers also called for addressing global challenges through diplomatic and political means to reduce conflict risks and strengthen